मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच और डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेब ओटीटी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 18वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 9 अगस्त सन 2026 ईस्वी। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 5:56 हो रहे हैं। आरंभ हो रही हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस

0: दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन तो मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सेकेंड लेडी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिजान में कोटी डी आइवर के राष्ट्रपति अलासानी उटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटी डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 147,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत के अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। ये मुकाबला दक्षिण कोरिया के आसन में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 से खेला जाएगा। अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं क्यू हान ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह की 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है सामयिक कृषि कार्य और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
3: किसान भाइयों, आज हम सामयिक कृषि कार्य की चर्चा करेंगे। अगर आप शकरकंद की खेती करना चाहते हैं तो इस समय कर सकते हैं। इसकी बेलों की रोपाई का समय जुलाई माह से लेकर अगस्त माह तक होता है। गन्ना की खेती के लिए भुरभुरी बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2-3 जुताई देसी हल से करके खेत को तैयार कर लेते हैं। इसकी अच्छी

0: खेती के लिए 100 कुंटल प्रति एकड़ की दर से गोबर की खाद खेत में थोड़ा पहले मिला देते हैं। इसके अतिरिक्त अंतिम जुताई के समय 30 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला दे देना चाहिए। खेत तैयार हो जाने के बाद 45 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड़े बना लें और फिर इन्हीं मेड़ों पर शकरकंद की बेलों को लगाएं। मेड़ पर एक बेल से दूसरे बेल की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बेल को सीधे नहीं लगाया जाता, बल्कि इसके 30 से 45 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट लें। ध्यान रहे कि एक टुकड़े में कम से कम 4 गांठे हों। टुकड़ों को इस तरह लगाएं कि टुकड़ों का अंतिम सिरा जमीन में दबा हो तथा बीच में दोनों गांठें जमीन से बाहर हों। फिर रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। शकरकंद की जो प्रजातियां हैं वह हैं पूसा लाल, पूसा सफेद, पूसा सुनहरी, FA17, AH41 और H42। इनमें से जो प्रजाति मिल जाए लेकर के बुआई करें। धान की फसल में खैरा बीमारी का प्रकोप हो जाता है। ये जस्ते की कमी के कारण होता है। जस्ते की कमी के लक्षण पौधों के ऊपरी भाग, दूसरी या तीसरी पूरी तरह परिपक्व पत्तियों से प्रारंभ होते हैं। पौधों की बढ़त रुक जाती है और पौधे छोटे रह जाते हैं। तने के ऊपरी हिस्से में गांठें नज़दीक बनने लगती हैं तथा पत्तियों पर छोटे छोटे पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जो कि बाद में बड़े होकर आपस में मिल जाते हैं तथा फसलों में बालें देर से निकलती हैं। जब निश्चित हो जाए कि धान में जिंक की कमी है तो फिर इसको नियंत्रित करना चाहिए। इस हेतु हम जिंक सल्फेट प्रयोग करते हैं। इसे या तो रोपाई की पहले खेत में मिला देते हैं या तो खड़ी फसल में छिड़काव करते हैं। अगर रोपाई से पहले खेत में मिला रहे हैं तो 8 से 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से खेत में मिलाना चाहिए और यदि खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं तो 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 8 किलोग्राम यूरिया को 400 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। जो धान पहले रोपे गए हैं उनकी देखभाल बहुत ही आवश्यक है। अगर खेत में नमी की कमी हो तो उसमें सिंचाई की व्यवस्था जरूर करें। कल्ले फूटते समय भी खेत में पर्याप्त पानी होना चाहिए। इसके अलावा धान की फसल में निकाई गुड़ाई करके खरपतवार भी निकालते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खरपतवारों के कारण फसल को काफ़ी हानि होती है। यदि रासायनिक दवाओं से खरपतवार नष्ट करना चाहते हैं तो 2-4 D ईस्टर दवा प्रयोग करनी चाहिए। इसकी 400 ग्राम मात्रा को 300 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। फिर 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से रोपे गए धान में कल्ले बनते समय बुरका करना चाहिए। इस समय मध्यकालीन फूलगोभी की खेती कर सकते हैं। इसके बेहन डालने का समय जुलाई माह से अगस्त माह तक होता है। इसकी जो किस्में हैं वह हैं अर्ली स्नोबॉल, जायंट स्नोबॉल, Hisar 1, पंजाब जायंट 26 और पंत शुभ्रा। 1 हेक्टेयर खेत की रोपाई के लिए 700 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई के लिए क्यारियां बनानी पड़ती हैं। यदि 1 हेक्टेयर रोपाई हेतु बेहन तैयार करना है तो 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी तथा 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी 5 क्यारियां बना लेते हैं। इन क्यारियों में 15 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर खेत तैयार कर लेते हैं। जब पौध तैयार हो जाए तो फिर रोपाई करनी चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर सामयिक कृषि कार्य करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था सामयिक कृषि कार्य और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

सूरज जब पलकें खोले मन नमः शिवाय बोले, मैं इस दुनिया से क्यों डरूं, मेरे रक्षक हैं शिव शंकर भोले।

ईश्वर ने जो कुछ आपके लिए किया है और जो कुछ आपके लिए कर रहे हैं और जो कुछ करने की योजना बना रहे हैं, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए।

प्रकृति ईश्वर का अनमोल उपहार, प्रफुल्लित जीवन का है ये सार। प्रकृति ही गोद में पलकर ही सुखमय है ये संपूर्ण संसार।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आवाजें थी हरिओम शरण, अनुराधा पौडवाल हरिहरन और प्रीति सागर की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु के अंतर्गत तैलंग स्वामी के विचार।
1: सभी तीर्थ विराजते हैं, स्थावर भी और जंगम भी। संत और महात्मा लीला मानुष रूपधारी स्वयं तीर्थ होते हैं। तपःपूत श्री तैलंग स्वामी 150 वर्ष तक इसी काशी के आनंदवन में विचरते रहे और सन 1887 में माता गंगा की गोद में लुप्त हो गए। ऐसे दिव्य पुरुष ऐश्वर्य, राज्य, स्वर्ग और धनादि की कामना से मुक्त होते हैं। उनकी कामना होती है संसार में दुखी और आर्तजनों का कल्याण। ऐसे पावन महात्मा जनों का जीवन और आचार ही उनके विचारों का प्रमाण होता है। श्री तैलंग स्वामी के नाम से हम जिस दिव्य विभूति का स्मरण कर रहे हैं, उनका जन्म सन 1607 ईस्वी में विशाखापत्तनम के निकट बिजना जनपद में होलिया गांव के जमींदार के घर में पौष शुक्ल एकादशी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तैलंग स्वामी के पिता नृसिंहधर और माता विद्यापति अपने कुल देवता शिव के अनन्य भक्त और कर्मनिष्ठ सेवक थे। उन्होंने महादेव की कृपा से ही पुत्र की प्राप्ति की और पुत्र का नामकरण हुआ शिवराम, और यही शिवराम तैलंगधर कालांतर में तैलंग स्वामी हो गए। बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता से अनेक धर्मोपदेश ग्रहण करते तैलंग स्वामी व शिवराम जी सांसारिक प्रपंचों से विरक्त हो चुके थे। एक दिन अपनी मातुश्री से ही इन्होंने प्रार्थना किया कि वह इन्हें विद्या और विद्या के भेद के साथ आत्मज्ञान प्रदान करें। पुत्र की जिज्ञासा का उत्तर माता ने दिया, सभी के गुरु उसे यथा समय मिलते हैं, कोहम के अनुसंधान में लगे रहो, समय पर आत्मज्ञान देने वाला श्री गुरु मिलेगा, उतने दिन अपने नित्य सेवा पूजा में लगे रहो। और माता ने कहा, मैं तुम्हारी गुरु नहीं हो सकती। कुछ समय बाद किशोर तैलंग स्वामी की माता जी ने उपदेश दिया, सद्गुरु कठिन परीक्षा लेकर दृढ़ निश्चय व्यक्ति को ही पात्रानुसार उस ज्ञान को देते हैं जिसे आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान कहते हैं। शिष्य यत्नपूर्वक अपना बल, विद्या और आराधना को पुष्ट करता रहे जिससे उचित समय पर श्री गुरु कृपा करें और दिव्य चक्षु का उन्मीलन कर दें। पिता की जमींदारी और धन संपत्ति से विरक्त शिवराम या तैलंग स्वामी अपनी माता के अंतिम संस्कार के बाद ही उसी चिता की विभूति शरीर में लिप्त कर श्मशानवासी हो गए। वर्षों बाद वहीं श्मशानस्थ कुटी में एक दिन आ पहुँचे श्री भगीरथ स्वामी सरस्वती, जो पंजाब से तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, पर साथ ही युवा शिवराम की आध्यात्मिक यात्रा में दीक्षा भी निमित्त था। श्री भगीरथ स्वामी सरस्वती जी के सत्संग में समय बीतता गया और श्री भगीरथ स्वामी के साथ शिवराम तैलंग स्वामी पुष्कर तीर्थ पहुँच गए। यहीं पुष्कर में सन 1685 ईस्वी में शिवराम तैलंगधर को दीक्षा मिली और इनका नामकरण हुआ गणपति सरस्वती। तैलंग स्वामी को तीर्थ यात्रा जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, गिरनार, हिमालय और मानसरोवर की यात्रा का आदेश देकर सन 1695 ईस्वी में श्री भगीरथ स्वामी सरस्वती ने नश्वर शरीर का त्याग कर स्वरूप प्राप्त किया और इसी के साथ गणपति सरस्वती तैलंग स्वामी तीर्थ यात्रा करते

0: दुखियों का दुख दूर करते, शुद्ध ज्ञान का उपदेश करते। त्रिवेणी संगम प्रयाग और वहाँ से 1737 ईस्वी में काशी आ गई। काशी में भदेनी हनुमान घाट दशाश्वमेध में वर्षों रहने के बाद श्री गणपति सरस्वती पंचगंगा घाट पर मंगलदास के घर में और घाट पर रहने लगे। तैलंग स्वामी नामकरण उनका यहीं काशी में हुआ और उनके चमत्कारों की कथा तो अनंत है ही। परम योगी देह मुक्त और जीवन मुक्त श्री तैलंग स्वामी की क्रियाओं और साधना को जानना कठिन है। श्री तैलंग स्वामी जी महाराज गंगा के भक्त थे, श्री राम यंत्र की पूजा करते थे, काली के उपासक थे, शिव उनके कुल देवता थे और भगवान श्री कृष्ण उनके आराध्य। तात्पर्य, वह संकीर्णता को छोड़कर सनातन और शाश्वत ज्ञान के पुंज पर परमात्मा स्वरूप शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रतोहम के मूर्त रूप थे। उनका उपदेश है सभी के लिए दया और करुणा। जो जीवन नहीं दे सकता वह किसी के प्राण नहीं ले सकता, इसलिए अहिंसा का व्रत, नित्य जप, आसन, ध्यान, धारणादिक और गुरु कृपा के लिए प्रतीक्षा, सभी शास्त्र के और निगमागम के आदेशों का सतत पालन करने वाले तैलंग स्वामी जी को सभी योग ऐश्वर्य और विभूतियां प्राप्त थीं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु के अंतर्गत तैलंग स्वामी के विचार। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हो रहे हैं। अब लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय है वर्षा ऋतु में शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वैभव जायसवाल।
2: डॉक्टर वैभव जायसवाल, मैं बाल रोग विभाग आयुर्वेद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का जो विषय है जिसपे हम लोग चर्चा करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है, वर्षा ऋतु में शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा। तीसरी एक जो महत्वपूर्ण बात कहेंगे जो हम इस समय कहना चाहेंगे, जो लोग गांव में रहते हैं स्पेशली, तो होता क्या है जो गांव में लोग रहते हैं तो जब पानी खूब भर जाता है, हर नदी नालों में पानी भरा रहता है, तो वहां जो बिच्छू छोटे छोटे कीड़े या सर्प होते हैं उनके भी जो होल्स होते हैं उसमें भी पतला पानी चला जाता है, तो वो लोग वो जो कीड़े होते हैं बिच्छू होते हैं सांप होते हैं कई बार वो निकल के घरों में चले आते हैं। और कई बार हम लोग को अखबार में पढ़ने को मिलता है कि सांप या बिच्छू बच्चा सोया था बड़ा सोया था उसको काट लिया। तो इस समय इसके लिए भी बड़ा हमें चौकन्ना रहना चाहिए कि जब भी आपके घर अगर ऐसा कहीं जगह हो जहां पर नदी नाले या बहुत ज्यादा पेड़ वेड़ हो तो हमें अपने घरों को एकदम बंद करके सोना चाहिए। और जब भी सोएं तो कोशिश करें घरों में जाली का जरूर प्रयोग करें, खुले ना हो जिसके कारण इस तरह की बड़े इंसिडेंट्स ना हो। तो हमें अपने स्वास्थ्य को अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में ही होता है, तो अगर वर्षा ऋतु का आनंद लेना है तो हमें हमेशा अपने आप को तैयार रखना होगा। कोशिश करें वर्षा ऋतु में हमें और बच्चों को जरूर गुनगुना पानी पिलाएं, तुलसी के काढ़े का सेवन कराएं, दूध हल्दी जरूर दें, ये 12 महीना पिलानी चाहिए। दूध हल्दी पिलाने से बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। तुलसी का काढ़ा पिलाएं क्योंकि वर्षा ऋतु में कई बार सर्दी जुकाम के भी इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं, तो तुलसी का काढ़ा, दूध हल्दी, गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलोय आजकल आसानी से मिल जाता है, गिलोय का काढ़ा बनाएंगे तो उससे क्या होगा इम्यूनिटी बढ़ेगी। और प्लस क्योंकि वर्षा ऋतु में हम जैसे मैंने बताया कि पेट की समस्या, पेट संबंधित समस्याएं जैसे लीवर संबंधित समस्याएं हो सकती है, तो उसके लिए साफ अन्न का प्रयोग करें, साफ पानी का प्रयोग करें, दूषित अन्न का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, हमें साफ उबला हुआ खाना खाना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं शिशुओं की, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो बड़े खेल कूद में रहते हैं, वो कीचड़ में भी खेल लेते हैं, हर जगह पानी में भी खेलते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके शरीरों में कीड़े चले जाते हैं, या अगर वो बाहर रहते हैं जहां पर उनका शरीर का पार्ट ज्यादा खुला रहता है तो वहां पर मच्छर आते रहते हैं, तो मच्छर आने की वजह से कई तरह की उनकी बीमारियां जैसे डेंगू मलेरिया इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और ठीक है, और दूसरा कि जो हमें जाली, जब भी हम सो रहे हैं तो हमें घर में नेट या जाली का प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा जो है, हमें बाहर जब भी निकले बच्चों को फुल बाह का कपड़ा पहनाए जिससे मच्छर कम काटे।

0: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप सब ये सब फॉलो करेंगे। थैंक यू।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय था वर्षा ऋतु में शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा। विशेषज्ञ थे डॉक्टर वैभव जायसवाल। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

निषादराज को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री रामचंद्र ने अपने घर लौट जाने को सहमत किया तथा स्वयं सीता और लक्ष्मण समेत वन की राह ली। राह में मिलने वाले वनवासियों को उन्हें तापस वेश में देखकर अत्यधिक चिंता होती है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के प्रति उनके हृदय में ऐसा अनुराग उमड़ पड़ता है जिसके वशीभूत वे उनके साथ साथ चल पड़ते हैं। वट वृक्ष की शीतल छांह देख कोई नरम घास और पत्ते बिछाकर वहां उनसे थोड़ी देर विश्राम कर लेने को कहता है, तो कोई कलश भर पानी लाकर प्रभु से आचमन कर लेने का आग्रह करता है। ऋषि कुमारों के वेश में श्री राम लक्ष्मण का अनुपम रूप देख गांव के स्त्री पुरुष इस प्रकार स्तब्ध रह जाते हैं जैसे दीपक का प्रकाश देख हिरणों का जोड़ा निस्तब्ध हो जाता है। गांव की स्त्रियां अपनी अल्प बुद्धि की विवशता बताकर सीता जी से दोनों कुमारों का परिचय जानना चाहती हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज की गायक कलाकार थी अनुराधा पौडवाल। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से दिन भर प्रसारित होने वाले शीर्ष प्रमुख कार्यक्रमों की।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 7:31 पर आज आप सुनेंगे गायन। आज की कलाकार होंगी विदुषी गंगूबाई हंगल। रात्रि 8 बजे विशेष भेंट वार्ता आप सुनेंगे, जिसमें कमांडेंट सेलेक्शन सेंटर ईस्ट मेजर जनरल धर्मराज राय से बातचीत करेंगे अरुण पांडे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रसमाधुरी में रात्रि 8:30 पर, और रसरंग में 7:50, शाम 6:10, शाम 7 बजे, सुबह 10:30 पर, और रसमाधुरी में रात्रि 8:30 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी हम लेकर आएंगे शाम 5:15 पर, जिसमें गीत संगीत के साथ श्रोता सुनेंगे आज की बात, युवाणी क्विज, यूथ डायरी और रोजगार सूचना। किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत हम लेकर आएंगे शाम 6:30 पर, जिसमें आज की बातचीत का विषय होगा अनुभव खेती में। इसमें रामलाल वर्मा से बातचीत करेंगे सतीश कुमार यादव। इसी में श्रोता सुनेंगे महेंद्र सिंह यादव और साथी के गाय लोकगीत। इन्हीं के गाय लोकगीतों को श्रोता सुन सकेंगे सुबह 9:50 पर। शाम 5 बजे बच्चों का कार्यक्रम हम लेकर आएंगे बाल गोपाल, और दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे एक ही फिल्म से। आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम हम लेकर आएंगे दिन 1:30 पर। 1:30 पर लोक रंग आप सुनेंगे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद, जिसमें श्रोताओं के पत्रों के साथ होंगे अरुण पांडे और सना सलीम।

0: दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे आज इतवार है कार्यक्रम के अंतर्गत झलकी उदयपुर की ट्रेन। लेखक हैं तपन भट्ट और प्रस्तुतकर्ता हैं लता गुप्ता। आपके फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हम लेकर आएंगे दिन 12 बजे। आज की प्रस्तुति होगी अरुण पांडे की। स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्य आप सुनेंगे दिन 11:30 पर, जिसमें आज की बातचीत का विषय होगा मधुमेह रोग में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल। और इस विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर अमित भास्कर से श्रीखा श्रीवास्तव। दिन 11 बजे आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम बाल संघ। सामुदायिक गान शिक्षा पाठ आप सुनेंगे सुबह 10:10 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे हिंदी गीत। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा हम लेकर आएंगे सुबह 8:45 पर, और सुबह 7 बजे आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग बनारस। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शीर्ष प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ह्यः आईआईटी दिल्ली इति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य विद्यार्थिनः समाकारिताः यत्ते स्वनिर्णयेषु राष्ट्रहितं सर्वोपरि स्थापयन्तु। आईआईटी दिल्ली इत्यस्य 57वें दीक्षांत समारोहं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् प्रत्येकं संततिः तात्कालिकं विशिष्टं समाह्वानं सम्मुखीकरोति, स्वस्य राष्ट्रीय दायित्वं च निर्वहति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् देशे नूतनानां क्षेत्राणां विकासेन युवभ्यः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। सेमीकंडक्टर अंतरिक्ष ड्रोन इत्यादीनां क्षेत्राणां उदाहरणानि उद्धृत्य सः अवदत् यत् भारतं सर्वेषु क्षेत्रेषु आत्मनिर्भरता प्राप्तये कार्यं कुर्वन्नस्ति। श्रीमोदी अवदत् यत् आत्मनिर्भरतायाः अयम् उपक्रमः विकसित भारतस्य निर्माणार्थं दृढाधारस्य कार्यं करिष्यति। अर्धचालक क्षेत्रम् अपि उदाहरणम् अस्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा आईआईटी दिल्ली इत्यत्र परमप्रज्ञा इति उच्चदक्षतायुक्तस्य सङ्गणसौविध्यस्य उद्घाटनमपि कृतम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः अमेरिकादेशस्य उपराष्ट्रपतिना जेडी वेन्स इत्यनेन सह दूरभाषमाध्यमेन वार्ता कृता। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये लेखे श्रीमोदी अवदत् यत् तौ प्रमुखेषु क्षेत्रेषु भारत अमेरिका समग्र वैश्विक सामरिक सहभागिताम् इतोपि सुदृढं कर्तुम् उपायेषु चर्चितवन्तौ। उभौ उच्चस्तरीय कार्येषु निरन्तरगतिं दृष्टवन्तौ, अपि च व्यापारस्य रक्षायाः महत्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीनाम् ऊर्जासुरक्षायाः महत्वपूर्ण खनिजानां च क्षेत्रेषु सहकारम् इतोपि सुदृढं कर्तुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ। उभौ नेतारौ परस्पर हितस्य क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विकास विषये अपि विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। हर घर तिरंगा इत्यभियानम् अद्य आरभ्य अस्मिन् मासे 17 पर्यन्तं च प्रचलिष्यति। राष्ट्रध्वजारोहणार्थं नागरिकान् प्रोत्साहयितुं देशभक्तिं राष्ट्र ऐक्यं भारतस्य सांस्कृतिक परम्परां च आचरितुं कार्यक्रमेषु भागग्रहीतुं च अस्य उपक्रमस्य उद्देश्यः अस्ति। द्वाविंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे आजादी का अमृत महोत्सवस्य अंशरूपेण आरब्धम् एतत् अभियानं ततः परं देशस्य बृहत्तमेषु जनसहभागित्व आन्दोलनेषु अन्यतमम् अभवत्। वर्षानुवर्षेषु एतत् यथार्थ जनान्दोलनत्वेन परिवर्तितम्, यत् भारतस्य एकतायाः, सम्मानस्य, सामूहिक राष्ट्रिय अस्मितायाः च प्रतीकरूपेण त्रिवर्णध्वजम् आचरितुं

हे बनारस, गुड वाला मॉर्निंग। क्या हाल चाल? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि भाई आज तो संडे है जी। और सुन रहे हैं आप अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। बनारस संडे यानी के छुट्टी का दिन, लेकिन भाई चल रहा है सावन और कल है मंडे यानी के सावन का दूसरा सोमवार, और हम बनारसी अपना भोले बाबा से मीटिंग का दिन आज ही फिक्स कर लेते हैं। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि हम चले शूल टंकेश्वर महादेव के मंदिर। जी हाँ, काशी से 15 किलोमीटर दूर स्थित ये शिवालय जिसका नाम है शूल टंकेश्वर महादेव मंदिर। वाराणसी का ये मंदिर काशी के दक्षिण भाग में स्थित है। इन्हीं मंदिर के घाटों से गंगा उत्तर वाहिनी होकर काशी में प्रवेश करती हैं, इसलिए इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। रोहनिया क्षेत्र के माधोपुर में गंगा तट पर शूल टंकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। चुनार रोड पर खनाव के पास एक बड़ा द्वार बनाया गया है। दर्शन पूजन के लिए यहाँ आम दिनों में तो श्रद्धालु आते ही हैं, शिवरात्रि और सावन में भी यहाँ काफी भीड़ होती है। पौराणिक महत्व के इस मंदिर का शिव पुराण में भी उल्लेख है। माँ गंगा का किनारा और खुला खुला ये मंदिर लोगों को बहुत आकर्षित करता है। मंदिर परिसर में माँ दुर्गा और राधा कृष्ण मंदिर के अलावा सीकड़ बाबा की कुटिया है। सावन और शिवरात्रि के अलावा छठ पूजा और देव दीपावली पर भी काफी श्रद्धालु जुटते हैं। दर्शन पूजा के साथ साथ सैर सपाटे के लिए भी अब बड़ी संख्या में लोग यहाँ आने लगे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से मंदिर क्षेत्र का सुंदरीकरण भी कराया गया है। शूल टंकेश्वर महादेव मंदिर के पास से गंगा उत्तर वाहिनी होकर काशी में प्रवेश करती हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि माधव ऋषि ने गंगा अवतरण के पूर्व शिव जी की आराधना के लिए शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान शिव ने इसी स्थान पर अपने त्रिशूल से गंगा के वेग को रोक कर उनसे वचन लिया था कि वो काशी को स्पर्श करते हुए प्रभावित होंगी। साथ ही काशी में गंगा स्नान करने वाले किसी भक्त को जलीय जीव से हानि नहीं होगी। माँ गंगा ने जब दोनों वचन स्वीकार कर लिया तब भगवान शिव ने अपना त्रिशूल हटाया। इस जगह को काशी खंड में आनंद वन के नाम से जाना जाता था। इसे काशी का दक्षिण द्वार भी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ गंगा के अवतरण के समय भगवान शिव को काशी के सुरक्षा की चिंता सताने लगी। उन्होंने यहीं अपना त्रिशूल गाड़ कर गंगा के वेग को रोका था, इसलिए इसका नाम शूल टंकेश्वर पड़ा। द्वापर में ब्रह्मा जी ने यहाँ वीरेश्वर महादेव के शिवलिंग की स्थापना की। दक्षिण दिशा में विराजमान शूल टंकेश्वर विपत्तियों से इस नगरी की रक्षा करते हैं। कालांतर में किसी राजघराने की ओर से इसे छोटे मंदिर का रूप दिया गया, जिसे स्थानीय लोग

लोगों ने 1980 के दशक में विस्तार दिया। मंदिर के पुजारी ये बताते हैं कि इसके पीछे धारणा ये थी कि जिस प्रकार यहाँ माँ गंगा का कष्ट दूर हुआ, उसी प्रकार अन्य भक्तों का भी कष्ट दूर होगा। यही वजह है कि पूरे वर्ष यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। सभी भक्त अपने मनोकामना को पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं। सावन के महीने में तो यहाँ भक्त दूर दराज से भी आते हैं, तो मेरी तरह आप भी इस सावन में या सावन के दूसरे सोमवार यानी कि कल शूल टंकेश्वर महादेव के मंदिर जा सकते हैं। और बनारस आज है संडे, तो एंटरटेनमेंट का एक जबरदस्त तड़का तो लगना बनता है। तो एंजॉय करिए ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक। आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक बनारस। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त नेहा के साथ। सावन मास के मेले को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। शनिवार को नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने टाउन हॉल स्थित आश्रय स्थल से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 तक कावड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कुछ दूरी पैदल तो कुछ मार्ग गोल्फ कार्ट से तय कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने टाउन हॉल स्थित कांवड़ियों के आश्रय स्थल में तत्काल चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आश्रय स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही पेयजल समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। नगर आयुक्त ने कांवड़ मार्ग पर स्ट्रीट लाइट, सीवर और सड़क व्यवस्था को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए मार्ग में किसी तरह की बाधा या अव्यवस्था नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने मार्ग में पड़ने वाले सभी सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सावन मेले के दौरान शौचालयों में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर रहनी चाहिए और सफाई कर्मियों की नियमित निगरानी की जाए। नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों को तत्काल दूर कर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाए। सावन में बड़ी संख्या में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के वाराणसी पहुंचने को देखते हुए नगर निगम की ओर से मार्ग सफाई और नागरिक सुविधाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसके चलते दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के स्थान में परिवर्तन किया गया है। आरती अब अपने निर्धारित स्थल से 15 फीट पीछे होगी। घाट पर आरती के लिए लगाए गए छतरियों और पाइप को भी हटा दिया गया है। शनिवार को गंगा का जल स्तर 63 मीटर दर्ज किया गया, हालांकि ये अभी चेतावनी बिंदु से काफी नीचे है। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष ने बताया कि जिस स्थान पर नियमित रूप से गंगा आरती आयोजित होती थी वो अब पानी में डूब चुका है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आयोजन की व्यवस्था को देखते हुए आरती स्थल को निर्धारित स्थान से करीब 15 फीट पीछे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गंगा का जल स्तर जिस गति से बढ़ेगा उसी के अनुसार आरती स्थल को भी आगे पीछे किया जाता रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के अवसर पर काशी में भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और रामायण परंपरा से जुड़े विशिष्ट व्यक्तित्वों का सम्मान किया जाएगा। रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से आयोजित रामायणी सम्मान समारोह में इस वर्ष देश भर की 28 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। सम्मान पाने वालों में प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा, लोकप्रिय गायिका अनुराधा पौडवाल, बिहार के आरके सिन्हा और काशी के डॉक्टर उदय प्रताप सिंह सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तित्व शामिल हैं। समारोह का आयोजन

दिन 19 अगस्त को काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में भारतीय अध्ययन केंद्र के सहयोग से किया जाएगा। आयोजकों के मुताबिक सम्मान समारोह का उद्देश्य रामायण, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, साहित्य, कला और सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने वाली विभूतियों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। रामायणी सम्मान के लिए इस वर्ष देश के अलग अलग हिस्सों से 250 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए हैं। इनमें रामायण और भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ साहित्य, आध्यात्म, कला, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तित्वों के नाम शामिल थे। चयन प्रक्रिया के बाद 28 विभूतियों को सम्मान के लिए चुना गया। रामायण रिसर्च काउंसिल के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के अध्यक्ष अजय भट्ट के अनुसार चयनित व्यक्तित्वों ने अपने अपने क्षेत्रों में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, आध्यात्मिक परंपराओं और रामायण से जुड़े विचारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वर्ष सम्मान पाने वालों में अनूप जलोटा और अनुराधा पौडवाल प्रमुख नाम है। दोनों ही भक्ति संगीत के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय है और भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को संगीत के माध्यम से व्यापक स्तर तक पहुंचाने में योगदान देते रहे हैं। गंगा और वरुणा के जलस्तर में संभावित बढ़ोतरी और बाढ़ के खतरे को देखते हुए वाराणसी प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने शनिवार को एनडीआरएफ की नाव से गंगा और वरुणा के तटवर्ती इलाकों का निरीक्षण कर बाढ़ से निपटने की तैयारियां परखी। उन्होंने अधिकारियों को जलस्तर और नदी के प्रवाह पर 24 घंटे नजर रखने के साथ ऐसी तैयारी रखने के निर्देश दिए कि जरूरत पड़ते ही प्रभावित परिवारों को बिना किसी देरी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। जिलाधिकारी ने नमो घाट से एनडीआरएफ की नाव के जरिए निरीक्षण शुरू किया। गंगा के जलस्तर और तटवर्ती क्षेत्रों की स्थिति देखने के बाद वो गंगा वरुणा संगम स्थित आदिकेशव घाट पहुंचे। यहां से सलारपुर, सरैया, कोनिया, पुल कोहना, ढेलवरिया और सराय मोहना सहित संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। डीएम ने खास तौर पर उन आबादी वाले निचले इलाकों को देखा जहां नदी का जलस्तर बढ़ने पर पानी पहुंचने और लोगों के प्रभावित होने की आशंका रहती है। उन्होंने अधिकारियों से अलग अलग क्षेत्रों की स्थिति और वहां उपलब्ध राहत संसाधनों की जानकारी ली। डीएम सत्येंद्र कुमार ने कहा कि गंगा और वरुणा के जलस्तर, प्रवाह और तटवर्ती क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए। जलस्तर में होने वाले प्रत्येक महत्वपूर्ण बदलाव की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों तक तत्काल सूचना पहुंचाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन को प्रतिकूल स्थिति बनने का इंतजार नहीं करना है। खतरे की आशंका दिखाई देते ही एहतियात कदम शुरू कर दिए जाएं, जिससे लोगों को समय रहते सुरक्षित किया जा सके। संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहले से चिन्हित राहत शिविरों को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने शिविरों तक पहुंचने वाले रास्तों, आवश्यक संसाधनों और राहत बचाव से जुड़ी व्यवस्थाओं की पहले से जांच करने को कहा। उन्होंने एनडीआरएफ और अन्य बचाव दलों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि आपात स्थिति आने पर प्रतिक्रिया में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने शहर बनारस का हाल समाचार और अब इसी के साथ बनारस मेरे भी जाने का वक्त हो चला है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताइए, आपको भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो अब गुड मॉर्निंग बनारस से दीजिए इजाजत अपनी होस्ट और दोस्त स्नेहा को। टाटा।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ

0: अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई निरीक्षण कर मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, कहा कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैयार है सरकार। उपभोक्ताओं के लिए निशुल्क रहेगा यूपीआई, केंद्र सरकार ने किया स्पष्ट, सभी व्यक्तिगत लेन देन बने रहेंगे निशुल्क। हर स्कूल में वाहन अटेंडेंट रखना होगा अनिवार्य, बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन आयुक्त ने सभी विद्यालयों के प्रबंधकों को जारी किया पत्र। और पहाड़ी इलाकों में बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों के जल स्तर में वृद्धि, अगले दो दिनों के लिए कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मेरठ के मोदीपुरम क्षेत्र में एक मंच से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस अवसर पर मेरठ के सांसद अरुण गोविल समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी कांवड़ यात्रियों पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाईं। इसके साथ ही पूरे कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर से सभी शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कांवड़ यात्रियों की नियमित सुरक्षा, सम्मान, सुविधा आदि की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार पूरी तत्परता से कांवड़ यात्रियों के स्वागत और सुरक्षा के लिए तैयार है।
3: कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन, सेक्टर मजिस्ट्रेट, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी, जोन, रेंज, जनपद, थाना स्तर के साथ ही तमाम पुलिस अधिकारी भी अभियान का हिस्सा बनकर सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वह मुख्यमंत्री आवास से लेकर विधान भवन तक निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर देशभक्ति का संदेश देते हुए अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। तिरंगा यात्रा के उपरांत मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र नाथ लाहड़ी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए काकोरी शहीद स्मारक जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बाद सिद्धार्थनगर जिले में डुमरियागंज और बांसी विधानसभा क्षेत्रों के लिए करीब 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन प्रसाद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल कल आगरा में दो दिवसीय एआई फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा,

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच अनुरूप कार्य जो हो रहा है कि धरातल पर इसका प्रभाव दिखाई दे, कृषि से लेकर स्वास्थ्य से लेकर छोटे मध्यम उद्योग और तमाम ऐसी जगहों पे AI का इस्तेमाल करते हुए भारत कैसे आगे बढ़ेगा, और ख़ास तौर से हमारे युवा इन प्रतिभा मैंने देखी कि जो छात्र छात्राएं हैं कॉलेजेस में उनको AI के लिए क्या सरकार प्रोत्साहन दे रही है उसके बारे में जानकारी दी।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि AI के बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता।
2: AI का भविष्य क्या है, हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और इसके बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। विशेषज्ञों ने अपने विचार दिए, इस वैचारिक मंथन से अमृत निकलेगा, वो भारत को प्रधानमंत्री का विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को पूरा करेगा।
1: कार्यक्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी शामिल हुए। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निशुल्क रखेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो यह केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। स्कूल जाने वाले 12 वर्ष तक के बच्चों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने नई पहल की है। ऐसे बच्चों को लाने ले जाने वाले हर स्कूल वाहन में अटेंडेंट यानी परिचारक या परिचारिका रखना अनिवार्य होगा, जो बच्चों को वाहन में सुरक्षित चढ़ाने और उतारने की जिम्मेदारी संभालेगा। इसे लेकर परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने प्रदेश के सभी विद्यालयों के प्रबंधकों को पत्र जारी किया है। पत्र में स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश भी दिए गए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल प्रयागराज में KP ग्राउंड में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए देश के विकास में युवाओं की सहभागिता को लेकर चर्चा की। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल लखनऊ में CSIR NBRI के बंथरा कैंपस में इको एजुकेशनल हब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह इको एजुकेशन हब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस परिकल्पना को साकार करता है जिसमें विज्ञान, सतत विकास और जन भागीदारी को एकीकृत करते हुए देश की वनस्पतिक धरोहर को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह केंद्र विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए पर्यावरण शिक्षा, जैव विविधता संरक्षण तथा अनुभवात्मक अधिगम का अनूठा मंच सिद्ध होगा।
3: प्रत्येक प्रदेश के पौधे भी लगाए गए हैं, वो चाहें तो आकर के अपने प्रदेश के उस पौधे के साथ खड़े होकर के तस्वीर खिंचवा सकते हैं, सेल्फी खिंचवा सकते हैं। दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर के यहाँ विधिवत PhDs और दूसरी तरह के अध्ययन कोर्सेज की भी व्यवस्था की जा सकती है।
1: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल प्रयागराज में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जनपद एवं क्षेत्र से जुड़े विभिन्न स्थानीय विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं, जनहित से जुड़े विषयों तथा स्थानीय स्तर पर सामने आ रही समस्याओं की जानकारी प्राप्त की और संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कल बस्ती में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से उनके इलाज और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि
4: मरीजों को अभी तक वातानुकूलित सेवाएं वहां उपलब्ध नहीं थी, तत्काल AC लगाए जाने के निर्देश दिए, पूरे वार्ड को वातानुकूलित किया जाए, इसके लिए धनराशि रोगी कल्याण निधि में उपलब्ध है, अस्पताल परिसर की पूरी मरम्मत किया जाए, सड़कें जो टूटी हैं बनाई जाएं।
1: प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने मऊ में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कल्पनाथ राय की पुण्यतिथि पर 5 मेगावाट क्षमता के

सौर ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि करीब 16 करोड़ रुपए की इस परियोजना से मऊ में स्वच्छ एवं सस्ती विद्युत की उपलब्धता बढ़ेगी। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। घाघरा नदी बाराबंकी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान से पास बह रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई निरीक्षण कर मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, कहा कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए

0: में कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, कहा कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैयार है सरकार। उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेगा UPI, केंद्र सरकार ने किया स्पष्ट, सभी व्यक्तिगत लेन देन बने रहेंगे निःशुल्क। हर स्कूल वाहन में अटेंडेंट रखना होगा अनिवार्य। बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन आयुक्त ने सभी विद्यालयों के प्रबंधकों को जारी किया पत्र। और पहाड़ी इलाकों में बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि, अगले दो दिनों के लिए कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत गायन। आज की गायक कलाकार हैं विदुषी गंगूबाई हंगल। राग है भैरव।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत गायन। आज की कलाकार थी विदुषी गंगूबाई हंगल। राग था भैरव। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। ये अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
5: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
6: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं

0: असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
2: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगे विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग,

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस

0: मूली, टहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
2: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। आईएमडी ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल न पूछें, समाधान भी खोजें, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को पीएम ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे, हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी, उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल, क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कावड़िए जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, AI ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 AI से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने अहम शोबों में जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है। ये मुहिम भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर शुरू की जा रही है। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट्स के लिए 30 जजों की तकरीरी को नोटिफाई किया गया है। रास्तों की मरम्मत और खराब मौसम की पेशगोई के बाइस पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल रहेगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और सगनिक रॉय और सयांतन कुशारी ने नवें आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में 31 बरस की उम्र वाली जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कल अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस की जानिब से फोन कॉल मौसूल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने अहम शोबों में भारत और अमरीका के दरमियान जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद वसअत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने आला सतही रवाबित में मुसलसल पेशरफ्त का जिक्र किया और तिजारत, दिफा, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, तवानाई की यकीनी फराहमी और अहम मादनियात के शोबों में तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने जनाब वेंस और उनकी अहलिया उषा वेंस को बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद दी और पूरे खानदान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में नए शोबे उभर रहे हैं जो नौजवानों के लिए नए मौके फराहम कर रहे हैं। कल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के 57वें जलसे तकसीम असनास से खिताब करते हुए उन्होंने सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन्स जैसे शोबों का जिक्र किया और कहा कि भारत तमाम शोबों में खुद कफील बनने की समत में काम कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि खुद किफालत की ये कोशिश विकसित भारत बनाने के लिए एक मजबूत बुनियाद साबित होगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो कौमी मफाद को अपने फैसलों के मरकज में रखें।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक जारी रहेगी। इस पहल का मकसद शहरियों को हुब्बुल वतनी, कौमी इत्तेहाद और भारत के मालामाल विरसे का जश्न मनाने की सरगर्मियों में शिरकत करने और कौमी परचम लहराने के लिए शहरियों की हौसला अफजाई करना है। इस मुहिम का आगाज आजादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात के हिस्से के तौर पर 2022 में किया गया था। उस वक्त से अब तक ये मुल्क की सबसे बड़ी अवामी शिरकत की तहरीक के तौर पर उभरी है। गुज़िश्ता बरसों में यह हकीकी तौर पर लोगों की तहरीक बन गई है जो मुल्क के सभी खित्तों और बिरादरियों को भारत के इत्तेहाद, वक़ार और मजमू कौमी शनाख्त का जश्न मनाने के लिए तहरीक देती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल की हर घर तिरंगा मुहिम खुसूसी अहमियत की हामिल है क्योंकि इस साल भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की भी 150वीं सालगिरह मनाई जा रही है। कौमी गीत और कौमी परचम का एक साथ होना हुब्बुल वतनी का मुनफरिद जश्न है। तकरीबात के हिस्से के तौर पर पूरे मुल्क में एक साथ मिलकर वंदे मातरम गाए जाने का एहतमाम किया जाएगा। इसके अलावा यौम आज़ादी की यादगार के तौर पर 14 अगस्त को मुल्क की तकसीम की हौलनाकियों को याद किया जाएगा ताकि मुल्क की तकसीम के बाईस होने वाली तकलीफों मसाइल

0: भारत के महकमे मौसमियात ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों में तेज से बहुत तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जजायर में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान अब्र आलूद रहेगा और यहां हल्की बारिश होने का इम्कान है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान उत्तराखंड के कई जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश की वार्निंग जारी की है। आज बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली के लिए तेज से बहुत तेज बारिश के इम्कान के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और चंपावत जिलों के लिए बाज मकामात पर शदीद बारिश के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को गरज चमक और आसमानी बिजली गिरने के इम्कान के बायस येलो अलर्ट के तहत रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मौसमियात के महकमे के मुताबिक आज रियासत के पहाड़ी जिलों में तेज बारिश का इम्कान है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में भी तेज से बहुत तेज बारिश की वार्निंग जारी की गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टेहरी, पावड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में बाज मकामात पर तेज बारिश के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के हालात के पेश नजर कुदरती आफात से निपटने और बाज आबादकारी के महकमे के सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन ने तमाम मुतालिका अजला को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत दी है। महकमों को जरूरी वसायल और आलात तैयार रखने और सड़कों पर रुकावट पैदा होने की सूरत में उन्हें फौरी तौर पर साफ करने की हिदायत भी दी गई है। देहरादून से साक्षी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: जम्मू कश्मीर में हालिया बारिश, रास्तों की मरम्मत के काम और आइंदा चंद दिनों में खराब मौसम की पेशगोई के बायस आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। ये फैसला यात्रियों की हिफाजत के पेश नजर एहतियाती इकदाम के तौर पर किया गया है। रामबन जिले समेत कश्मीर के बाज इलाकों में बारिश और खराब मौसम के हालात के पेश नजर एहतियाती तौर पर कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों के किसी नए काफिले को रवाना होने की इजाजत नहीं दी गई। 3,336 यात्रियों ने कल पवित्र गुफा के दर्शन किए और सरहदी सड़क तंजीम बीआरओ खराब रास्तों की मरम्मत और देखभाल का काम अंजाम दे रही है। हुकाम ने यात्रियों को मशवरा दिया है कि वो सरकारी हिदायत और एडवाइजरी पर अमल करें। चीन के हेफई में मुनक़िदा 9वीं आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सयानतन कुशारी ने 31 साल तक की जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता। पहले मरहले के आखिरी राउंड में 34 जोड़ियों ने हिस्सा लिया और सरफहरिस्त 14 जोड़ियां, जिनमें भारतीय जोड़ी भी शामिल है, फ्लाइट ए में पहुंच गईं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
2: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के आईआईटी दिल्ली के 57वें सालाना जलसे तकसीम असनाद तकरीब से खिताब की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इंकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तलबा से कहा कि नौजवान बाख्तियार होंगे तो भारत भी मजबूत होगा। दुनिया तेजी से बदल रही है, कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि आइंदा 20 से 30 साल बाद दुनिया कैसी होगी। रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को शाये करते हुए सुर्खी बनाया है, गैर रुकाजी ईंधन साफ सुथरी तवानाई की ताकत और अजाइम की अलामत है। रोजनामा इंकलाब ने एक और अहम खबर को सुर्खी बनाया है, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन को मजबूत बनाने के लिए 187 उम्मीदवारों को तकर्रुनामे सौंपी।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के नायब सदर जेटी वेंस ने अहम शोबों में जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है। ये मुहिम भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर शुरू की जा रही है। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट्स के लिए 30 जजों की तकरूरी को नोटिफाई किया गया है। रास्तों की मरम्मत और खराब मौसम की पेशगोई के बायस पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल रहेगी। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और सगनिक रॉय और सयातन कुशारी ने 9वीं आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में 31 बरस की उम्र वाली जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, साहित्य
1: हम आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे एक छोटी सी संदेश के बाद।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें
7: 0542227658,
8: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा और ये कार्यक्रम लेकर आ गई हूँ मैं आप, यानी आपके रेडियो हम सफर नीलू तिवारी। तो कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कहते हैं ना कि वक्त दिखाई नहीं देता लेकिन अपने गुजरने का एहसास जरूर करा जाता है। वक्त कितना अजीब है कि अच्छा वक्त हो तो लगता है कि बस यही ठहर जाए और मुश्किल वक्त हो तो लगता है कि ये पल जल्दी गुजर जाए। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वो अपनी चाल से चलता है। कभी हमें हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी कुछ खूबसूरत लोगों से मिलाता है और कभी कुछ रिश्तों को हमारी यादों का एहसास बना देता है। आज मधुरिमा में बात इसी वक्त की अपनी कहानी।

दोस्तों, जिंदगी के सफ़र में कुछ रास्ते आसान होते हैं और कुछ बहुत मुश्किल। कुछ लोग हमारे साथ लंबे समय तक चलते हैं और कुछ बस कुछ दूर तक। लेकिन हर मुलाकात, हर पड़ाव हमारी कहानी में कुछ न कुछ जुड़ जाता है। बचपन में हमें वक्त की कीमत कहाँ मालूम होती थी। एक छुट्टी का दिन कितना लंबा लगता था। दोस्तों के साथ खेलने के लिए पूरा आसमान खुला रहता था। और आज लगता है दिन शुरू हुआ नहीं कि ख़त्म हो गया। शायद वक्त नहीं बदला, हमारी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, कल की फिक्र में आज को खो मत देना। बीते लम्हों को सोचकर खुद को रो मत देना। वक्त की फितरत है आगे बढ़ते जाना। जो पल मिले हैं उन्हें यूं ही खो मत देना।

दोस्तों, कुछ वक्त सिर्फ वक्त नहीं होता, वो किसी इंसान की आवाज़ बन जाता है, किसी पुराने घर की खुशबू, किसी दोस्त की हंसी या फिर किसी पुराने गीत की धुन। कभी कोई गीत अचानक बजता है और हम बरसों पीछे चले जाते हैं। यही तो यादों की खूबसूरती है।

वक्त आगे निकल जाता है लेकिन यादें वहीं कहीं ठहर जाती हैं, और शायद इसलिए कुछ पुराने पल आज भी हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि काश वो वक्त फिर लौट आए, लेकिन वक्त लौटता नहीं। जी हाँ, उसकी याद जरूर लौट आती है। इसलिए जो पल आज आपके पास है ना, उसे पूरी तरह महसूस कीजिए। किसी अपने से बात करनी है तो आज ही कर लीजिए, किसी को धन्यवाद कहना है तो आज ही दे दीजिए, किसी रूठे हुए को मनाना है तो बिल्कुल देर मत कीजिए, क्योंकि वक्त की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो हमें मौका देती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं।

दोस्तों, जो पल अभी हमारे पास है वही हमारा सच है। कल क्या होगा कौन जानता है, इसलिए जिंदगी को सिर्फ भविष्य की चिंता में मत गुजारिए, कभी आज को भी जी लीजिए। एक कप चाय, परिवार के साथ कुछ मिनट, दोस्त की एक फोन कॉल्स, बारिश को खिड़की से देखना और कोई पुराना सा गीत सुनना, ये छोटी छोटी चीजें ही तो जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। दोस्तों, वक्त की किताब में हर पन्ना खास होता है, कभी खुशी कभी गम का एहसास होता है। जो आज गुजर रहा है कल याद बनेगा, इसलिए हर लम्हा जीना भी तो एक अंदाज होता है।

दोस्तों, कभी कभी वक्त हमें लोगों की राय से ऊपर उठना सिखाता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग पसंद करेंगे या नहीं, इन सवालों में हम अपनी जिंदगी के कितने पल खो देते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के बाद ये समझ आता है कि दूसरों की आवाज़ से ज़्यादा ज़रूरी है अपने दिल की आवाज़ सुनना। वक्त हमें बदलता है, कभी मजबूत बनाकर, कभी समझदार बनाकर, और कभी ये सिखाकर कि हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ लोग जिंदगी में हमेशा के लिए आते हैं और कुछ कोई जरूरी सबक देकर चले जाते हैं। दोनों ही हमारी कहानी का हिस्सा होते हैं। अगर आज आपको लगता है कि जिंदगी बहुत तेज भाग रही है ना, तो कुछ पल रुकिए, खिड़की से बाहर देखिए, किसी पुराने गीत को सुनिए और कार्यक्रम को समाप्त करने के दीजिए अपने रेडियो हम सफर नीलू तिवारी को अनुमति, और सुनते रहिए ये प्यारा सा गीत।

Madhurima, the sound of melody. Madhurima. अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा, जिसे हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की ऐतिहासिकता, जन जागरण में भूमिका के साथ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन बिल 2026 के महत्व पर जयनारायण महाविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर गिरिजेश त्रिपाठी से खास बातचीत। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा।
2: वंदे मातरम ये केवल दो शब्द नहीं बल्कि भारत की आजादी की उस अमर गूंज का नाम है जिसने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की अलख जगाई। यही वो उद्घोष था जिसे बुलंद करते हुए अनगिनत क्रांतिकारी फांसी के फंदे तक मुस्कुराते हुए पहुंचे। हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने लाठियां और गोलियां झेली और लाखों देशवासियों ने भारत माता की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वंदे मातरम एक बार फिर राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान यानी जनगण मन के समान कानूनी संरक्षण दिया गया है। ऐसे में ये समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतिहास में वंदे मातरम की भूमिका क्या रही, आज इसकी प्रासंगिकता क्या है और ये विधेयक देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकता है। आज इन्हीं सभी पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयनारायण पीजी कॉलेज लखनऊ में इतिहास विभाग के प्रोफेसर गिरिजेश त्रिपाठी जी। सर, आपका आकाशवाणी पर बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सैलेन जी।
2: सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि संसद में लाए गए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने की जो पहल की गई है, इतिहास और वर्तमान सामाजिक संदर्भ में आपको इसकी आवश्यकता क्यों महसूस होती?
3: देखिए सैलेन जी, आप एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं कि जब हम कानूनी रूप से किसी चीज को ले आते हैं तो वो भले ही कुछ समय के लिए हमको लगता है कि वो हमारे ऊपर एक अनुशासनात्मक कार्यवाही के तौर पे डाली गई है, लेकिन कई बार उसको फॉलो करते करते वो हमारे आदतों में, हमारे स्वभाव में कब शामिल हो जाता है हमें पता नहीं चलता है। जैसे आप मेट्रो स्टेशन पे जाएं, और मेट्रो स्टेशन से ही जुड़ा हुआ बहुत सारे स्टेशन है, दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन की मैं बात करता हूं। मेट्रो स्टेशन की जो दीवारें हैं उस पे लिखा हुआ है कि थूकना मना है या कहीं इधर उधर ना थूकें। वही जनता जब जाती है, रेलवे स्टेशन है अपना इंडियन रेलवे का, वहां पे ये सब चीजें नहीं लिखी हैं, कोई जुर्माना नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो कई बार हम देखते हैं उस स्वभाव के उसमें है उनके कि बंदिश नहीं है, कोई कानून नहीं है, वो थूकना शुरू कर दे। तो कई बार होता क्या कि हम जब अनुशासनात्मक रूप से किसी चीज को लेते हैं, कोई चीज हमारे ऊपर व्यवस्था के रूप में डाली जाती है तो हमारे स्वभाव में आ जाती है। चूंकि वंदे मातरम कोई सामान्य दो शब्द नहीं है, अगर हम बात करें इतिहास की तो आप कहेंगे कि ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन बंकिम चंद्र जी ने जब इसको लिखा है तो उसमें बंगाली भी है और संस्कृत भी है। तो ये प्योर संस्कृत भाषा का भी नहीं है, मराठी भी नहीं है, प्योर बंगाली भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, तो ये किस भाषा का शब्द है? तो जब इसका उत्तर आप अपने अंतर्मन में तलाशेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो हमारे भारत में रहने वाले लोगों की हृदय भाषा का शब्द है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और गुजरात से लेकर आसाम तक, तो ये पूरा जो देश है, इस देश में रहने वाले विभिन्न जो भाषा भाषी लोग हैं, विभिन्न पहनावों के साथ जुड़े हुए, विभिन्न खान पान के साथ जुड़े हुए, वो इस पूरी मातृभूमि को एक देवी स्वरूप में मानकर, अपनी मातृभूमि मानकर इसकी आराधना करते हैं, इसका वंदन करते हैं। उसको ये अभिव्यक्त करने वाले दो शब्द हैं वंदे मातरम, और इसने न केवल हमको ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा संबल दिया है, वरन आजादी के लिए जब हमारा आंदोलन चल रहा था उस समय भी इन दो शब्दों ने हमको इतना प्रेरित किया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा देश, कोई ऐसा उदाहरण किसी कालखंड में आपको नहीं मिलेगा जब किन्हीं दो शब्दों ने इतना प्रभावित किया हो इतने बड़े जनमानस को, इतनी बड़ी जनसंख्या को।
2: आजादी का गान
3: जी, बिल्कुल आजादी का गान बन गया। इसका उद्देश्य इतना ही है कि जब हम व्यवस्था के रूप में किसी चीज को दे देते हैं तो उसको हम बताएंगे कि ये व्यवस्था है, इसका किसी तरह से अपमान नहीं होने देना है,
2: हमारे व्यवहार में शामिल,
3: वो व्यवहार में शामिल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो ऐतिहासिकता भी उसके अंदर आएगी, ऐतिहासिक रूप से जो इसका महत्व था उससे भी वो जुड़ पाएगी।
2: सर बिल्कुल, आपने उसकी ऐतिहासिक बात की, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सर जानना चाहेंगे कि राष्ट्रगान जनगण मन के समान कानूनी संरक्षण देने का संदेश क्या गया है, हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक चिन्हों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाने के लिए आखिर कितना जरूरी था?
3: देखिए सैलेन जी, भारतीय संविधान में बड़े स्पष्ट रूप में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों और राष्ट्रगान आदि के संदर्भ में एक व्यवस्था दी गई है, कुछ अनुच्छेद है उससे संबंध में, कि भारत के प्रत्येक नागरिक को या भारत देश में

0: रहने वाले प्रत्येक वासी को, अगर वो नागरिक नहीं भी है, कहीं बाहर से भी आया है और भारत में रह रहा है, तो उसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का, भारत के राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा। तो ये जो जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है, तो वो तो चूंकि जब हमारा संविधान बना तो एक व्यवस्था के रूप में उसी समय संविधान में ये चीजें लागू कर दी। लेकिन वंदे मातरम हमारी सांस्कृतिक अवचेतना का तो बहुत बड़ा मानदंड था, लेकिन वो सांस्कृतिक अवचेतना के जो ये दो शब्द हैं वंदे मातरम, तो उसमें हुआ क्या कि बाद के दिनों में जब आजादी का जो हम आंदोलन जो हमारा चला, 1947 में हम स्वतंत्र हुए, स्वाधीन हुए, उससे कुछ वर्ष पहले, लगभग मान के चलिए 20 से 25 साल पहले, कुछ दुर्भाग्यवश तुष्टिकरण का एक ऐसा दौर चला हमारे, कि जिसमें धर्म और मजहब के नाम पर बहुत सारी बातें राजनीति में हमारे शामिल हो गई। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मजहब के नाम पर हमारा देश बटा, दो टुकड़े हो गए इसके, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारण बनते चले गए कि एक तुष्टिकरण का भाव कुछ राजनीतिज्ञों के द्वारा कहीं मजबूरी में और कहीं स्वार्थवश इसको लाया गया। तो उसी तुष्टिकरण के चलते वंदे मातरम को जो दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। देर से ही सही हमारी जो सरकार है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहूंगा, हमारी जो अभी वर्तमान में संसद है उसमें बैठे माननीयों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि देर से ही सही, लेकिन उन्होंने इस भाव को समझा कि जो महत्व राष्ट्रगान का हमारे लिए है, वैसा ही महत्व चूंकि ये राष्ट्र को जोड़ने के दो शब्द हैं, हमारे हृदय के तारों को झंकृत करने का गान है, और इसको जब तक हम वही मान वही दर्जा नहीं देंगे जो जनगण मन को देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी ही जो सांस्कृतिक हमारी जो विरासत है उसके साथ हम अन्याय करेंगे।
1: स्तर पर भी अनेक देशों में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। ऐसे में जब भारत में वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने की अब ये पहल की गई है, ये अलग अलग वर्गों में किस तरह से प्रभावी होगी और आप इस पहल को किस तरह से देखते हैं?
0: बिल्कुल सलीन जी, आपने ठीक कहा। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, एशियाई देशों में अगर हम देखें तो जापान एक बहुत प्रखर राष्ट्रीयता का देश है। हम लोग कहते हैं कि जब जापान में बच्चे से पूछा जाता है कि तुमको क्या बनना है, तो आमतौर पर उसका जवाब डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसी, जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर बच्चे कई बार बोलते हैं, वहां नहीं है। वहां एक सामान्य उत्तर होता है कि हमको अच्छा जापानीज बनना है। तो एक राष्ट्रीयता भाव का एक अच्छा उदाहरण हमारे सामने है जापान का। और वहां पे कानून के जरिए, जैसे अभी व्यवस्था दी गई है हमारे यहाँ, इसी तरह कानून के जरिए वहां के राष्ट्रीय प्रतीकों, वहां के राष्ट्रगान को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। उसका मान होता रहे, उसके मान में निरंतर वृद्धि होती रहे, किसी तरह का अपमान न हो वहां। ऐसे ही चले जाइए आप, कतर है, सऊदी अरब है, यूरोपीय देशों में जाएंगे तो इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, कई उदाहरण हमारे सामने ये देखने में आते हैं कि जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनके संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। और ये प्रावधान भारत में थोड़ा इसलिए जरूरी है कि देखिए भारत बहुत ही ज्यादा विविधता है सांस्कृतिक रूप से, यहाँ पे भाषा की दृष्टि से बहुत विविधता है, विचारों में भी बड़ी विविधता है, और ये विविधता हमारी कमजोरी नहीं है। इसको किसी भी व्यक्ति को इसे कमजोरी के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो एकता होती है वो उसी एकता का ही वास्तव में विशिष्ट रूप विविधता होती है। हमारे यहाँ विशिष्टाद्वैत दर्शन है, वो जो द्वैतों में विशिष्ट है वो अद्वैत है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो विविधता है उस विविधता में एकता कैसे स्थापित हो, तो वो उसका प्रयास हमारे दार्शनिकों ने, हमारे चिंतकों ने अनादिकाल से किया है। तो इस विविध देश में जो लोग रहते हैं सबके मन में हमारे इस राष्ट्रगान के प्रति, हमारे वंदे मातरम गीत के प्रति समान भाव जागृत हो पाए और समान रूप से हम उसका सम्मान कर सकें, आने वाली पीढ़ियां भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय आदि चीजों से ऊपर उठकर इस महत्वपूर्ण गीत को आत्मसात कर सकें, इसके लिए मैं समझता हूँ एक व्यवस्था देने की जरूरत थी और वो संसद ने की।
1: सर, चर्चा की शुरुआत में आपने वंदे मातरम की ऐतिहासिकता को लेकर बात की थी, तो सर आपसे हम समझना चाहेंगे कि वंदे मातरम की रचना किन ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुई और स्वतंत्रता आंदोलन में इस गीत ने जन जागरण और राष्ट्रीय चेतना को किस प्रकार नई ऊर्जा दी।
0: जी सलन जी, आप चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी भी हूँ और प्रत्येक व्यक्ति को मैं मानता हूँ इतिहास का विद्यार्थी होना चाहिए, थोड़ा बहुत इतिहास जरूर पढ़ना। हम अपने मूल को नहीं जानेंगे तो हम बहुत सारी समस्याओं से रूबरू नहीं हो पाएंगे। देखिए 1870 का दशक था, उसमें एक प्रावधान लागू किया गया। थोड़ा सा और पहले जाए तो 1857 का गदर कहते हैं जिसको, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम जिसको मानते हैं, वो असफल हो गया। और उसकी असफलता ने जो राष्ट्रीय भाव से भारत के लिए काम करने वाले लोग थे उनके मन में बड़ी गहरी निराशा बैठ गई। ऐसे में एक बड़ी विशिष्ट घटना घटी और वो घटना घटी रानी विक्टोरिया के सम्मान में, उनके सम्मान को किस तरह से ब्रिटिश इंडिया में एक कानूनन जामा पहनाया जाए इसका प्रावधान करते हुए एक व्यवस्था 1876 ईस्वी में दी गई यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और उसमें क्या था कि गॉड सेव द क्वीन करके एक गीत था, वो गीत गाना अनिवार्य कर दिया गया। जितने सांस्कृतिक समारोह सरकारी रूप से होते थे उसमें इस गीत को गाना अनिवार्य कर दिया गया। उस समय गॉड सेव द क्वीन करके
1: विक्टोरिया का,
0: हाँ जी विक्टोरिया के लिए, तो ब्रिटिश संसद के जरिए ही ये सब चीजें थोपी जाती थी यहाँ पे। तो ये गॉड सेव द क्वीन करके जो गीत था उसको जबरन एक तरह से सभी सरकारी समारोहों में गाने के लिए बाध्य किया गया। उस समय बंकिम चंद चटर्जी जी डिप्टी कलेक्टर के पद पे, उसी अंग्रेजी जो प्रशासनिक हेरार्की थी उसमें

0: कर रहे थे, और उन्होंने जब इसको देखा और सुना तो बड़ी ठेस लगी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता से बहुत निराश भी थे, राष्ट्रवादी थे। उन्होंने मन में ठाना कि हमको मातृभक्ति का एक गीत रच, और उन्होंने ये इस उत्कट देशभक्त से परिपूर्ण गीत की रचना की, और 1878 के आसपास में यह गीत उनके द्वारा लिखा गया। 1882 में एक सन्यासी विद्रोह पर आधारित एक उन्होंने उपन्यास लिखा, आनंद मठ, आपने उन्होंने नाम सुना होगा, उस आनंद मठ में इसको प्रकाशित किया इस गीत को। उससे पहले गीत को स्वतंत्र रूप में वो लिख चुके थे,
1: कोई
0: लेकिन उस
1: पत्रिका तो उसमें भी
0: उपन्यास में,
1: प्रकाशित हो चुका।
0: जी जी गीत तो प्रकाशित हो चुका था। 1882 ईस्वी में जब आनंद मठ प्रकाशित हुई तो उसमें ये गीत पूरा प्रकाशित हुआ, और उसमें एक सन्यासी है जिसके मुंह से इन्होंने इसको गवाया है, वो सन्यासी गाता है, पात्र है उस,
1: वो अंग्रेजों के खिलाफ
0: जी
1: विद्रोह
0: जी
1: जो उस
0: जी
1: समय
0: जी
1: अकाल और
0: सन्यासी
1: जमींदारी
0: विद्रोह,
1: प्रथा
0: जी
1: थी इन
0: बिल्कुल
1: सब को
0: बिल्कुल,
1: लेकर
0: वो जो शोषण व्यवस्था थी,
1: विद्रोह सब।
0: कह लीजिए जमींदारी व्यवस्था से पनपी, और उसके मूल में ब्रिटिश शासन था, तो वहां से ये शुरुआत होती है। हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल में अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, माँ हमारी पृथ्वी है और उसके हम पुत्र हैं। तो यहाँ तो भगवान राम ने जननी जन्म भूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, तो ये हमारे यहाँ परंपरा में है, वो वैदिक काल से है, वो रामायण काल में मिलती है, आगे के समय में निरंतर उसका प्रवाह हम देखते हैं। ये जो भूगोल है, हम जिसको हम विश्व के मानचित्र पे, खाली भौगोलिक नक्शा नहीं है भारत देश, भारत में रहने वाला जो भी व्यक्ति है उसको ये भूमि का टुकड़ा के रूप में नहीं देखता है, वो मातृभूमि के रूप में
1: मातृभूमि
0: देखता है। और जो भी व्यक्ति उस समय इस चीज को जी रहा था, इस चीज को महसूस कर रहा था, उसके मन में अपार पीड़ा थी, इस गीत ने इतना संबल दिया। इस गीत को जब आप सुनेंगे, मैं अपने श्रोताओं से निवेदन भी करूंगा कि आज तो गूगल का जमाना है, आप उस पर डालेंगे तो हिंदी अर्थ सहित उसका अनुवाद आपको मिलेगा, आप उसको पढ़िए, उसका भाव देखिए, उसको सुनिए, सुनिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपने भावपूर्ण मुद्रा में इसको सुन लिया, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप। 1886 का जो दूसरा कांग्रेस अधिवेशन था, उसमें एक कविवर करके थे, वो कविराज की उपाधि उनकी, उन्होंने ये गीत गाया था, और वो 1896 में इसको स्वरबद्ध तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको
1: टैगोर
0: गाया। आगे चलकर देखते देखते देखते देखते अठभंग भंग आंदोलन हुआ, उसमें तो ये गीत प्रेरणा स्रोत बन गया। मैडम भीकाजी कामा, जिन्होंने स्टुटगार्ट में ध्वज अपना फहराया था, उस पर वंदे मातरम छपा हुआ था। लाला लाजपत राय जी ने वंदे मातरम अखबार निकाला, पत्रिका निकाली, आपने
1: मदनलाल
0: उनका
1: भींगरा भी फांसी पर
0: उन्होंने किया वंदे
1: ब्रिटेन।
0: मातरम। अरे वो वंदे मातरम मंत्र बन गया, कि आप ये समझिए 22 साल में जो आंदोलन हुआ अठभंग भंग विरोध के क्रम में, तो 1806 ईस्वी में 22 साल में एक बड़ा एक पदयात्रा निकली, और उस पदयात्रा में जो ही वंदे मातरम उद्घोष शुरू हुआ, और देखते देखते ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बना, अंग्रेज सरकार घबरा गई। आपने नाम सुना होगा, एक टाउन हॉल था कलकत्ता में,
1: टॉम
0: वहां 30,000 लोग इकट्ठा हुए बंग भंग में, और 30,000 लोगों ने इसका सामूहिक गान किया। लोग बताते हैं कि वहां सुनने वाले मतलब हजारों लोग रो रहे थे। तो ये जो गीत है, वो मैंने कहा ना, ये कोई ऐसे साधारण सी पंक्तियां नहीं है, ये हमारे भाव में उतरा हुआ है, हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम मातृभूमि के प्रति, जो हमारा आदर है, जो सम्मान है, वो कूट कूट के इसमें भरा हुआ है। और मैं समझता हूं इस गीत को इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ जब आप देखते हैं, तो बहुत पहले इस गीत को कायदे से संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक व्यवस्था वैसे ही इस गीत के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन वो कुछ दुर्भाग्य या कुछ
1: संविधान सभा की बैठक हुई सर 1950 में, उसमें राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इसे राष्ट्रगान के समान ही सम्मान मिलने की प्रक्रिया को आगे किया जाए।
0: जी बिल्कुल, वहां भी वही जो राजनीतिक विमर्श जब हुआ वहां पे, तो वहां पे कुछ जो मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान बना चुका था, लेकिन फिर भी अभी मुस्लिम लीग के कुछ नेता यहाँ थे, कुछ उस समय के और भी नेता ऐसे थे जो सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष होने की बात कहते थे, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वो धर्मनिरपेक्षता की उस भाषा में इस गीत में कोई आपत्ति हो सकती थी। लेकिन उन्होंने आपत्ति की, इसके दो अंतरा तो चल सकते हैं, लेकिन बाकी के तीन अंतरा, वो माँ दुर्गा की स्तुति जैसा है, उसमें साक्षात उनका नाम दिया है, उनके स्वरूप का वर्णन है, इसलिए हम इसको नहीं गा सकते, या देश का एक बड़ा हिस्सा है जो इसको मूर्ति पूजा के रूप में देखेगा, उसके लिए आपत्तिजनक है। और यह कहकर इस गीत का थोड़ा कह लीजिए महत्व राजनीतिक रूप से जानबूझ के या अनजाने में कम कर दिया गया, जो मैं समझता हूं कि थोड़ा मेरे लिए दुर्भाग्य का।
1: अब राष्ट्रीय एकता की बात है, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की बात है, उस लिहाज से और उस दिशा में वंदे मातरम वर्तमान परिवेश में कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम नेशनल इंटीग्रिटी की बात करें।
0: देखिए अभी जो भारत देश है हमारा, वो युवाओं का देश है, अभी आपने कहा, और आने वाला समय युवाओं का है, और मैं केवल आने वाले समय की बात नहीं कर रहा हूं, कभी भी किसी भी कालखंड में किसी भी देश की दशा और दिशा है वो युवा ही तय करते हैं। और जब युवा वर्ग में मातृभूमि से जुड़ा हुआ भाव विकसित हो जाएगा, और इस भारत देश को वो मातृभूमि के रूप में देख के सेवा करेगा, किसी भी क्षेत्र में, समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएगा, तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर करेगा। तो ऐसे में वंदे मातरम का भाव जागृत करना युवाओं में बहुत जरूरी। तो मैं समझता हूं समसामयिक रूप से भी देखा जाए, या आने वाले किसी भी समय में मातृभूमि के प्रति वंदना, मातृभूमि के प्रति आराधना, मातृभूमि के प्रति वंदन, इसका तो मैं समझता हूं कि कभी ये कालातीत नहीं हो सकता कभी, तो ये हमेशा बने रहना चाहिए। और इस व्यवस्था के अंतर्गत अगर युवा पीढ़ी में इसका भाव जागृत होता है, तो ये स्वागत करने वाली बात है।
1: बिल्कुल सर, आपने वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व, स्वतंत्र

0: आंदोलन में उसकी भूमिका और साथ ही वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता को लेकर विभिन्न पहलुओं पर बेहद महत्वपूर्ण और तथ्यपरक जानकारी दी। सर, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सर आपका बहुत बहुत
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की ऐतिहासिकता, जन जागरण में भूमिका के साथ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन बिल 2026 के महत्व पर जय नारायण महाविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर गिरिजेश त्रिपाठी से खास बातचीत। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश के तहत आज उर्दू कार्यक्रम में काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस और भारत छोड़ो आंदोलन जयंती पर आइए सुनते हैं मबनी प्रोग्राम आजादी की राह पर इनकलाब की गूंज। सदाकार हैं शमशुल आरफीन, शाइस्ता जाहिद राजेश्वरी, सुरेंद्र राजेश्वरी, आसिफ इकबाल और राघवेंद्र सिंह। पेशकश आसिफ इकबाल की है।
1: सामईन आदाब, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम। सामईन, आज हम आपको लेकर चलेंगे हिंदुस्तान की आजादी की जद्दोजहद के उस सुनहरे और जुरात भरे बाप की तरफ जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के करीब काकोरी के मकाम पर कुछ नौजवान इनकलाबियों ने अंग्रेजी हुकूमत का खजाना ले जा रही ट्रेन को रोककर एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो सिर्फ एक डकैती नहीं थी बल्कि गुलामी के खिलाफ बगावत का ऐलान था। इस कार्रवाई का मकसद अंग्रेजी खजाने से रकम हासिल कर आज़ादी की लड़ाई को मजबूत करना था। आज के इस प्रोग्राम में हम याद करेंगे उन जांबाज फर्जंदान वतन को जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और उनके साथियों को उनकी कुर्बानियों को जो हमेशा हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखी जाएंगी। आइए सुनते हैं आज़ादी की राह में इनकलाब की गूंज।

0: वतन की पास बानी जानो ईमा से भी अफजल है। मैं अपने मुल्क के खातिर कफन भी साथ रखता हूं। और सामईन, यही वो जज्बा था जिसने अंग्रेजों को खौफजदा कर रखा था। 1857 से लेकर 1947 तक, यानी 90 सालों में हर हिंदुस्तानी के दिल की यही आरजू थी कि हम फिरंगियों से अपने वतन अजीज हिंदुस्तान को आजाद कराकर ही रहेंगे। आदाब सलाम, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ मरकज, और मैं हूं आपका मेजबान शम्सुल आरफीन, और मेरे साथ हैं
1: आपकी मेजबान शाइस्ता जाहिद। आदाब कबूल फरमाएं।
0: शाइस्ता जी, आज बेहद अहम दिन है, क्या कहेंगी आप?
1: अरे भाई, सिर्फ अहम ही नहीं, तारीखी दिन है आज।
0: तारीखी दिन? भला वो किस लिहाज से?
1: दरअसल मेरा जहन आज बार बार मरकजी लखनऊ से तकरीबन 20 किलोमीटर शुमाल मगरबी हिस्से की तरफ जा रहा है।
0: शुमाल मगरिब, वो क्यों?
1: दरअसल उस सिमत तारीखी कस्बा काकोरी आबाद है।
0: ओह अच्छा, अब समझा मैं। वैसे आप दुरुस्त फरमा रही हैं, काकोरी कस्बा तारीखी ही है, क्योंकि हिंदुस्तान की आजादी से तकरीबन 22 साल पहले यहाँ पर एक सानिहा हुआ था। और वो सानिहा क्या था, ये आप हमारे सामईन को जरूर बताएं।
1: जी हाँ शमसी, हम अपने सामईन को ये भी बताते चले कि अभी गुज़िश्ता बरस ही काकोरी एक्शन कांड के 100 साल मुकम्मल हुए हैं। शम्स जी,
0: जी जी,
1: याद कीजिए 9 अगस्त 1925 का वो तारीखी दिन जब हिंदुस्तान पर बरतानवी हुकूमत के जुल्म सितम का सिलसिला अपने उरूज पर था।
0: जी।
1: महात्मा गांधी का नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट खत्म हो चुका था और मुल्क की आवाम, खास तौर पर नौजवान, बेहद मायूसी के दौर से गुजर रहे थे।
0: ये बात तो है,
1: मगर सरफरोशी की आग उनके सीनों में शोला बनकर दहक रही थी। इसी दौरान चंद सरफरोशों ने मुल्क की आज़ादी की खातिर एक बार फिर से सर पर कफन बांधने की ठानी। याद आया आपको कुछ?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अब याद आ रहा है, बल्कि वो पूरा सानिया मेरे जहन में घूम रहा है।
1: क्योंकि वो नौजवान समझ चुके थे कि आज़ादी मांगने से नहीं बल्कि

0: छीन कर हासिल करनी होगी। इसी दौरान उन्होंने एक तंजीम बनाई और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से वो तंजीम मुकम्मल हुई।
1: जी बिल्कुल, और उस तंजीम में शामिल हुए थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद के अलावा रोशन लाहिड़ी साहब भी उसमें शरीक थे। एक दिन पहले ही शाइस्ता जी इन्होंने मंसूबा बंदी की और राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि भाइयों, इस हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन को हमें और मजबूत करना होगा और इसके लिए हमें हथियारों की जरूरत पेश आएगी। इस पर अशफाक उल्ला खान ने कहा, लेकिन हथियार आएंगे कहाँ से? उसके लिए तो माली इमदाद की जरूरत होगी। आखिर कब तक हम अपने हिंदुस्तानी भाइयों से चंदा मांगते रहेंगे? हमें अब की बार अंग्रेजों का खजाना लूटना होगा।
0: और शम्स जी, इस पर अशफाक उल्ला खान ने कहा, राम भाई, लेकिन गोरों का खजाना तो ट्रेन के जरिए आता है।
1: जी,
0: हमें बहुत सोच समझ कर मंसूबा बनाना होगा ताकि बेगुनाहों का खून न बहने पाए। तो शम्स जी, आप देख रहे हैं कि उस दौर में भी इन आज़ादी के मतवालों को अपनी हिंदुस्तानी अवाम की किस कदर फिक्र थी।
1: ये मोहब्बत थी और उनके दिलों की पाकीजगी भी।
0: बेशक
1: जब ये मंसूबा बन रहा था, इस पर चंद्रशेखर आजाद झट से बोल पड़े, अशफाक भाई, कसम है अपने प्यारे वतन की, हम किसी भी पैसेंजर को हाथ तक नहीं लगाएंगे। हम तो बस उस सरकारी खजाने को लूटेंगे जो हमारे मुल्क की अमानत है और बरतानवी हुकूमत उस पर नाजायज कब्जा जमा कर लखनऊ ले जाने वाली है।
0: और फिर शम्स जी, इन आज़ादी के मतवालों ने 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को काकोरी पर रोकने और सरकारी खजाना लूटने का अहद किया। फिर इन नौजवानों ने जोशीले अंदाज में ये गुनगुनाते हुए आपस में रुखसती ली। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए

0: ये तो खूबसूरत सॉन्ग जो हम अभी सुन रहे थे, ये नगमा अभी भी दिलों को झंझोर रहा है। लेकिन हम फिर से एक बार शाइस्ता जी पहुंचते हैं उसी जगह पर जहां से ये बात सानिया पेश आया था।
1: बिल्कुल, तो इसके बाद क्या हुआ था शम्स जी?
0: और फिर शाइस्ता जी वो तारीखी दिन आखिरकार आ ही गया।
1: अच्छा
0: जी, दिन ढला तो इन सरफरोशों की बेचैनियां और धड़कने बढ़ने लगी। रात के करीब 8 बजे का वक्त था। सन्नाटा और गहराता जा रहा था। हवाओं की सरसराहट भी मानो किसी खंजर से चुभ रही थी। और फिर शाहजहांपुर से चली वो तारीखी ट्रेन की सीटी काकोरी के जंगलों के करीब किसी चीख की तरह फजाओं में गूंज उठी।
1: ट्रेन के अंदर 10 सरफरोश आम मुसाफिरों की तरह बैठे हुए थे, लेकिन इन इनकलाबियों के इरादे आम न थे। अचानक आजाद उठे और बुलंद आवाज में दहाड़े, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, हम आजादी के परवाने हैं, हमें आम हिंदुस्तानियों से कोई बैर नहीं, आप बस अपने सर नीचे रखिए।
0: और इतना कहते ही बिस्मिल ने कहा, जल्दी करो साथियों, वक्त रेत की तरह हाथों से निकलता जा रहा है, थैलियों में खजाना भरना शुरू करो।
1: और फिर इनकलाबियों ने सिर्फ 8,000 रुपये, जी हाँ सामईन, सिर्फ 8,000 रुपये सरकारी तिजोरी से थैलियों में भरे और हवा में असलहे

0: लहराते हुए वहाँ से निकल गए। सरकारी खजाना लुट चुका था। ये अंग्रेजी हुकूमत के गुरूर पर एक करारा तमाचा था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कई नुमाइंदे गिरफ्तार कर लिए गए। लखनऊ की अदालत में काकोरी की साजिश के केस का आगाज हुआ।
1: बिल्कुल, अंग्रेज जज ने उन्हें गुनाहगार ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। आजादी के मतवाले फांसी की सजा सुनकर घबराए नहीं, बल्कि पुरजोश आवाज में हुब्बुल वतनी के तराने गुनगुनाने लगे, और वो तराना ये था।
0: मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। शम्स जी,
1: जी बिल्कुल,
0: आइए क्यों ना इसे हमारे कुछ साथियों की आवाज में सुना जाए।
1: जी, मेरा भी यही कहना था, मैं भी यही चाह रहा था, और अब मेरे मुंह की बात आपने छीन ली।
0: और हम भी उस जोश को एक बार फिर से महसूस करते हैं।
1: चलिए सामने सुनते हैं। मेरा

0: अरे जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे,
1: जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे,
0: आज उसी को पहन के निकला हम।

सामईन, दिसंबर 1927 की चंद सर्द रातें कुछ इस तरह गुजरी जैसे आसमान भी मानो रो सा रहा था। इन इनकलाबियों को जब फांसी के तख्ते तक ले जाने का वक्त आया, चार मुख्तलिफ जेलों में चार आजादी के दीवानों को उस दिन फांसी दी गई। बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक को फैजाबाद में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में और राजेंद्र लाहिरी को गोंडा जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया।

0: हैं, उसमें काकोरी के इन शहीदों का भी कर्ज है।
1: तो शम्स जी, आज काकोरी एक्शन कांड के इन शहीदों की कुर्बानी को आइए हम सभी मिलकर दिल से सलाम करते हैं।
0: बिल्कुल, मेरा भी दिल से सलाम है इन शहीदों पर।

0: शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा।
1: सामीन, आज जिन आजाद फजाओं में हम सांस ले रहे हैं।

0: देता न दशमलव भारत
1: भारत
0: तो यूं
1: यूं चापे
0: चापे जाना
1: जाना
0: मुश्किल
1: मुश्किल
0: था।
1: था।
0: धरती
1: धरती
0: और
1: और
0: चांद
1: चांद
0: की
1: की
0: दूरी
1: दूरी
0: का
1: का
0: अंदाजा
1: अंदाजा
0: लगाना
1: लगाना
0: मुश्किल
1: मुश्किल
0: था।
1: था।
0: सभ्यता
1: सभ्यता
0: जा

0: वैसे शमसल साहब, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हमारे सामाइन को भी आप थोड़ा और बताएं।
1: जी बिल्कुल, दरअसल बात यह है कि मुल्क की आज़ादी से 5 साल कबल यानी 8 अगस्त 1942 ईस्वी में अंग्रेजों के जुल्म और जबर से तंग आकर बाबाए कौम महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया।
0: जी बिल्कुल, गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसे आज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, वहीं से अंग्रेजों को देश छोड़ने की आवाज बुलंद की और नारा दिया, करो या मरो।
1: और इस आंदोलन के पस मंजर में जाएं तो इसके कई वजूहात थे जिस पर आप रोशनी डालें।
0: जी बिल्कुल, इसकी एक बड़ी वजह थी क्रिप्स मिशन की नाकामयाबी।
1: हाँ, ये बात तो सही है। इसके अलावा आलमी जंग दोम में बिना शर्त भारत को शामिल करना भी भारतीयों को नागवार गुजर रहा था।
0: फिरंगियों के खिलाफ हर हिंदुस्तानी के दिल में एक आग सी भड़क रही थी, उसकी एक बड़ी वजह थी महंगाई।
1: जी, और इस महंगाई के पीछे बड़ी वजह वही थी जो आलमी जंग दोम में भारत शामिल हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ का जो इकोनॉमी सिस्टम था वो काफी हद तक कमजोर हो गया था।
0: बिल्कुल सही फरमाया।
1: हम फिर से बात करें शाइस्ता जी, जैसे ही गांधी जी ने हर हिंदुस्तानी से इस आंदोलन में शिरकत की अपील की, वैसे ही पूरे भारत में इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया।
0: जी, भारत के किसान, तलबा, खवातीन सब ने इसमें अपनी शमूलियत दर्ज कराई थी।
1: जी बिल्कुल, 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन का ऐलान हुआ और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी समेत तमाम बड़े लीडरान को गिरफ्तार कर लिया गया था।
0: और गांधी जी के बाद इस आंदोलन को कुछ और बड़े लोगों ने जेरे जमीन संभाल लिया था।
1: यकीनन उन सब का नाम लेना तो यहाँ मुमकिन नहीं है।
0: जी बिल्कुल।

0: स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही कि आप सबके नाम नहीं ले सकते। और शाइस्ता जी, इसी आंदोलन ने हमारी आजादी में संगे मील की हैसियत रखते हुए 15 अगस्त 1947 की राह हमवार की।
1: लिहाजा शम्स जी,
0: जी
1: आज हम तमाम अकाबरीन और शहीद वतन को दिल से खिराज अकीदत पेश करते हैं।
0: बिल्कुल, यकीनन हम अपने तमाम शुहदा को दिल से खिराज अकीदत पेश करते हैं।
1: तो आज के इस प्रोग्राम से दीजिए अपने मेजबान शाइस्ता जाहिद
0: और शम्सुल आरफीन को इजाजत।
1: जय हिंद।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा का अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 0542227658।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज के कलाकार हैं महेंद्र सिंह और साथी। इनके साथ ढोलक पर साथ दे रहे हैं राजू, हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं राम आशीष और कोरस में हैं संतोष और मनीष। तो इनके स्वर में सबसे पहले लीजिए सुनिए कजरी।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। आज के कलाकार थे महेंद्र सिंह और साथी। इनके साथ ढोलक पर साथ दे रहे थे राजू, हारमोनियम पर साथ दे रहे थे राम आशीष, और इनके साथ कोरस में थे संतोष और मनीष। इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए सामुदायिक गान शिक्षा पाठ, जिसमें आज आप सुनेंगे हिंदी गीत।
1: आज हम आपको एक बहुत

0: बहुत ही अच्छा गीत सिखाएंगे। उसके बोल हैं, होंगे कामयाब। ये गीत आपने पहले सुना है?
1: Yes, sir.
0: तो आप सीखेंगे ना?
1: Yes, sir.
0: अच्छा, पहले हम आपको इस गीत के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये गीत एक बहुत ही मशहूर इंग्लिश सॉन्ग का हिंदी ट्रांसलेशन है, और वो इंग्लिश सॉन्ग था वी शैल ओवरकम, और ये पॉल रॉबसन ने इसको गा के बहुत मशहूर किया था, और इसका हिंदी अनुवाद किया श्री गिरजा कुमार माथुर ने। तो सबसे पहले आप इसके बोल लिख लीजिए, कॉपी पेंसिल खोलिए। होंगे कामयाब, दूसरी बार फिर लिखिए, होंगे कामयाब,
1: होंगे कामयाब,
0: और तीसरी बार, हम होंगे कामयाब एक दिन,
1: हम होंगे कामयाब एक दिन,
0: हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास,
0: हम होंगे कामयाब एक दिन,
1: हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: तो बच्चों, ये तो स्थाई हो गई। अब पहला अंतरा लिखिए, होगी शांति चारों ओर, और दूसरी बार फिर आएगा, होगी शांति चारों ओर,
1: होगी शांति चारों ओर,
0: और तीसरी बार, होगी शांति चारों ओर एक दिन,
1: होगी शांति चारों ओर एक दिन,
0: हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास,
0: होगी शांति चारों ओर एक दिन,
1: होगी शांति चारों ओर एक दिन।
0: अब दूसरा अंतरा लिखिए, हम चलेंगे साथ साथ,
1: हम चलेंगे साथ साथ,
0: डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन,
1: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन,
0: हो मन में है विश्वास,
1: हो मन में है विश्वास,
0: पूरा है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास,
0: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन,
1: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन।
0: अब तीसरा अंतरा लिखिए, नहीं डर किसी का आज,
1: नहीं डर किसी का आज,
0: नहीं भय किसी का आज,
1: नहीं भय किसी का आज,
0: नहीं डर किसी का आज के दिन,
1: नहीं डर किसी का आज के दिन,
0: हो मन में है विश्वास,
1: हो मन में है विश्वास,
0: पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज के दिन,
1: नहीं डर किसी का आज के दिन।
0: और इसके बाद होंगे कामयाब आ जाएगा। तो लफ्ज लिख लिए ना आप सबने?
1: यस सर।
0: अच्छा, इसकी धुन जो है वो कहरवा ताल में है, और इसमें चार मात्रा होती हैं। देखिए कैसे, धागी नाते नक दिन, एक दो तीन चार,
1: एक दो तीन,
0: एक दो तीन चार,
1: एक दो तीन चार।
0: और अब इसकी बोल

0: हम याप एक दिन
1: हम होंगे काम याप एक दिन।
0: इसी तरह से बच्चों इसके तीनों अंतरों की बोल बांट रहेगी। अब इसको गाने में हम लोग सिखाएंगे। तो नलिनी जी पहले आप बताइए कि इसकी धुन कौन से स्वर से है।
2: इस गाने की धुन पांचवे काले से है।
0: बच्चों पांचवें काले से गाना है, कौन से स्वर से?
1: पांचवें काले से।
0: अच्छा अब साथ दीजिए।

0: तो ये तो बच्चों इसकी स्थाई हो गई। अब पहला अंतरा सीखेंगे। पहला अंतरा क्या है इसका जरा बताइए।
1: होगी शांति चारों ओर।
0: और ये धुन इसकी वही है जो होंगे कामयाब की है, लेकिन इसको सम के दो मात्रा बाद गाना है। कैसे? एक दो।

0: तो बच्चों ये पहला अंतरा हो गया, आप दूसरे अंतरे के बोल बताइए क्या है।
1: हम चलेंगे साथ साथ।
0: और ये भी सम के दो मात्रा बाद शुरू होता है। तो नलिनी जी आप सिखाइए, एक दो तीन चार।

0: तो ये दूसरा अंतरा आपको याद हो गया। अब तीसरे अंतरे के बोल बताइए क्या है?
1: नहीं डर किसी का आज।
0: इसकी धुन भी पहले अंतरे के समान है, लेकिन ये दो मात्रा से नहीं शुरू होगा, ये सम के तीन मात्रा बाद शुरू होगा। कैसे? एक दो।

तो ये तीसरा अंतरा भी आपको याद हो गया। इसके बाद होंगे कामयाब आपने गाना है और आखिर में तीन बार लाइन रिपीट करनी है। हम बताते हैं कैसे। पहले आप होंगे कामयाब गाइए, 1 2 3 4।

तो ये तो बच्चों गाना आपको याद हो गया। एक बात और है, सबसे शुरू में गाने से पहले थोड़ा सा आलाप करना है और उसकी सरगम है पा धा रे गा और चार चार मात्रा करना है। हम बताते हैं कैसे।

0: तो ये गाना आपको पूरा याद हो गया?
1: Yes, sir.
0: अब शुरू से आलाप से और आखिर तक पूरा गाना आप गाएंगे। रेडी, 1 2 3 4।

0: तो बच्चों आपने बहुत अच्छा गाया, अब घर जाके इसको खूब प्रैक्टिस करना तो आपको अच्छी तरह से ये गाना याद हो जाएगा। अच्छा नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक गान शिक्षा पाठ, जिसमें आज आपने सुना हिंदी गीत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म बेवफा से। आवाज है लता मंगेशकर की, गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना बेवफा फिल्म का ये गीत। गीत लिखा था समीर ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। श्रोताओं आप लीजिए सुनिए आशा भोसले और नितिन मुकेश की आवाज में बर्मा फिल्म से ये गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

बलमा फिल्म के इस गीत के बाद अब लीजिए सुनिए सुरेश वाडकर की आवाज में चांदनी फिल्म का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है शिवहरी ने।

चांदनी फिल्म के इस गीत के बाद अब लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में दिल है कि मानता नहीं फिल्म से ये गीत। गीत लिखा है रानी मलिक ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

दिल है कि मानता नहीं फिल्म के इस गीत के बाद अब लीजिए सुनिए कुमार सानू पंडित क्षमा कीजिएगा अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में साजन फिल्म का ये गीत।

0: साजन फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए सुनिए बच्चों का कार्यक्रम बाल संघ।
1: आरजीपी पब्लिक स्कूल पांडेपुर वाराणसी। हर बड़ी उड़ान की शुरुआत होती है एक छोटे कदम से। अपने नन्हे कदमों को दीजिए सही दिशा आरजीपी पब्लिक स्कूल के साथ। प्ले ग्रुप से कक्षा 8 तक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ है। सुरक्षित एवं स्नेहपूर्ण वातावरण, एक्टिविटी आधारित शिक्षा, अनुभवी और समर्पित शिक्षक, 24 घंटे सीसीटीवी सुरक्षा, वातानुकूलित कक्षाएं और

और विशाल खेल का मैदान, यानी आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास की पूरी तैयारी। आइए सीखने, आगे बढ़ने और सफलता की उड़ान का पहला कदम बढ़ाइए। आज ही संपर्क करें RJP पब्लिक स्कूल, बजरंग नगर कॉलोनी, दौलतपुर रोड, पांडेयपुर, वाराणसी। फोन करें 8004930448 या 9838897810। RJP पब्लिक स्कूल, नन्हे सपनों को दें उज्जवल भविष्य की उड़ान।

0: बच्चों जय हिंद
1: जय हिंद दीदी।
0: आपके कार्यक्रम बाल संघ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बच्चों आप सभी कुछ ना कुछ तो तैयारियां करके आ जाए हैं ना?
1: हाँ दीदी।
2: तो हम भी आपसे ढेर सारी बातें करेंगे और आपसे जानेंगे कि आप आज हमें क्या क्या सुनाने वाले हैं, है ना दीदी?
0: कंचन जो हमारे ये नन्हे दोस्त आए हैं ना, ये बहुत सारी हम देख रहे तैयारी कर रहे हैं और बहुत उत्साहित भी हैं। पता है क्यों?
2: क्यों?
0: क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और अपने स्कूलों में ये बहुत सारे कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां करने वाले हैं, जिस कारण इनकी तैयारियां चल रही हैं।
2: भाई भारत का राष्ट्रीय पर्व जो है तो तैयारियां तो बनती ही हैं, और तैयारियां हम भी तो करते थे ना।
0: बिल्कुल भाई, इंतजार रहता था कि 15 अगस्त आए, 26 जनवरी आए, राष्ट्रीय गीत गा रहे हैं। भाई जो स्कूल की डेली की पढ़ाई होती थी उसके साथ साथ में अगर कुछ कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लेने का मौका मिलता था तो बड़ा अच्छा लगता था।
2: तो बच्चों आप भी तैयारियां मन लगा के करते हैं?
1: हाँ दीदी।
2: रेगुलर स्कूल जाते हैं?
1: हाँ दीदी।
0: बिल्कुल दोस्तों, हमारे ये जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं ना, वो केवल छुट्टी मनाने का या फिर खाली नाच गाने का दिन नहीं होता है। हमें अपने राष्ट्र के लिए कुछ समर्पण की भावना होती है, अपने राष्ट्रभक्ति हमें सीखना चाहिए, इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है ताकि हम अपने देश के लिए देशभक्ति की भावना हमारे अंदर आ सके।
2: ये दिन मनाने का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हम अपने संविधान के बारे में जानें और जो बच्चे हैं हमारे, जो हमारे देश के भविष्य हैं, उनको उसके बारे में बताएं, उन्हें समझाएं, है ना दीदी?
0: बिल्कुल, ये जो पर्व है हम सभी को सिखाता है कि हम सब एक हैं और ये संदेश को हम आगे बढ़ाने के लिए हम इन सभी त्योहारों को मनाते हैं।
2: तो जानते हैं बच्चों से ही कि वो कितने ज्यादा तैयार हैं अपने स्वतंत्रता पर्व को जानने के लिए या उसके बारे में हमसे बातचीत करने के लिए, है ना दीदी?
0: बच्चों तो क्या आप तैयार हो?
1: हाँ दीदी।
0: अब आप ये बताइए कि हमारे देश भारत को आजादी कब मिली?
3: 15 अगस्त।
0: वाह, तो नन्हे दोस्तों ये बताइए कि हमारे देश भारत को आजादी कब मिली? ये सवाल का जवाब देंगे अमित।
4: 15 अगस्त 1947।
0: अरे वाह।
2: विधि आप ये बताइए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे?
5: लॉर्ड माउंटबेटन।
0: अरे वाह भाई। कंचन ये जो हमारे नन्हे दोस्त है ना, ये बहुत जीनियस है, इनको सब कुछ पता है। अब आप, मैं जानना चाहूंगी कि आपको पता है कि हमारा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है?
5: हाँ दीदी।
0: बताइए।
5: 26 जनवरी।
0: बिल्कुल सही बात है कि 15 अगस्त हम लोग सभी लोग स्वतंत्रता दिवस के नाम पे हम लोग जानते हैं और 26 जनवरी हम मनाते हैं
2: गणतंत्र दिवस के रूप में, है ना? आप सभी 26 जनवरी की भी तैयारियां करते होंगे, है ना? तो इस समय यानी 15 अगस्त के लिए जो तैयारी आप कर रहे हैं, क्या आपने उसको शुरू कर दी है?
1: हाँ दीदी।
2: तो किन किन विषयों से संबंधित तैयारी है? जैसे कोई डांस में किसी ने पार्टिसिपेट किया होगा, तो कोई कुछ गीत सुनाना चाहता होगा, आप लोगों ने कुछ गीत की तैयारी की है क्या?
1: हाँ दीदी।
0: अरे वाह कंचन, चलो हम लोग सुनते हैं ये गीत इन नन्हे दोस्तों के मुख से। तो चलिए शुरू हो जाइए।
2: तो आप सब समूह गीत गाएंगे?
1: हाँ दीदी।
2: तो हमारे नन्हे साथियों को अपना नाम तो बताइए।
6: नमस्ते, मेरा नाम संस्कृति वर्मा है।
7: नमस्ते, मेरा नाम ध्रुवी विश्वकर्मा है।
8: नमस्ते, मेरा नाम मान्या सिंह है।
9: नमस्ते, मेरा नाम विधि पांडे है।
2: तो नन्हे साथियों आइए हमारे इन नन्हे दोस्तों से सुनिए ये समूह गीत।

0: Corta libro.
1: अरे वाह भाई, बच्चों के मुख से ये समूह गीत सुन करके तो भाई बहुत आनंद आ गया।
2: समूह गीत का ये जो पहली लाइन है ना, मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, ये लाइन ही बता रही है कि ये कितने ज्यादा इनके अंदर देशभक्ति की भावना है और ये कितने अच्छे से 15 अगस्त की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये गीत भी इन्होंने तैयार किया है ना दीदी।
1: दोस्तों, हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं वो हमें सिखाते हैं कि हम देश के प्रति समर्पित रहें और एक अच्छे नागरिक बन सकें।
2: और आप लोगों ने और क्या क्या तैयारियां की हुई हैं बताइए।
3: कहानी की तैयारी।
1: तो शताक्षी कहानी लेकर के आई हैं, तो शताक्षी सुनाइए कहानी हमारे दोस्तों को।
3: आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम पत्थर पारस है। एक बार एक गुरु जी ने अपने शिष्य को एक पत्थर दिया और बोले कि बाजार जाकर इस पत्थर की कीमत पता करें। शिष्य बाजार गया। सबसे पहले वह सब्जी वाले के पास गया। उसने सब्जी वाले से पूछा कि मैं ये पत्थर बेचना चाहता हूँ, आप इसे कितने में खरीदेंगे। सब्जी वाले ने सोचा कि ये सब्जी तोलने के काम आ जाएगा, तो उसने इसकी कीमत 5 रुपये लगा दी। फिर शिष्य कागज की दुकान पे गया। उसने कागज वाले से भी पूछा कि मैं ये पत्थर बेचना चाहता हूँ, आप इसे कितने में खरीदेंगे। कागज वाला बोला, सोचा कि ये पेपर वेट के काम आ जाएगा, तो उसने इसकी कीमत 50 रुपये लगा दी। शिष्य सोचा कि एक और दुकान जाकर देख लेते हैं। फिर शिष्य सुनार की दुकान पे गया। उसने सुनार से भी पूछा कि मैं ये पत्थर बेचना चाहता हूँ, आप इसे कितने में खरीदेंगे। सुनार ने पत्थर लिया, अच्छे से देखकर बोला कि 5 लाख में। शिष्य आश्चर्य में पड़ गया। वह अपने गुरु के पास गया और गुरु से बोला कि गुरुजी, सबसे पहले मैं सब्जी वाले के पास गया, उसने इस पत्थर की कीमत 5 रुपये बताई। फिर मैं कागज वाले के पास गया, उसने इसकी कीमत 50 रुपये बताई। लेकिन जब मैं सुनार की दुकान पे गया, उसने इसकी कीमत 5 लाख बताई। क्यों? गुरुजी बोले, सुनार ने इसकी कीमत 5 लाख इसीलिए बताई क्योंकि ये पत्थर नहीं पारस था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गुरु के बिना हमको कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती। अगर गुरु ना होते तो शिष्य को कभी पता नहीं चलता कि वो पत्थर नहीं पारस है। धन्यवाद
2: भाई। ये कहानी छोटी सी तो थी लेकिन सीख बहुत बड़ी दे गई है ना दीदी।
1: बिल्कुल सही बात है। और जो हमारे ये नन्हे दोस्त है ना, जब बचपन से ही

0: ऐसी बातें और इस तरह की कहानी सुनते हैं तो सोचो बड़े होकर के इनके जो गुण होते हैं आगे जाकर कितने अच्छे निकलते हैं।
1: तो भाई गुणों की बात आपने की है तो कुछ और सवाल जवाब किया जाए।
0: बिल्कुल भाई बच्चों, हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है वो हमें एक बात और सिखाता है कि हम अपने देश के प्रति समर्पित रहें, एक अच्छे नागरिक बन सके ताकि हम अपने देश को और आगे बढ़ाएं।
1: ये जिम्मेदारी तो हमारी है ही, और इसके साथ ही मृदुल आप ये बताइए कि संविधान के अध्यक्ष कौन थे?
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
1: बिल्कुल सही जवाब है। और इसके साथ ही ये भी बताइए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है?
2: 26 नवंबर।
0: अच्छा, हमारे देश के अपने राष्ट्रीय प्रतीक हैं आप सबको पता है?
3: हाँ दीदी।
0: जैसे हमारे राष्ट्रीय चिन्ह क्या है?
3: अशोक स्तंभ।
0: दोस्तों आप ये बताइए कि 15 अगस्त के दिन तिरंगा झंडा फहराया जाता है।
2: जी दीदी जी।
0: अब आप ये बताइए कि वो झंडा फहराता कौन है?
2: वो उस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किला पे स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराते हैं।
1: इसके साथ ही ये बताइए कि गणतंत्र दिवस पर तिरंगा कौन फहराता है?
2: भारत के राष्ट्रपति।
0: मृदुल आपने बताया, यानी इन बच्चों को ये फर्क पता है कि 15 अगस्त के दिन झंडा कौन फहराता है और गणतंत्र दिवस पे झंडा कौन फहराता है।
1: दीदी हमने तो बहुत सारी बातें भी कर ली और बच्चों से सवाल जवाब भी कर लिया। मैं देख रही हूँ कि एक बहुत सुंदर सा लाल कलर का पियानो हमारे बगल में है, है ना?
0: और उसको लेकर के बैठे हैं हमारे नन्हे साथी अमित।
1: तो अमित से सुनते हैं कि वो हमें कौन सी धुन सुनाने वाले हैं पियानो पर।
4: मेरा नाम अमित विश्वकर्मा है, हम पियानो के साथ वंदे मातरम धुन बजाने जा रहे हैं।

0: अमित,
1: हाँ दीदी,
0: जैसे आप ये धुन बजा रहे हैं, आपने अच्छा बजाया, लेकिन अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप इसे और भी अच्छे से बजा पाएंगे और पूरा बजा पाएंगे, है ना दीदी?
2: और बहुत सारी नई नई धुनें भी आप बजा पाएंगे। अच्छा, ये बताएंगे, अभी आप सबने ये सुना वंदे मातरम की धुन। वंदे मातरम जो गीत है, कौन थे रचयिता, कौन बताएगा?
3: मेरा नाम शिवाज सूर्यवंश है। वंदे मातरम गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
2: अरे वाह। अब एक सवाल और, हम ये जानना चाहते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, यानी कि जो हमारा तिरंगा झंडा है, उसको किसने डिजाइन किया था, ये कौन बताएगा?
3: मैं दीदी हूँ।
2: भाई शिवार्थ, तो मैं देख रही हूँ बहुत हाजिर जवाब है, फटाफट सारे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, तो बताइए शिवार्थ।
3: हम लोग के तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था, और ये मुझे ये भी पता है कि इसका साइज कितना है। इसका जो साइज ये है 3.2।
2: अरे वाह भाई, इनकी जानकारी तो बहुत ज्यादा है।
0: इसी से पता चल रहा है कि ये तो पढ़ने में भी बहुत तेज होंगे, है ना दीदी?
2: भाई जो हमारे ये नन्हे दोस्त है ना, यही तो हमारे देश का भविष्य है, तो इनकी जितनी जानकारी रहेगी, जितना ये हाजिर जवाब रहेंगे, वो हमारे लिए, हम सबके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: तो बच्चों, आप सब रेगुलर स्कूल जाते हैं?
4: हाँ दीदी।
0: घर में अपने माता-पिता का कहना भी मानते हैं?
4: हाँ दीदी।
0: क्या-क्या चीजें हैं जो घर में आप अपने आप से करते हैं?
5: हम घर में अपना से पढ़ाई करते हैं, और मम्मी की हेल्प करना, पापा की मदद करना, अपने छोटे भाई की मदद करना उसके प्रोजेक्ट वर्क्स और होमवर्क्स में।
2: अच्छा शिवार्थ भाई, आप हाजिर जवाब तो बहुत हैं, मैंने देख लिया कि भाई इनका जो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताइए, घर में काम काज में मम्मा की आप मदद करते हैं?
3: हाँ दीदी, मैं मम्मा की घर में मदद करता हूँ, और मैं अपने

0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और लंच वगैरह आप टिफिन ले जाते हैं घर से?
1: हाँ दीदी।
0: बच्चों ये जो समय है ना, ये बरसात का है और ऐसे में बाहरी चीजें थोड़ा कम खाया करिए। कभी कभी चलता है लेकिन हमेशा नहीं। तो आप लोग जब इतने अच्छे आप लोग बच्चे हैं तो आप लोग भी घर की चीजों को ज्यादा खाइए, हरी साग सब्जी को ज्यादा आप खाइए, और बाहर के जो फास्ट फूड है ना उसको अवॉइड जरूर करिए।
2: अगर आपको पसंद भी है तो आप उसे घर में भी तो बनवा सकते हैं ना।
1: हाँ दीदी।
2: रेगुलर लंच ले जाते हैं घर से?
1: हाँ दीदी।
2: और अपनी कॉपी किताब का, अपने ड्रेस का ध्यान रखते हैं?
1: हाँ दीदी।
0: दोस्तों भाई, और आप लोग क्या सुनाने वाले हैं हम लोग को?
3: हम आपको गीत सुनाने वाले हैं।
0: गीत, समूह गीत?
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।
0: चलिए सुनाइए।

0: बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि हमारी ये नन्हे साथी हैं, इनका भविष्य बहुत उज्जवल रहे, ये ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहें।
1: दीदी, हमारे नन्हे साथियों ने तिरंगे का ये जो बहुत सुंदर सा गीत हमें सुनाया है, तो हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, है ना बच्चों?
2: हाँ दीदी।
1: आप सभी हमेशा जब भी आप 15 अगस्त या 26 जनवरी को अपने स्कूल जाते होंगे तो देखते होंगे ना बाजार में खूब सारे झंडे, रंग बिरंगे तरह तरह के बैच और कैप वगैरह तिरंगे के कलर में ही मिलती है, तो आप सब वो खरीदते हैं?
2: हाँ दीदी।
1: खरीद करके उसे कैसे रखते हैं, अच्छे से रखते हैं?
2: हाँ दीदी,
3: अच्छे से रखते हैं।
1: अच्छा, तो तिरंगे का सम्मान करना सर्वोपरि कार्य है हमारा, है ना?
2: हाँ दीदी।
1: कहीं पर भी आप अगर रोड पे भी जा रहे हैं, अगर आप देखते हैं कि तिरंगा झंडा कार का कोई बैच गिरा है, उस पे डिजाइन बनी है झंडे की, तो आपको उसे तुरंत उठाना चाहिए, है ना?
2: हाँ दीदी।
1: क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और हमें इसका सम्मान करना आना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए, है ना दीदी?
0: और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, अपने देश का सम्मान करना चाहिए, है ना
1: दीदी? देश के सम्मान की बात है तो हमारे कुछ कर्तव्य भी तो बनते हैं ना हमारे देश के लिए। आप सभी जानते हैं कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं?
2: हाँ दीदी।
1: तो आप बताइए, एक अच्छे नागरिक के तौर पर हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए?
3: हमारे कर्तव्य ये हैं कि अगर हम लोग कोई, अगर एल्डर हम लोग से बड़े कोई अगर रोड पार नहीं कर पा रहे हैं, हमें उन्हें रोड पार करवा देना चाहिए। और दूसरी बात, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी पे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और तीसरी बात, हमें रोड पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए।
0: आप बताइए।
4: हमें अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखना चाहिए, हमको अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए।
1: विधि भी हमें कुछ बताना चाहती है, विधि बताइए।
4: हमें अपने संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, जैसे कोल, पेट्रोलियम, हवा और पानी।
1: आप बताइए।
5: सरकार के दिए गए जितने भी चीज़ें, जैसे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन और रोड, हम लोग को यहाँ पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए और साफ सफाई रखनी चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात।
6: और हमें हमेशा ट्रैफिक साइन फॉलो करना चाहिए और हमें रोड पर कूड़े कचरे नहीं फैलाने चाहिए।
1: तो आपने ट्रैफिक साइन के बारे में बोला है, आपको पता है कौन कौन से ट्रैफिक साइन होते हैं?
6: हाँ दीदी,
1: बताइए।
6: पहला रेड लाइट, सेकेंड येलो लाइट, थर्ड ग्रीन लाइट।
1: रेड लाइट हमें बताता है कि रुकिए, रेड के बाद जब येलो होता है तो येलो बताता है कि तैयार हो जाइए चलने के लिए, ग्रीन होते ही हम चल देते हैं। कि हमेशा हमें इन लाइट्स का ध्यान देना चाहिए रोड पर चलते समय।
7: हमें पानी बचाना चाहिए, उसको कभी भी कहीं पे फेंकना नहीं चाहिए।
8: हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, पशु पक्षी का रक्षा करना चाहिए।

0: भाई हमारे नन्हे साथियों को तो बखूबी पता है कि उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, है ना दीदी?
1: मैं देख रही हूँ हमारी एक नन्ही साथी विधि भाई बहुत देर से अपना बार बार हाथ उठा रही है। इनके पास एक बहुत अच्छी से पोयम है।
0: विधि,
1: हाँ दीदी।
0: आप अभी जो हमें कविता सुनाने वाली हैं, इसकी तैयारी आप पहले से कर रही हैं
1: हाँ दीदी।
0: और अपने स्कूल में आप इसे 15 अगस्त को सुनाएंगी?
1: हाँ दीदी।
0: तो चलिए हमारे नन्हे साथियों को भी सुनाइए।
1: केसरिया सफेद और हरा रंग लहराया तिरंगा पवन के संग, 15 अगस्त का दिन है आया, ढेर सारी खुशियां लाया, आजादी का जश्न मनाए, हम सब मिलकर गीत गाएं, वीर शहीदों को प्रणाम, भारत माता को हम सबका सलाम।
0: बहुत खूब दोस्तों, हमेशा अपने जो ज्ञान के क्षेत्र को है ना और बढ़ाइए, यानी कहीं से भी कुछ भी जानकारी अगर आपको मिल रही है, कुछ नई नई बातें सीखने को मिल रहा है, तो उसको सीखिए और जिज्ञासु बनिए आप।
2: कुछ भी पूछना होता है स्कूल में, जब भी पढ़ाया जाता है तो आप सभी पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं।
3: हाँ दीदी।
2: जब तक उत्तर ना मिले तब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, ऐसा होता है कभी?
3: हाँ दीदी।
2: बच्चे तो बहुत जिज्ञासु है ना?
0: बिल्कुल, जो जिज्ञासापन इनका होता है ना, वही हमारे ज्ञान को और बढ़ाता है। तो दोस्तों, इस अपनी जिज्ञासा को कभी सीमित मत रखिएगा और बढ़ाते जाइएगा, क्योंकि जिज्ञासा ही आपके ज्ञान को और बढ़ाती है।
2: ऐसे ही जब भी आप घर में भी हैं और पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी विषय से संबंधित कभी भी कोई सवाल आता है, चाहे वो कोई भी विषय हो, आप घर में भी कुछ काम कर रहे हैं और कुछ जानना चाहते हो, तो कभी भी झिझकिए नहीं, है ना? कुछ भी जानना है तो आप बेझिझक पूछिए। पूछते हैं आप
3: हाँ दीदी।
2: घर में मम्मी पापा से, बड़े भाई बहन से सवाल पूछते हैं,
3: हाँ दीदी।
2: उत्तर मिलता है आपको।
3: हाँ दीदी।
2: कभी कभार मम्मी झुंझला के डांटती भी है,
3: हाँ दीदी।
2: होता है ऐसा?
4: हाँ लेकिन कभी कभी।
2: कभी कभी होता है।
0: लेकिन ज्यादा परेशान मत करिए, और जब देखिए कि जब आपकी मम्मा का या पेरेंट्स का मूड सही हो, तब अपने प्रश्नों को आप उठाइए ताकि उसका सही जवाब आपको मिल जाए, और जब सही जवाब जान जाइए तो अपने साथियों की भी मदद कीजिए ताकि उनकी भी जानकारी और बढ़े, और आपके अगर छोटे भाई हैं, बहन हैं, तो उनको भी आप सही बातें बताइए, और उनको अगर कोई चीज नहीं पता है तो उसके बारे में बताइए।
5: कंचन, ये हमारे जो नन्हे दोस्त हैं, इन्होंने तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की, तो क्यों ना हो हम अपने कार्यक्रम में एक गीत और जोड़ें और इन बच्चों के साथ हम भी मस्ती करें और थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाएं।

0: तो दीदी, घड़ी की सुइयां हमसे कह रही हैं कि अब समय हो चला है हमें अपने नन्हे साथियों से अनुमति लेने का।
1: बिल्कुल, नन्हे साथी आज स्टूडियो में आए हैं ना भाई, इनको छोड़ने का तो मन ही नहीं कर रहा है। मन कर रहा है कितनी बातें करते रहे, लेकिन क्या करें, समय की भी अपनी सीमा है, तो हमें अपने कार्यक्रम को समाप्त तो करना ही पड़ेगा।
0: तो नन्हे साथियों, आप सभी स्टूडियो में आए इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आगे भी आते रहिएगा। आएंगे ना?
2: हाँ दीदी।
0: तो चलिए, तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपनी दीदियों को।
2: जय हिंद।

0: हर बड़ी उड़ान की शुरुआत होती है एक छोटे कदम से। अपने नन्हे कदमों को दीजिए सही दिशा आरजेपी पब्लिक स्कूल के साथ। प्ले ग्रुप से कक्षा 8 तक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ है। सुरक्षित एवं स्नेहपूर्ण वातावरण, एक्टिविटी आधारित शिक्षा, अनुभवी और समर्पित शिक्षक, 24 घंटे सीसीटीवी सुरक्षा, वातानुकूलित कक्षाएं और विशाल खेल का मैदान, यानी आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास की पूरी तैयारी। आइए सीखने, आगे बढ़ने और सफलता की उड़ान का पहला कदम बढ़ाइए। आज ही संपर्क करें आरजेपी पब्लिक स्कूल, बजरंग नगर कॉलोनी, दौलतपुर रोड, पांडेयपुर, वाराणसी। फोन करें 8004930448 या 9838897810। आरजेपी पब्लिक स्कूल, नन्हे सपनों को दें उज्जवल भविष्य की उड़ान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक आरजेपी पब्लिक स्कूल, पांडेयपुर, वाराणसी।
1: बच्चे सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम बाल संग। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
1: आरोग्यम कार्यक्रम में आज का विषय है मधुमेह यानी डायबिटीज में स्वास्थ्य की देखभाल। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अमित भास्कर। इनसे बातचीत की है शिखा श्रीवास्तव ने।

पसंदीदा स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम अपनी रेडियो सखी शिखा श्रीवास्तव के साथ। दोस्तों, अगर आपके जीवन में मिठास बनी रहे तो मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और जीवन का हर सपना पूरा करने की चाह उत्पन्न हो जाती है, जीवंत हो जाती है। लेकिन जब यही मिठास आपके रक्त में बढ़ने लगे तो ये तनाव का कारण बन जाती है और आपकी पूरी जीवन शैली को अव्यवस्थित कर देती है। जी हाँ, ब्लड में शुगर यानी मधुमेह रोग। और आज आरोग्यम में हम बात करेंगे चुपचाप से शरीर में घर कर लेने वाली इस बीमारी मधुमेह के बारे में। और इस पर जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित भास्कर जी को। तो आइए जानते हैं कि मधुमेह

0: डॉक्टर अमित भास्कर जी को, तो आइए जानते हैं कि मधुमेह से बचाव कैसे करें और इसके साथ कैसे जिएं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी नमस्कार शिखा जी, और नमस्कार काशीवासियों, आप लोग को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: और हम लोग बात की शुरुआत करें इससे पहले एक श्रोता हमसे फोन पे जुड़ना चाहते हैं, ये फोन ले लेते हैं सर, फिर आगे बातें करते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: हेलो।
2: हेलो।
0: हाँ सर, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं?
2: हिरामपुर से बोल रहे हैं।
0: आज डायबिटीज पर बात हो रही है, तो आपका जो भी प्रश्न है, हमारे बीच में डॉक्टर अमित भास्कर जी हैं, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, तो आप उनसे बात कर लें सीधे।
2: नमस्कार
1: साहब। नमस्कार पारस जी।
2: हम 15 साल से पुराना डायबिटीज से दवा रेगुलर खा रहे हैं, लेकिन 200 से नीचे नहीं हो रहा है।
1: देखिए, ड्यूरेशन वाली बात दूसरी होती है कि आप 15 साल से हैं, लोग 15, 20, 25 साल से भी होते हैं, लेकिन रेगुलर चेकअप कराना है और बढ़ा रह रहा है तो दवाइयाँ चेंज भी करानी रहती है। ऐसा नहीं कि एक ही दवा कंटिन्यू कर रहे हैं, 200 आ रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है। आपका खाली पेट लगभग 80 से 100 रहना चाहिए, खाने के बाद वाला 140 से 160, 70, 80 मैक्सिमम रहना। अगर नहीं हो रहा है तो दवाइयों की डोज एडजस्ट करानी पड़ती है, जब तक आपका नॉर्मल ना आए। तो चेक कराते रहिए और दवा की डोज बढ़ाते रहिए जब तक आपका शुगर कंट्रोल ना आए। ठीक है, धन्यवाद।
0: एक फोन और आ रहा है सर। हेलो।
3: हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम।
0: हाँ, आरोग्यम से बोल रहे हैं सर, आप कौन बोल रहे हैं?
3: हम गुलाब चंद मिश्रा, ग्राम पचोकर, जिला
0: जनपुर। हाँ गुलाब चंद जी, आज मधुमेह पर बात हो रही है और हमारे बीच में जाने माने मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर अमित भास्कर जी आए हैं, तो आप बात करें डॉक्टर साहब से।
3: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: जी नमस्ते गुलाब जी।
3: हमारा ये समस्या डॉक्टर साहब
1: जी,
3: कि हम एक बार शुगर चेक कराए थे
1: जी,
3: तो हमारा खाने पीने पर 85% था।
1: देखिए, खाने के बाद अगर 85 आ रहा है तो उसको तो बढ़ा हुआ नहीं, वो तो नॉर्मल ही है। आप सुबह सुबह स्प्राउटेड मूंग, जैसे अंकुरित चना, मूंग, ये खाइए। बाहर की चीजें, पैकेट फूड बिल्कुल अवॉइड करिए।
0: ठीक है गुलाब चंद जी, आरोग्य में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर लगातार श्रोताओं के फोन आ रहे हैं और एक फोन और आ रहा है, उसे ले लेते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: हेलो।
4: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
4: जी इंदिरा मिर्जापुर गानदोली से सुभाकांत बोल रहे हैं।
0: मधुमेह पर आज बात हो रही है, डॉक्टर साहब से आप बात करें।
4: जी डॉक्टर साहब मेरा नमस्कार।
1: जी नमस्ते।
4: जी डॉक्टर साहब, से मधुमेह का लक्षण क्या है?
1: ये इसके बहुत सारे लक्षण हैं, किसी को कुछ एक दो लक्षण आता है, किसी को कुछ भी नहीं आता। फिर भी आमतौर पे मैं बता दूं, अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो उसे हम हाइपर और स्मॉलर सिम्टम्स कहते हैं। जैसे आपको प्यास ज्यादा लगना, पेशाब ज्यादा होना, भूख ज्यादा लगना, थकावट होना, वजन घटना, ये सब एक कॉमन लक्षण है जो कि शुगर के मरीज में होते हैं। अगर ऐसा आए तो हमें शुगर की जांच करा लेनी चाहिए, जिससे पता चले और उसका प्रॉपर इलाज है।
0: सर एक और फोन आ रहा है। हेलो।
5: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
5: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: राकेश जी शिमला से, तो आज आपने आरोग्य में फोन किया है और मधुमेह रोग पर बात हो रही है और जाने माने मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित भास्कर जी हमारे बीच में हैं। आपकी जो भी समस्या हो आप डॉक्टर साहब से बात करके इसका हल ले लें।
5: जी जी, तो सबसे पहले तो मेरा डॉक्टर साहब को नमस्कार।
1: जी आपको भी नमस्कार। मेरा
5: सवाल ये कि इसको रोकने के लिए क्या उपाय है?
1: जी जी, तो जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हमेशा कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो होने से पहले क्या क्या बचाव करने चाहिए? देखिए, अगर आपकी फैमिली में फादर मदर और जैसे रिलेशन में आपके शुगर हैं अगर पेशेंट, तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप भी रिस्क में हैं। क्योंकि ये जो जेनेटिक कंपोनेंट है, जो भगवान ने शरीर की संरचना की है, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसको हम लोग एक्टिव लाइफस्टाइल कहते हैं। सिडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए, जैसे बैठे रहना दिन भर। जंक फूड नहीं लेना चाहिए, बाहर का फूड बिल्कुल ना लें। शुगर, चीनी या चीनी से बनी हुई चीजें का जितना आप सेवन ना करें, जितनी दूर उससे रहें, तो आप उससे बच सकते हैं। स्ट्रेस ना लें, प्रॉपर स्लीप लें। तो डाइट और एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप, ये एक बहुत बड़ा पिलर है, जो आप अगर अच्छा रखें तो शुगर होने के चांसेस कम होते हैं, या होंगे भी तो वो बहुत डिले होगा।
6: जी तो मधुबन के लिए जैसे फल फ्रूट कैसे लाभदायक होगा, जैसे हमारे यहाँ सेब होते हैं, नाशपाती या खमानी वगैरह, ये मधुबन के लिए कितना?
1: जी जी, डायबिटिक पेशेंट में ये जो आपने फल कहा, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिकतर फ्रूट्स का होता है, जो कि वहाँ पे शिमला पे जैसे नाशपाती, सेब, खुबानी ये सब होता है, तो ये सब की

0: ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होती है, तो वो बहुत हेल्दी होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। हम लोग कभी इस फल को मना नहीं करते और प्रमोट करते हैं, क्योंकि बाकी सब विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स सारा उससे मिले, क्योंकि उससे शुगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। जी
1: जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद राकेश
2: धन्यवाद
0: जी।
2: आपको सर। कार्यक्रम के शुरुआत में ही फोन आ रहे हैं श्रोताओं की, बहुत अच्छा लग रहा है। एक फोन और आ रहा है सर।
0: जी बिल्कुल।
2: हेलो।
1: हेलो।
2: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ, मोहन यादव शायद त्रिमुरिया सरैया गाजीपुर से बोल रहे हैं।
2: आज डायबिटीज पर यानी मधुमेह पर बात हो रही है, तो आप डॉक्टर साहब से जो जानना चाहते हैं पूछ लें।
1: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: जी नमस्कार मोहन जी।
1: सर, मधुमेह रोगों का भी पहचान किया जाए?
0: मधुमेह का पहचान कैसे किया जाए? जी जी जी। तो मधुमेह देखिए बहुत आजकल कॉमन हो गया है, हर तीसरे चौथे मरीज में शुगर की दिक्कत आ रही है। तो इसके बिल्कुल जो इनिशियल जो सिम्टम्स होते हैं, जब शुरुआती लक्षण जैसे पेशाब ज्यादा होना, प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगनी और वजन घटना, ये इनिशियल इंडिकेशन है कि उस समय आप शुगर की जांच कराएं और अगर बढ़ा है तो उसका इलाज करें।
2: हाँ सर, हम लोग आज मधुमेह रोग पर बात कर रहे हैं। तो ये मधुमेह रोग पहले तो एक उम्र पार होने के बाद, 40 के बाद होता था, लेकिन अब बहुत कम उम्र में भी दिखाई देता है कि लोग डायबिटीज के पेशेंट हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है?
0: जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सिखा जी। जी तो जैसा अभी एक श्रोता ने भी पूछा कि हाँ यंग एज में शुगर हो रहा है, तो सबसे मेन इसका जिसे मैं कल्प्रिट कहूंगा वो है लैक ऑफ एक्टिविटी। जैसे आपकी लाइफस्टाइल, दिनचर्या बिल्कुल खराब, बिल्कुल पहले के लोग बहुत ज्यादा मेहनत एक्सरसाइज पे ध्यान देते थे, अब वो बिल्कुल आजकल देखिए ऑनलाइन AI और गैजेट का जमाना आ गया है जो कि हम लोग बैठे बैठे सब काम, तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सीडेंटरी लाइफस्टाइल और जो जंक फूड, जो बाहर वाले जितने फूड है जो बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए वो अच्छे नहीं है, वो सबसे बड़ा रीजन है अभी शुगर बढ़ने का कम उम्र वाले लोगों में।
2: बहुत लोग कहते हैं कि केवल मीठा खाने से शुगर होता है, जबकि बहुत समय ऐसा देखा जाता है कि और भी अन्य चीजें ज्यादा मात्रा में लेने से शुगर की समस्या हो जाती है। क्योंकि कई मरीज ऐसा कहते हैं कि हम तो मीठा खाते ही नहीं है, फिर भी मुझे शुगर हो गया है। तो इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देंगे?
0: जी जी ऐसा नहीं है कि शुगर ही एक कल्प्रिट है, शुगर बढ़ा रहना एक रीजन होता है कि हाँ आपको डायबिटीज है वो पता चलता है।
2: हाँ सर, एक और फोन आ रहा है, इसे भी ले लेते हैं, देखें श्रोता क्या जानना चाहती हैं।
0: जी
2: हेलो।
3: हाँ मैम, प्रणाम।
2: हाँ हाँ प्रणाम, कौन बोल रही हैं? मैं
3: गाजीपुर से रोशनी यादव।
2: आज मधुमेह पर बात हो रही है और हमारे बीच में डॉक्टर अमित भास्कर जी हैं, आप डॉक्टर साहब से बात करें।
0: जी नमस्ते रोशनी जी, बताइए।
3: मैं जानना चाहती थी कि मधुमेह कैसे होता है।
0: जी जी वो उसका बहुत सारा रीजन है और मधुमेह के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, जेस्टेशनल जो गर्भावस्था वाला शुगर। तो टाइप 1 जो बच्चों में होता है जिसमें आपके शरीर एक पैनक्रियाज ऑर्गन होता है जो कि इंसुलिन निकालता है अगर आप कुछ खाते हो तो उन बच्चों में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डिफिशियंसी, मतलब पैनक्रियाज से इंसुलिन नहीं निकल रहा है, तो शुरू से बच्चों से ही शुरू हो जाता है डायबिटीज, जिसे हम लोग टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं और उसमें इंसुलिन ही लेना पड़ता है चमड़ी में। एक टाइप 2 डायबिटीज है जिसे हम लोग कॉमनली कहते हैं जो बड़ों लोगों में होता है, वो उसका रीजन है आपका मोटापा, खान पान में गड़बड़ी, एक्सरसाइज नहीं करने से, और जैसे आपका फैमिलियल अगर फैमिली में है तो उनके भी चांसेस होते हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज है। और एक जो गर्भावस्था में होता है उसे हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज होते हैं। तो अलग अलग की डायबिटीज है और सबका अलग अलग इलाज होता है।
3: और सर फल में क्या खाना
0: फल में
3: चाहिए?
0: लगभग सभी फलें आपकी अच्छी होती हैं अगर आपको डायबिटिक नहीं है।
3: फल भी तो मीठा होता है ना?
0: जी जी जी फल मीठा सारा देखो कार्बोहाइड्रेट सभी में होते हैं, बहुत सारे में, लेकिन गुड और बैड दोनों, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसे हमें कहते हैं, तो ऐसा नहीं है आप एक अगर डायबिटीज नहीं है तो आप दिन भर में एक सेब तो कभी संतरा कभी नाशपाती, एक आम किसी दिन, केला तरबूज कीवी सब आप ले सकते हैं।
2: सर एक और फोन आ रहा है।
0: जी
2: हेलो।
4: हाँ मैडम नमस्ते।
2: नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से?
4: जी मैं ईश्वर चंद मौर्य बोल रहा हूँ, चंदौली काटा।
2: अच्छा ईश्वर चंद मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। आज मधुमेह रोग पर बात हो रही है, तो डॉक्टर अमित भास्कर जी हमारे स्टूडियो में हैं, आप बात करें।
4: सर ये
1: जो मधुमेह होता है, मतलब इसके कोई एज या लिमिट होती है कि इतने एज तक हो सकता है?

0: सकता है या किसी को हो सकता है?
1: जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहले मधुमेह सब कहते थे कि बड़े लोगों को होता है, लेकिन
0: जी
1: ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जैसा अभी जस्ट मैंने एक श्रोता को बताया, डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज होते हैं। एक टाइप 2 होता है जिसको हम कहते हैं एडल्ट डायबिटीज, और
0: जी
1: एक टाइप 1 होता है जिसको चाइल्डहुड, जिसको शुरू से बचपन से रहता है, जिसकी शरीर में इंसुलिन है ही नहीं, तो बिल्कुल
0: जी
1: बच्चों में होता है। सडनली कोई इन्फेक्शन हुआ, तबीयत ज्यादा खराब हुई और एकाएक पता चला, तो उसमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब उस बच्चे को हमेशा लाइफ लॉन्ग उसको इंसुलिन लगाना होगा। और बड़ों लोगों में जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, उसमें दवा और इंसुलिन दोनों काम करता है। पहले था कि 35, 40, 45 के बाद होता था, लेकिन आजकल के रहन सहन, एक्सरसाइज की कमी, बाहर का खाना बहुत ज्यादा उपयोग करने के कारण शुगर बहुत अर्ली एज में, जैसे 20, 25, 30 साल में भी हो रहा है, जिसे हम लोग डायबिटीज इन यंग कहते हैं। तो अब ये सारा ये अब कहा नहीं जाएगा कि ये बड़े लोगों की बीमारी है, बच्चों में, एडल्ट में, यंग में, सारे लोगों में ये डायबिटीज अभी फैला हुआ।
0: और सर ये जेनेटिकल भी कुछ होता है, जैसे परिवार में भी किसी
1: जी
0: को
1: जी
0: है तो
1: जी
0: सर
1: जी
0: आप?
1: देखिए, टाइप 2 डायबिटीज मोस्टली तो जेनेटिक ही है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में, अगर आपके फादर मदर को है, तो आप रिस्क पे तो हमेशा के लिए हैं, और आइडियली आपको 30 के बाद चेकअप कराना शुरू कर देना चाहिए। और अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल वगैरह रखेंगे, खान पान नियमित रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो चांसेस है कि बहुत लेट हो सकता है ना भी हो, ऐसा नहीं कि हो ही, लेकिन आप रिस्क पे हैं, क्योंकि आपकी जीन्स में वो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, तो आप रिस्क पे हमेशा हैं।
0: थैंक यू
1: धन्यवाद।
2: सर। जैसे आपने कहा कि रिस्क पर हमेशा है, तो क्या जेनेटिक अगर ये होता है और कोई मरीज है वो पूरी तरह से ध्यान दे रहा है और नियमित व्यायाम आहार और अपनी दिनचर्या रखी हुई है, तो क्या उसको भी ये संभव है?
1: जी जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि जीन्स अगर डीएनए में है, वो तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसको हम लोग नॉन मॉडिफाइबल रिस्क कहते हैं, अगर फादर मदर हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हो ना भी हो सकता है, और रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर इवन आप बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल रख रहे हैं, तब भी आप रिस्क पे हैं कि विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कभी आपको शुगर हो सकता है।
2: जी सर, एक फोन आ रहा है।
1: जी बिल्कुल।
2: हेलो।
0: विजय शंकर वर्मा बलिया से बोलते हैं।
2: हाँ, विजय शंकर शर्मा जी, आरोग्यम में आपने फोन किया है, बहुत बहुत स्वागत है। आज मधुमेह रोग पर बात हो रही है जी, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, हम पूछ लें।
0: मधुमेह कैसे मालूम होला कि मधुमेह हुआ है?
1: देखिए, कुछ भी हो, उसके लिए जब तक आप जांच कराएंगे तभी पता चलेगा कि मधुमेह आपको हुआ है, लेकिन उसके सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे आपको पेशाब ज्यादा होना, प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगनी, कमजोरी ज्यादा होना, वजन वगैरह घट जाना सडनली, तो ये सब रीजन है, उस समय आपको जांच अपनी करानी चाहिए। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि वो लक्षण आएगा भी, लेकिन अगर हेल्थ चेकअप कराते हैं तो उसमें शुगर की भी जांच करा लेनी चाहिए, अगर बढ़ा रहता है तो उसका इलाज भी कराना चाहिए। नमस्ते।
2: मधुमेह रोग में इंसुलिन की आवश्यकता कब पड़ती है, किस स्टेज पर?
1: जी, देखिए, मैंने कहा कि टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज जो कॉमन है, तो टाइप 1 में बिल्कुल इंसुलिन आपके शरीर में है ही नहीं,
2: जी
1: तो उसका और कोई उपाय नहीं है, आपको इंसुलिन लेना ही लेना है। टाइप 2 डायबिटीज इनिशियली हम लोग स्टार्ट करते हैं दवाइयों से, जो कि आपके शुगर को कंट्रोल करता है, और अगर दवाइयां बढ़ रही हैं फिर भी कंट्रोल नहीं होता है, तो हम लोग ऐसे पेशेंट में इंसुलिन की शुरुआत करते हैं। इवन कभी कभी किडनी कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसे सीकेडी कहते हैं, तो क्रोनिक किडनी डिजीज या डायलिसिस वाले पेशेंट है, उसमें दवाइयां काम नहीं करती है, इंसुलिन ही काम करती
2: एक फोन आ रहा है।
1: है। जी बिल्कुल।
2: हेलो।
3: हाँ डॉक्टर साहब से मैं बात करना चाहता हूँ।
2: नाम और पता बताएं सर आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से?
3: मैं जमानिया रेलवे स्टेशन वार्ड नंबर 3 से रमेश कुमार पासवान बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब।
2: अच्छा, रमेश कुमार पासवान जी, आरोग्य में बहुत बहुत स्वागत है। आज मधुमेह
3: जी।
2: पर बात हो रही है और जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर अमित भास्कर जी हमारे बीच में हैं, आप बात कर लें डॉक्टर साहब से।
1: जी नमस्ते रमेश जी।
3: हाँ डॉक्टर साहब, सादा चरण ईश्वर डॉक्टर साहब।
1: जी जी, आपको भी नमस्कार।
3: डॉक्टर साहब, ये मैं जानना चाहता हूँ कि मधुमेह होता क्या है? जी
1: आपके शरीर में अगर नॉर्मल शुगर की मात्रा से ज्यादा होने लगे, जो
3: जी
1: कि आपके शरीर को, ऑर्गन को इफेक्ट करने लगे, तो उसे हम लोग डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। तो हमें अपने स्वास्थ्य के लिए ये रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, अगर बढ़ा है तो उसका इलाज करना चाहिए।
3: ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्ते।
1: जी।

0: नमस्ते रमेश जी।
1: सर एक और फोन आ रहा है।
0: जी
1: हेलो।
2: हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं रतिनाथ त्रिपाठी बात कर रहा हूँ, कुटवा कपिलधारा सराय मोहाना वाराणसी से।
1: अच्छा रतिनाथ त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। आज मधुमेह रोग पर बात हो रही है। हमारे बीच में डॉक्टर अमित भास्कर जी हैं, आप बात करें डॉक्टर साहब से।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: जी नमस्ते त्रिपाठी जी।
2: सर ये पूछना था कि जैसे कि फास्टिंग होता है तो इसका रेंज क्या होता है, 120 होता है कि 110 होता है?
0: फास्टिंग आपका 80 से 100 रहना चाहिए, वो नॉर्मल रेंज है। ठीक।
2: अच्छा, मेरा कभी कभी जैसे जांच होता है
0: जी
2: तो 1 से ऊपर भी आता है, 108 109, तो डॉक्टर तो मतलब बोलते हैं कि मतलब ये नॉर्मल ही है
0: जी।
2: मतलब
0: देखिए 100 और 125 के बीच उसको हम लोग प्री डायबिटीज कहते हैं। अगर आप हाँ शुरुआत मतलब ना आप नॉर्मल है ना आपको डायबिटीज है तो उसमें आप दोनों जांच कराया करिए, खाली पेट वाला और एक होता है 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद वाला जिसको हम लोग पीपी कहते हैं, और एक 3 महीने का शुगर HbA1c जिसको कहते हैं।
2: हाँ
0: तो वो कराइए। अगर वो गड़बड़ है और थोड़ा बहुत भी डीरेंज है तो आपको बिल्कुल परहेज करना चाहिए। आप शुरुआती स्टेज पे हैं, अगर नहीं परहेज करेंगे तो आप उस पार शुगर वाले रेंज में जा सकते हैं। अगर आप परहेज और मेंटेन करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल तो आप इस पार नॉर्मल रेंज में आ सकते हैं।
2: कुछ लक्षण भी बता सकते हैं क्या कि जैसे कि मेरा उम्र है 49 ईयर। ओके
0: जी।
2: और मतलब कुछ दिन पहले मेरा मतलब दोनों आँख की रोशनी चली गई थी
0: जी,
2: तो मैं एक बार भर्ती हुआ था तो डॉक्टर लिख दिए थे कि नहीं आपको शुगर जांच कराना है, दोनों तीनों टाइम शुगर जांच होता था
0: जी,
2: लेकिन 2-3 दिन में कुछ नहीं निकला तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब आपको जरूरत नहीं है मतलब
0: जी। अब आपकी रोशनी कैसी है त्रिपाठी जी?
2: अभी तो कुछ नहीं, 0% है रोशनी।
0: अच्छा तो क्या हुआ था, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया या क्या?
2: रेटिनल डिटैचमेंट हुआ
0: जी,
2: था
0: जी जी जी। ये बड़ी गंभीर बीमारी होती है, इससे विजन लॉस चला।
2: लेकिन बहरहाल मैं आपके माध्यम से पूरे वाराणसी को बताना चाहता हूँ कि उसके ब्लाइंडनेस के बाद भी मैंने कंप्यूटर कोर्स करके और वेबसाइट टेस्टिंग और वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स करके आज मैं जॉब करता हूँ, मतलब ब्लाइंडनेस के 18 महीने बाद से।
0: अरे वाह, बहुत बहुत बधाई, और आपके इस हिम्मत और साहसपूर्ण कार्य को हम लोग सराहना देते हैं और सबको बताते हैं कि हाँ आप ऐसा नहीं है, आशा हमेशा रहती है, होप कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इसी को हम लोग होप कहते हैं
1: जी,
0: तो हमें होप कभी नहीं छोड़ना है। डायबिटीज में रेटिनल डिटैचमेंट बहुत कॉमन है। बहुत अच्छी बात है कि आपको शुगर नहीं था इतनी बार चेक करने के बाद भी। तो अगर शुगर बढ़ा रहता है तो उसे जैसे हमें प्यास ज्यादा लगती है, पेशाब ज्यादा होता है, भूख ज्यादा लगती है, धीरे धीरे वजन लॉस होना शुरू होता है, कमजोरी आती है, ये सब इनिशियल लक्षण है। अगर ऐसा है तो नॉर्मल इंसान को भी एक बार फास्टिंग पीपी HbA1c जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि आजकल हर तीसरे चौथे मरीज में शुगर की परेशानी आ रही है। तो ये इनिशियल सिम्टम्स है जहाँ पे हम लोग को सचेत हो जाना चाहिए।
1: सर शुगर बढ़ने की बात तो सभी कहते हैं, और एक जो बीमारी हो जाती है कि शुगर बहुत डाउन हो गया, तो ये हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया, इन दोनों में अंतर क्या है और किस तरह से ये हमें प्रभावित करते हैं, ये हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: जी जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और ऐसे में हाइपो मतलब शुगर लो, अगर शुगर 70 से कम है
1: जी,
0: वो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। अगर 250-300 जा रहा है शुगर तो उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। दोनों अच्छा नहीं है। हाइपो ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि अगर 70 या 70 से कम हुआ तो हो सकता है आप बेहोश हो जाए, अचेत पड़ जाए, कोमा में चले जाए, जबकि 250-300 तुरंत इफेक्ट नहीं डालती है, वो धीरे धीरे आपके ब्रेन पे, किडनी पे, हार्ट पे असर करता है। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया बहुत रिस्की है
1: जी। तो जैसे अभी तो इस समय जो जीवन शैली है, लोग मधुमेह से डर करके बहुत ज्यादा परहेज कर देते हैं, और कभी कभी इस परहेज का नतीजा ऐसा होता है कि वो बिल्कुल शुगर उनका लो हो जाता है, तो कैसे वो संतुलन बनाएं, कैसे पहचाने कि मेरा शुगर लो हो जाएगा अगर हम ये चीज नहीं खाएंगे तो?
0: जी जी, तो अगर डायबिटिक पेशेंट में ही सबसे ज्यादा शुगर लो होने के लक्षण होते हैं, नॉर्मली नहीं होता है, अगर नॉर्मल पेशेंट जो शुगर की दवा नहीं ले रहे हैं और लो हो रहा है तो उसका एक अलग रीजन होता है, जैसे इंसुलिन सेक्रेटिंग ट्यूमर, जिसमें ट्यूमर बन जाता है पैनक्रियाज में और वो इंसुलिन जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और वो शुगर लो कर रहा है, तो वो एक डिफरेंट एंटिटी है। तो हम लोग जैसे शुगर वाले मरीज में बात करें, अगर हम शुगर की दवा ले रहे हैं तो प्रॉपर खाना भी लेना है, ये नहीं कि हम दवा ले लिए और खाना स्किप कर गए, तो वो सबसे मेन रीजन होता है हाइपोग्लाइसीमिया का, क्योंकि दवा तो नहीं समझेगी आप खाए हैं या ना खाए, वो शुगर डाउन करेगा और आप हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क में आ सकते।

0: तो हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो हमें नियमित आहार लेना चाहिए। ये नहीं कि हमें डायबिटीज हो गया तो बस एक टाइम खाएं और बाकी टाइम ना खाएं, वो बहुत रिस्की है। डायबिटिक मील तो और स्ट्रिक्ट फॉलो करना चाहिए, जैसे आपके 3 मेजर मील होने चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर,
1: जी
0: और 10 से 11 बजे कोई फ्रूट, और शाम में 4 से 5 के बीच में हल्का लाही चना या कुछ लाइट बिस्किट और शुगर फ्री चाय। तो ये नियम आपको, अब नियम आपको ये बीमारी हो गई है तो नियम का पालन करें, प्रॉपर टाइम से दवा भी लें और प्रॉपर टाइमली खाना खाएं, तो आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह आपका शुगर रह सकता है। इसमें जहां वेरिएशन होता है तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क बढ़ जाते हैं।
1: जी मधुमेह की वजह से पैरों में सबसे ज्यादा परेशानी होती है।
0: जी, बहुत सारे पेशेंट को तो उसी से पता चलता है कि उन्हें शुगर है,
1: जी
0: जिसे हम लोग डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। उसमें आपके लंबे नसों और न्यूरॉन्स में दिक्कत आ जाती है।
1: जी
0: टिंगलिंग जिसे हम कहते हैं, झुनझुनी, जलन, सुनापन, ये बहुत कॉमन है और एक ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज का। तो अगर ऐसा है तो आप जितनी जल्दी हो ट्रीटमेंट करिए, और प्रॉपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, ये इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल नहीं रहा तो धीरे धीरे, न्यूरॉन्स ऐसी है जो धीरे धीरे ज्यादा डैमेज होती है तो वो रिकवर नहीं कर पाती है।
1: जी
0: तो वो आप शुगर कंट्रोल भी रखो तब भी आपकी झुनझुनी समाप्त नहीं होती है। तो शुगर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेरिफेरल न्यूरोपैथी में। कितने पेशेंट तो आते हैं, इतना सुन्न हो गया रहता है कि घाव बन जा रहा है, इवन वो एम्पुटेशन, काटने की नौबत आ जा रही है,
1: जी
0: क्योंकि नसें बिल्कुल खराब हो चुकी हैं।
1: जी सर, मधुमेह की दवाओं को लेकर लोगों में यह भ्रम होता है कि मधुमेह की दवाएं लंबे समय तक खाने से हड्डियों में समस्याएं हो जाती हैं, तो क्या ये सही है?
0: ये बिल्कुल मिथ है, जिसे हम लोग कहते हैं भ्रम, क्योंकि
1: जी
0: शुगर नहीं कंट्रोल होने से आपको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, हड्डी वाली दिक्कत ज्यादा बढ़ती है।
1: जी
0: तो शुगर की दवा तो हमेशा लेनी है, कंट्रोल भी रखना है। ये नहीं कि जैसे एक श्रोता ने कहा था, मैं दवा ले रहा हूँ मेरा 200 से ऊपर ही रहता है हमेशा।
1: जी जी
0: तो दवा की डोज भी एडजस्टमेंट जरूरी है। अगर कंट्रोल नहीं रहे और दवा कंटिन्यू करिए तो वो शुगर अनकंट्रोल होने के कारण दिक्कत हो रही है, न कि दवाइयों से।
1: जी जी अच्छा सर, इतनी सारी बातें हम लोगों ने की और पैरों की भी दिक्कत की बात की, तो ये डायबिटीज से और किन अंगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है ये हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: जी, तो डायबिटीज मधुमेह बहुत, आपको कि बहुत एक खतरनाक रूप ले चुका है, और इसमें मैं सभी को यही बताता हूं कि इट अफेक्ट्स फ्रॉम टिप टू टोज, मतलब वो सर से लेके पांव तक कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो कि डायबिटीज के कारण असर ना हो। अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो दिक्कत हो सकती है। इवन हार्ट अटैक बीपी वाले मरीज से ज्यादा शुगर वाले मरीजों में होती है, और इसको हम लोग कार्डियोवास्कुलर रिस्क, अलग से इसकी एंटिटी है, क्योंकि ये बीपी वाले मरीज से भी ज्यादा हार्ट अटैक शुगर वाले मरीजों में होती है। आपको स्ट्रोक, जो फालिस, हलकवा की शिकायत, किडनी खराब, अभी जो जितने डायलिसिस वाले पेशेंट जितने बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनका शुगर नहीं कंट्रोल्ड है। नसों की दिक्कत, हार्ट की दिक्कत, ब्रेन की दिक्कत, सारी दिक्कतें शुगर नहीं कंट्रोल होने से हो सकती है। तो कोई ऐसा ऑर्गेन ऐसा नहीं है जिसे शुगर अफेक्ट नहीं करता।
1: जी एक आखिरी प्रश्न, ये जो शुगर होने पर लोग घरेलू उपचार करते हैं, मेथी दाना ले लिया या करेले का जूस पीने लगे या और जो घरेलू उपचार करने लगते हैं और दवाओं को छोड़ देते हैं, तो इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देंगे?
0: जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं अच्छे से इससे विस्तार से बताना चाहूंगा। ये जो घरेलू उपचार हैं, आपको शुगर है या ना हो आप ले सकते हो,
1: जी
0: मेथी, जीरा, अजवाइन, इसका पानी, बिल्कुल ये शुरू से इंडियन कल्चर में इसका इम्पोर्टेंस है,
1: जी
0: लेकिन ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं है,
1: जी
0: ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसे हम कहते हैं कि इसके एडिशन। दवाइयां बिल्कुल नहीं छोड़नी है, दवा के साथ आप ये लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दवा का कोई विकल्प नहीं है। तो आपको दवा हमेशा लेनी है, उसके साथ ये हेल्दी लाइफस्टाइल यूज करिए, जामुन का पाउडर लीजिए, जीरा पानी, अजवाइन पानी, मेथी पानी लीजिए, जो कि आपकी मेटाबॉलिज्म

0: हम ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन को अच्छा रखता है, लेकिन दवा के बिना ये कोई भी चीज कारगर नहीं होगी।
1: जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप दे रहे हैं सर। चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश है?
0: जी, जैसा आज मधुमेह रोग के बारे में ही बात हो रही थी, तो हमारे क्लिनिक में 90-95% पेशेंट शुगर के आते हैं और बहुत से कॉम्प्लिकेशन होती है मधुमेह की बीमारी में। तो हमें अभी जैसे एक श्रोता से बात हुई, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें पता है कि मधुमेह अच्छी बीमारी नहीं है, तो हम ऐसी लाइफस्टाइल न रखें जो हम अपने उस रिस्क को और बढ़ा रहे हैं। तो हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जंक फूड, ऑयली फ्राइड पैकेट कैन फूड बिल्कुल अवॉइड करिए, एरिएटेड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बिल्कुल अवॉइड करिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, आप डेली एक्सरसाइज मिनिमम 45 मिनट्स पर डे आप करें, और स्ट्रेस को कम करिए, क्योंकि आजकल जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस बस्टर जैसे आपकी कोई हॉबी है उसको यूज करिए, और हेल्दी लाइफस्टाइल को जिए जिससे आप इस बीमारी से बचे रहें। लेकिन अगर इन केस अगर आप शुगर से ग्रसित हैं, तो उसका प्रॉपर इलाज सही समय पे कराइए, जिससे आपके जो कॉम्प्लिकेशन है माइक्रो एंड मैक्रोवास्कुलर, जिससे हार्ट किडनी लीवर ब्रेन पे असर आता है, उससे आप बचे रहें और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ आप जी सके।
1: जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके सर, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। डॉक्टर अमित भास्कर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और श्रोताओं से जुड़कर उनके समस्याओं का समाधान किया और सभी को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां मधुमेह के बारे में दी, तो इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद शिखा जी, धन्यवाद काशीवासियों।
1: तो मित्रों, आज की चर्चा थी, उससे हमें यही संदेश मिलता है कि मधुमेह जीवन के रुकावट नहीं बल्कि अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा है। तो समय पर जांच कराएं, संतुलित खान पान रखें, नियमित व्यायाम करें और डॉक्टर की सलाह से इसे नियंत्रित करें। इसके लिए जागरूक रहना जरूरी है, तो जागरूक रहें, स्वस्थ रहें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम के साथ आकाशवाणी वाराणसी।
2: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संबंधी साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। कार्यक्रम में आज का विषय था मधुमेह यानी डायबिटीज में स्वास्थ्य की देखभाल। विशेषज्ञ थे डॉक्टर अमित भास्कर, इनसे बातचीत की शिखा श्रीवास्तव ने। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, दिन के ठीक 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।

0: इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का।
1: एक्सक्यूज मी,
2: क्यूट है ना?
0: और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार।
3: सलाम।
4: आपकी कॉल
0: आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
5: अरुण पांडे जी को मेरा शत शत नमन।
0: शत शत प्रणाम। नमस्कार आपको भी।
5: जी मैं आपका जाना पहचाना श्रोता बात कर रहा हूँ, राकेश, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला तहसील कोटखाई।
0: क्या कहने राकेश जी, बहुत स्वागत है। और हमारा हर श्रोता आपकी तरह ही अजीज है और आप तो वास्तव में जाने पहचाने श्रोता हैं। तो
5: जी,
0: उतनी दूर से आप हमें फोन कर रहे हैं। अभी वहाँ मौसम कैसा है? उन इलाकों में तो बारिश ज्यादा होती है इस समय।
5: जी जी, इन दिनों जो है मौसम साफ है।

0: कल बारिश हुई थी और आज जो है बिल्कुल मौसम साफ है और शाम तक बारिश हो जाए।
1: हमें खुशी होती है कि इधर गुजरात, महाराष्ट्र और तमाम जगहों से फोन आते हैं, लेकिन हमारे कुछ श्रोता आप जैसे हैं जो हिमाचल प्रदेश में भी हैं और जम्मू कश्मीर में भी हैं।
0: जी जी जी जी, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपसे मेरे ख्याल तीसरी या चौथी बार बात हो चुकी है।
1: जी जी, बहुत खुशी की बात है। तो इन दिनों आपके यहाँ बाग बगीचों में खेती बाड़ी में क्या हो रहा है?
0: अभी तो हमारे यहाँ सेब का जो है काम चल रहा है, सेब तोड़ रहे हैं और अभी जो है सेब जो है लगभग आधा सीजन सेब का खत्म हो गया है, लेकिन अभी बाकी बचा है तो वो भी खत्म हो जाएगा।
1: जी जी, और उसमें व्यस्तता क्या होती है आप जैसे किसान बागवान की, जैसे दिन में उसमें प्रतिदिन कुछ न कुछ काम करना पड़ता है या देखरेख करनी होती है?
0: जी जी, देखरेख ये करनी पड़ती है कि अभी सेब का सीजन खत्म हो गया, घास जो सेब में जो है घास होता है तो पेड़ में वो घास काटना पड़ता है, तो घास के लिए काट के फिर पशु के लिए इसका व्यवस्था करना पड़ता है सर्दी के लिए। फिर सर्दियों में क्या होता है पांडे जी, सर्दियों में फिर पेड़ों में जो है गोबर या खाद वगैरह और कटिंग और प्रोनिंग जैसी चीजें करनी पड़ती है, जब फूल आते तो फिर छिड़काव करना पड़ता है समय समय।
1: अच्छा, ये जो बागवानी है सेबों की खासतौर से, ये आप लोग पारंपरिक रूप से पुश्तैनी रूप से सीख लेते हैं हर कोई आपके घर परिवार के लोग, या फिर किसी तकनीकी विशेषज्ञ की, बागबान एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है?
0: जी जी, पहले तो हम अपने खुद ही करते।
1: कौन सा गाना सुनना है आपको आज इस कार्यक्रम में?
0: जी, तो आज मुझे गाना सुनना है अनोखा अंदाज मूवी का, और गाने की बोल है मोहित भाषी खाना है।
1: अनोखा अंदाज
0: कुमार सानू और साधना अलका याग्निक ने गाया था इस गाने को।
1: हाँ, तो अब हम आपको गीत सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर, और आपकी खेती बाड़ी खासतौर से सेब के बगीचों की अच्छी हो, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। गीत सुनते हैं, नमस्कार।
0: जी, जी, जी।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका।
1: जी मैं चंदूपुरा उड़ाची से राहुल कुमार बोल
0: रहा हूं। राहुल जी, चंदूपुरा के हमारे ऐसे श्रोता हैं जो श्रोता के बीच में, श्रोताओं के बीच मकबूल हैं और बड़े पुराने आप हमारे श्रोता हैं।
1: जी सर, बहुत पुराने हम
0: हैं। तो क्या हाल है आपके अभी?
1: अच्छे सर।
0: और कामकाज भी अच्छा चल रहा है आपका? हाँ, वो जो गर्मी थी मई जून वाली, उससे तो बहुत राहत मिली है। हालांकि बारिश वैसी नहीं हुई है जैसी होनी चाहिए थी इन महीनों में।
1: जी सर, बारिश थोड़ा कमजोर है
0: जी। और कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं आज?
1: गाना सुनना है दुनिया से दूरी जा रहा हूँ। माँ के पास आ रहा हूँ। 8 तारीख को हमारा अदलपुरा का यात्रा है।
0: जी जी बिल्कुल, तो बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब आपको हम आपको गीत सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार राहुल जी।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: जय हिंद सर, नमस्कार।
0: जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका।
1: जी चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से राम सकल चौधरी सर बोल रहा।
0: बिल्कुल, और ये आपका आठवां हफ्ता है लगातार वाला।
1: जी सर,
0: बाबा की कृपा जबरदस्त बनी हुई है और ये बनी रहे आप पर भी और हमारे तमाम श्रोताओं पर भी, क्योंकि सावन का पावन महीना है।
1: जी जी, बहुत शुभकामनाएं आपको आकाशवाणी परिवार को सावन पर्व की।
0: जी जी,
1: शुभकामनाएं सर जी।
0: हाँ, लेकिन सावन का महीना तो है और रौनक भी है धाम में, तमाम जगहों पर, वो चाहे आपके यहाँ कैथी हो या फिर हमारे यहाँ बाबा विश्वनाथ का धाम हो, लेकिन बारिश वैसी नहीं हुई जैसी हर साल होती है।
1: नहीं सर, वैसी बारिश नहीं, एकदम नहीं हो रही है। मौसम बना बना कर भगवान नहीं बरसने।
0: हाँ, वरना पहले के समय में तो इस समय तक बाढ़ जैसे हालात हो जाते थे। नदियों में भी अभी वैसा पानी का स्तर नहीं है।
1: नदी तो बहुत दूर है सर, अभी बहुत नदी नहीं है, तो बाढ़ नहीं आ रही है सर।
0: जी जी, और अब तो अभी आपके यहाँ के अक्षय लाल जी ने फोन किया था, वो आपसे मिलने वाले भी हैं।
1: जी सर, फोन हम ही तो बताएं कि आप फोन लगाइए, समय हो गया है 10:10 पर, तो उन्होंने बताया कि फोन हमारा लग गया, आप 50 पर डायल कीजिए। हम तुम्हारा जानते हैं, 50-52 पंप लगाते रहते हैं।
0: जी जी, अब बता दें आज इस हफ्ते कौन से गाने की फरमाइश है आपकी।
1: जी गाना सर है निगाहें फिल्म सर,
0: वो
1: वाला है ना, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस चलाया।
0: हाँ, निगाहें फिल्म का गीत है, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, मोहम्मद अजीज की आवाज है इस गाने में।
1: जी,
0: बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: पंडित प्रणाम।
0: प्रणाम, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: दैनिक विनोद कुमार राय बंसी बाजार गाजीपुर से बोल रहा हूँ।
0: बहुत बढ़िया विनोद जी, बड़े मौके पे आपका फोन लग गया। और गाजीपुर तो शहीदों की वीरों की भूमि रही है और स्वतंत्रता दिवस आने वाला है जी। और हमें एक रोज ये देख के अच्छा लगा कि गाजीपुर में जैसे कोई सैनिक रिटायर होते हैं, कोई फौजी अफसर, तो फिर उनका बिल्कुल शोभा यात्रा से निकलती है शहर में।
1: अभी निकली थी सर।
0: जी जी, उसी का जिक्र हम कर रहे हैं।
1: बस अभी बहुत बढ़िया लगा देख के उसको।
0: तो ये भी एक नई चीज आपने भी देखी होगी।
1: हम यही रहते के बगल में ही हम रहते थे।
0: जी जी, आपने एक बार बताया था वहीं पर आप हैं।
1: एक साल के बाद लग रहा है।
0: हाँ, लेकिन हमें स्मरण है आप। अब थोड़ी सी क्या है, श्रोताओं की तादाद है ज्यादा, इसलिए फोन लगने में दिक्कत होती है। जी जी जी, वही है कि थोड़ा सा हर दो चार मिनट पे अगर प्रयास किया जाए। और बताएं क्या हाल चाल है आपके। और मौसम अच्छा है लेकिन बारिश उतनी नहीं हुई जितनी हर साल होती है।
1: बिल्कुल कम हो रही है।
0: और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, अच्छे लगते हैं। अब आप जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये रिटायरमेंट के बाद आप कुछ कर रहे हैं, कारोबार वगैरह?
1: नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बच्चों का अब तो नाती पोते खिला रहे हैं, वही बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए।
0: जी जी जी, बिल्कुल। ये जो परिवार की खुशी है उसके बीच रहने का वक्त है, क्योंकि खासतौर से फौज के लोग या जो बाहर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनको तो घर परिवार से दूर रहना पड़ता है।
1: हाँ, तो वो जो हम लोग को छूट गया पहले ना, उसी को पूरा करना है।
0: उतने वर्षों की कमी जो है वो पूरा करने का यही वो समय होता है। जी, कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: आप सुनवा दीजिए, हाथी मेरे साथी गायक है, रफी राम ने गाया है। तो नफरत की दुनिया को छोड़ के।
0: हाँ, हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत है। और खासतौर से बच्चों का आपने जिक्र किया, तो ये फिल्म जो है बच्चे बहुत देखते थे एक जमाने में। बड़ा हम लोग जब छोटे थे तो इस फिल्म की बहुत चर्चा थी।
1: अरे सर, मैं इसको करीब 10 बार बच्चों को ही लेके गया था, छोटे छोटे बच्चों को।
0: पहले ऐसी बहुत सी यादगार फिल्में बनी हैं जिसमें जीवों से, वन से और प्रकृति से प्रेम को बड़ा महत्ता दी गई ऐसे फिल्मों में। और ये गीत अब हम आपको सुनवा दे रहे हैं। रफी साहब की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: जी बहुत नमस्कार आपको।
0: बहुत नमस्कार आपको भी। तो सावन का महीना है, इसमें बहुत तो ऐसा है कि ये बहुत वाला ही मौसम और महीना है। और इसमें बहुत नेक मिलते हैं और बहुत सारे भक्त जो बाबा के हैं वो शिव धाम और भगवान शिव के मंदिरों में जल चढ़ाते हैं।
1: जी बिल्कुल, लेकिन हम बनारस आए हुए हैं, बड़ी काशी में हमारी मतलब मौजूदगी हुई है एक बार, लेकिन आप लोग नहीं आए हैं हमारे यहाँ।
0: अच्छा देवरिया में।
1: जी देवरिया को, देवरिया में एक रुद्रपुर शहर है,
0: जी जी
1: कस्बा ही है, तो वहाँ पे दुग्धेश्वरनाथ का मंदिर है जो यूपी का छोटा शिवालय मतलब छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है।
0: बहुत बढ़िया।
1: आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते भी हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। खासतौर पे जब ये कुंभ का मेला हुआ था ना, उस टाइम इतनी ज्यादा भीड़ थी कि बहुत सारे लोग तो वापस भी चले गए। ऐसा लग रहा था कि सच में बनारस हम आ गए हैं।
0: आरजे के साथ साथ आप न्यूज रिपोर्टिंग का भी काम अच्छा कर सकती हैं उदिता। और
1: अच्छा
0: नाम आपने आज बताया, फिर आवाज से ही आपकी पहचान हो गई है।
1: अरे नाम तो बताया नहीं। हाँ विश्वकर्मा, देवरिया यूपी से। वैसे
0: हाँ,
1: सारे
0: क्योंकि आप जैसी मधुर आवाजों में हम खो तो जाते हैं लेकिन इतना भी नहीं खोते हैं।
1: नहीं ये भी सही है। खुद को खोना नहीं चाहिए।
0: हाँ हाँ हाँ ऐसे एक कई लोग कहते हैं कि खुद को खोना ही पाना है।
1: हाँ ये भी सही है। ये पता नहीं कौन लोग कहते हैं।
0: अच्छा उन लोगों की तलाश की जाए, बनारस से कुशीनगर पडरौना आपके इलाके तक।
1: खबर किया बेखुदी क्या चीज है।
0: ऐसे आपने देवरिया का जिक्र किया, देवरिया से एक आध बार गुजरना हुआ और पडरौना में कुछ समय हम रहे हैं, कुशीनगर भी गए हैं उधर में।
1: हाँ तो पडरौना तो कुशीनगर में ही है और उससे काफी दूर है, लेकिन पहले सलेमपुर, देवरिया और कुशीनगर ये एक ही जिले में आता था, लेकिन अभी वो विभाजित हो गया।
0: हाँ लेकिन जब हम पडरौना गए होंगे तब उदिता रही नहीं होंगी।
1: हाँ मैं नहीं रही होंगी।
0: हाँ क्योंकि वो हमारे पढ़ाई के दिन थे।
1: अच्छा तो आपने यहाँ से पढ़ाई की? बहुत
0: नहीं, वहाँ से की नहीं, गए हैं कुछ दिन हम, वहाँ गए हैं, रहे पडरौना में रहे हैं कुछ समय बस।
1: तो आपको कैसा लगा था इधर पडरौना? तो
0: और गोरखपुर तो बचपन हमारा, गोरखपुर में कुछ वर्ष रहे हैं ना बचपन में, तो गोरखपुर और उस इलाके से अच्छी वाकफियत है। उधर अच्छा मौसम अच्छा है, चूंकि नेपाल करीब है तो तराई वन और जंगल के इलाके हैं, हरियाली है उधर में और खेतीबारी भी अच्छी
1: बिल्कुल
0: होती है।
1: इस समय तो जो रामगढ़ ताल है जिसे नौका विहार के नाम से भी जाना जा रहा है, वहाँ पे दूर दूर से सैलानी भी आते हैं।
0: जी अभी ये रामगढ़ ताल बड़ी चर्चा में है
1: हाँ
0: और
1: बहुत चर्चा में है।
0: बहुत सारे जो स्थान है ऐसे।

0: वहां पे पर्यटक स्थल के रूप में उनका विकास हुआ है, तो वहां नौका विहार आपने किया है।
1: हाँ अभी तो जाने का इरादा भी है, सितंबर में जो ग्राम से जाऊंगी।
0: जब ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे भाइयों से,
1: हाँ सही।
0: तो सुचिता जी के
1: सुचिता
0: क्या हालचाल है इन दिनों में?
1: से अभी मेरी 9 बजे बात हो रही थी, तो पूछ रही थी वाराणसी में कार्यक्रम आता है क्या? हमने कहा बिल्कुल आता है सर, भी आज तक पूछ लेते हैं, तो
0: हाँ,
1: मुझे
0: सोचिए
1: बहुत
0: एक
1: मन
0: वक्त आ
1: होता
0: गया
1: है।
0: कि जब वो हमारे एक तरह से प्राइम मेंबर थी, यानी शुरुआत इस कार्यक्रम से जुड़ने की उन्होंने ही की थी।
1: हाँ बिल्कुल सही। एक फोन लगा के मैंने दिया था, जब मैं छोटी थी ना तो मुझे ऐसा फील होता था बात करने में।
0: अच्छा, वो सोचती होंगी कि इसको दे दो फोन और ये फोन लगाएगी, जब लग जाएगा तो हमको दे देगी,
1: हाँ मतलब
0: और
1: मैं
0: इस
1: फोन
0: बीच वो
1: लगाने
0: कुछ
1: में
0: करते
1: बहुत
0: रहेंगे।
1: एक्सपर्ट थी।
0: वाह, यानी
1: मैं
0: ये
1: फोन
0: जैसे
1: बहुत
0: कहते
1: कुछ
0: ना,
1: लगाई थी।
0: होनहार बीरवान के होत चीकने पात, बचपन में ही वो लक्षण दिख गए थे कि ये भविष्य की आरजे हैं।
1: पता नहीं, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि हाँ मैं आरजे काम करूंगी। और एक श्रोता ने बताया था कि मैम आपने जो बोला था ना कि दो फोन से लगाने से फोन लग जाता है, तो मेरा फोन लग गया। ये जब उन्होंने मुझसे कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो ठीक है, कम से कम हमारे कहने से किसी को फायदा तो हुआ। तो वही श्रोताओं से कहना चाहेंगे, जिनका भी फोन नहीं लगता, दो फोन से लगाया करें, थोड़ी फास्ट डायलिंग करें।
0: जी, तो ये टिप्स आपका हुआ, और अब बताएं कि कौन सा गाना सुनेंगे और कामकाज आपका ये पार्लर वाला और आरजे वाला कैसा चल
1: आरजे वाला तो बहुत अच्छा चल रहा है, पार्लर वाला भी अच्छा चल रहा है, अब तो और भी अच्छा चलने वाला है।
0: रहा है? हाँ, क्योंकि ये जो काम है, ये रक्षाबंधन, तीज त्योहार, ऐसे में तो फुर्सत ही नहीं होती होगी आपको।
1: इस समय अभी जो चल रहा है ना, तो अभी बस ब्राइडल मेकअप नहीं चल सकता है, बाकी सारी चीजें, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर कटिंग, ये सब चलते रहते हैं,
0: बहुत
1: फेशियल हो
0: बढ़िया,
1: गया, ये
0: बहुत
1: सब
0: सारी
1: चलते रहते
0: शुभकामनाएं। एक आप हैं जिनको हम लोगों ने बहुत सारे करियर ऑप्शन को बदलते और एक जगह पर जाते हुए देखा है शुरुआत
1: हाँ मैं
0: से।
1: जब पढ़ाई करती थी तब से मैं यहाँ पे बात करती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे कहाँ से कहाँ गई, वो सब चीजें आप लोग देखे ना सुने हुए हैं, तो अच्छी बात है मेरे लिए भी और आप लोग के लिए भी, और मुझे भी अच्छा लगता है शेयर करते हुए कि इसे बाकी श्रोता भी सीख सकते हैं कि हाँ, बहुत लोग कहते हैं गाना सुनना, टीवी देखना, ये सब चीजें ऐसे करियर खराब होता है, लेकिन मेरा मानना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
0: अब देखिए, अगर उदिता को रोका ना जाए तो आरजे वाले जो गुण है वो नॉन स्टॉप 4-6-8 मिनट बोलते रह सकती हैं।
1: बोल तो लेती हूँ।
0: अब आप बताएं क्या सुनाएंगी आज हमें, या फिर सुनेंगी क्या?
1: गाना हमें सुनना है, बताती हूँ, हीरो हिंदुस्तानी मूवी का गाना है, दीवानी दीवानी मैं तेरी, ऐसे करके गाना है।
0: और
1: हाँ
0: हाँ, ये गाना तो है, तो आप कौन सा सुनाने वाले हैं? भोजपुरी गाना सुनाएंगी क्या आप हमें?
1: कौन सा वाला सुना दे, भोजपुरी से मैं का?
0: अब ये
1: ठीक
0: तो
1: है,
0: हमारा कुछ, हमें नहीं उतनी मालूमात है इस तरह की।
1: नहीं
0: दीवाना
1: मालूमात
0: दीवाना
1: तो
0: वाला
1: है।
0: गाना कुमार सानू और सांदा सरगम ने गाया है,
1: हाँ
0: जमीर
1: हाँ
0: काजमी के बोल हैं।
1: आजकल ये भी काफी ट्रेंडिंग में है, रील्स बहुत आए इससे, मैंने कहा चलो एक फरमाइश कर देते हैं
0: तो अब बताएं आप हमें क्या सुना रहे हैं, श्रोताओं को खास तौर से?
1: श्रोताओं को खास तौर से।
0: नहीं, क्योंकि हम तो
1: श्रोताओं
0: एक है
1: से
0: ना, बाकी तो ज्यादा जो हजारों होंगे आपके प्रशंसक, वो तो श्रोता ही है।
1: ये तो है।
0: ये तो
1: नहीं
0: है।
1: नहीं नहीं ऐसी बात भी नहीं है। एक गाना है लेकिन मैं सोच रही हूँ उसको सुनाऊं कि ना सुनाऊं,
0: तो कौन सा?
1: वैसे
0: हाँ,
1: अच्छा है।
0: लेकिन है।
1: हाँ गलत गाना नहीं है, लेकिन उसमें मुझे लेकिन थोड़ा सा वैसा नहीं होता है जो शादी ब्याह में जिस तरीके से गाया जाता है, वो थोड़ा सा उस तर्ज पे है, लेकिन
0: हाँ, तो
1: गाना काफी अच्छा है।
0: जी, आप सुनाए।
1: सुना सकती हूँ, नहीं समझ में आ रहा सुनाऊं कि ना सुनाऊं, कुछ अजीब सा है, अजीब भी नहीं है, मैं कैसे बताऊं। और हमें लगता है कि ये जो लड़की अभी जो ट्रेंड कर रहा है ना, दाढ़ी वाड़ी इसी गाने से ही जो गोरे लोग होते हैं ना, तो उनको काफी ये गाना सूट करता है, लड़की की
0: अच्छा।
1: बात कर रही हूँ। आपको सुनाती हूँ, ठीक लगे तो रखिएगा, नहीं लगेगा तो हटा
0: जी
1: दीजिएगा।
0: बिल्कुल।

बहुत बढ़िया उदिता, आपका कॉन्फिडेंस आज बहुत अच्छा है। बहुत सारी शुभकामनाएं। नजर न लगे उदिता, यूं ही कामयाब होती रहें और हमसे बातें आपकी होती रहें। और गीत आप तक पहुंच रहा है, हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का नाम, फिर आपसे बातें होंगी। श्रोता भी आपका बहुत इंतजार करते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।

0: जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन इन फरमाइश, नमस्ते अरुण जी, मैं
0: स्वागत
1: त्रिपाठी कोटवा कपिल धारा सराय मोहाना वाला।
0: तो अभी आप कोटवा कपिल धारा सराय मोहाना आए हुए हैं या फिर वहाँ पे हैं गुरुग्राम में?
1: तो एक हफ्ता था वाराणसी में।
0: जी जी,
1: लेकिन मंडे को फिर आ गया, अपने वर्क स्थल पे आ गया।
0: बहुत बढ़िया, कार्यस्थल पर आप पहुंच गए। इसी तरह से आपने कई शहर भी देख लिए, बेंगलुरु में आप उतने समय तक रहे और खासतौर से आपने बड़ा चुनौतीपूर्ण रूप से आईटी सेक्टर में अपना एक अच्छा स्थान बना लिया और बहुत सारे हमारे श्रोताओं के भी और अपने कार्यस्थल पर भी लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं।
1: ये सब आकाशवाणी का भी इसमें बहुत रोल है, आप लोगों ने बहुत मेरा हेल्प किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई थेरेपी है तो वो म्यूजिक थेरेपी है।
0: बहुत बढ़िया।
1: मैं अभी इस दिन इस बार गया था मैं
0: जी,
1: तो इस बार तो मैं पूरा वाराणसी वाइब्स और दोनों कार्यक्रम में भाग लिया और मैं वही मेरे लेकिन कोई एकाएक कोई गाना आकाशवाणी से बज रहा था।
0: जी जी,
1: तो मैंने वॉल्यूम तेज किया और मेरी छोटी बेटी एंद्री जो है मेरे बगल में बैठी थी, तो वो कुछ बोली तो मैं बोला कि बेटा मेरा म्यूजिक ही मेरा मतलब जान है, अगर ये म्यूजिक ना रहता तो मैं शायद इतना आगे तक नहीं बढ़ पाता।
0: बिल्कुल, ये तो है कि अब तो बहुत सारे विकल्प आ गए हैं, लेकिन एक वक्त कुछ ही समय पहले जब इंटरनेट भी इतना सुलभ नहीं था और एक एक GPRS वगैरह के जरिए डाटा भी बहुत महंगा था, तब रेडियो ही एक ऐसा जरिया था जो सहजता से आपके काम को बिना डिस्टर्ब किए।
1: जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से
0: जी,
1: कि ये लोग ना सोचे कि मैं ब्लाइंडनेस के बाद ही रेडियो सुन रहा हूँ। मैं 1997 में जब वाराणसी आया तब से वाराणसी सुन रहा हूँ और मुझे याद है कि मैं एक छोटा सा रेडियो रखता था ऑफिस में भी, छोटा सा रेडियो का मैंने खरीदा हुआ था और वो ऑफिस में रहता था, वो जब मौका मतलब कि ये है कि नहीं दिन भर तो नहीं सुन सकते थे, लेकिन जैसे कि चुनिंदा कार्यक्रम है कि इतने बजे कार्यक्रम आएगा तो उसको सुनना ही सुनना है, तो इस तरह से चीजें थी। जैसे लंच टाइम में भी थोड़ा रेडियो सुन लिया, तो एक रेडियो हमेशा पॉकेट में रहता था। मुझे याद है कि उसमें एक ईयरफोन वाला भी सिस्टम था, तो कभी कभी रास्ते में भी चल रहे हैं तो ईयरफोन लगा के एक कान में सुनते हुए साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, तो ये आकाशवाणी का अनुभव रहा है मेरे साथ।
0: बहुत बढ़िया। और देखिए आजकल क्या है जीवन में,
1: जी बोल रहे थे एक किसी कार्यक्रम में, तो हम लोग भी जो है वॉइस ऑफ अमेरिका से और जर्मनी से जुड़े हुए थे, वहां से कैलेंडर और सारी चीजें आती थी और बड़ा अच्छा लगता था बीबीसी लंदन सुनना।
0: और बहुत सारे लोगों से तो जैसे जो वो गौतम सचदेव

0: देव थे या राजनारायण बिसारिया थे, कैलाश बुधवार थे, इन लोगों से बड़ा उस समय चूंकि हम पत्रकारिता में अखबारों में थे तो वैसा परिचय भी रहा है। बड़े विद्वान और लिखने पढ़ने वाले लोग एक जमाने में इन जगहों पर थे।
1: सगे भाई रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज के नाम से कविता लिखते हैं
0: जी, इनको हम तो जान रहे हैं।
1: हम लोग बहुत सारे स्टेज पर जाते थे और कैलाश मिर्जापुर, हलचल मिर्जापुरी,
0: जी
1: इन लोग को सुनते थे, धर्मशील चतुर्वेदी
0: जी,
1: इन लोग के साथ स्टेज पर भी बैठने का भगवान की कृपा से मौका मिला।
0: और हलचल मिर्जापुरी के साथ एक दो कवि सम्मेलन हमने भी किए हैं उधर सोनभद्र इलाके में।
1: टन से घंटा बजाते थे वो।
0: जी जी बिल्कुल, और अपने अनुभव मुंबई वगैरह के बताते थे बड़े लंबे समय तक।
1: जी जी जी, बहुत बढ़िया था वो, क्या एक दौर था, कितना अच्छा। मतलब अभी भी मेरे भाई साहब एक धुरंधर महोत्सव कराते हैं, 31 मार्च को होता है
0: जी जी जी
1: घाट पे, कभी मौका मिले तो लोगों को आना चाहिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है।
0: तो रुद्र जी तो बहुत सारे लोकगीत वगैरह अभी भी लिख रहे हैं और लोग गाते हैं,
1: बहुत सारे सावन से लेके बहुत सारे गीत लिख रहे हैं
0: जी जी,
1: और अपने अधिवक्ता है लेकिन उसके बाद भी टाइम निकाल के अपना पूरा करते हैं पैशन।
0: जी बहुत बढ़िया, हम किसी भी क्षेत्र में रहे लेकिन एक ऐसा कोई शौक हो, हुनर हो, क्रिएटिविटी हो तो हम समाज के लिए भी बहुत कुछ करके और देकर जाते हैं।
1: जी जी, होना भी चाहिए
0: जी।
1: हम भी लोग हैं जो संडे उंडे को मोटिवेशनल स्पीच देते हैं जाके, ताकि लोगों को जो कम से कम जो लोग हैं उनको एक आशा मिले कि हम लोग जब एक ब्लाइंडनेस आया तो कोई होप देने वाला नहीं था, एक आकाशवाणी के एक दो लोग थे, बाकी बहुत कम लोग थे, तो ये काम हम लोग भी जैसे कर रहे हैं कि हर जगह मोटिवेशनल स्पीच देना, सब लोगों को पॉजिटिव बनाना, सब लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहना।
0: जी बिल्कुल, आज आपसे बहुत प्रेरक बातें हुई। अब कौन सा गीत हम आपको सुनवा दे कार्यक्रम में?
1: तो गाना तो मुझे अभी एक है कि गाना याद आ रहा है तो वही मैं सुनना चाहूंगा। फिल्म का नाम है हीरो, थोड़ा सा एक लाइन दो लाइन गुनगुनाने की कोशिश करता हूं।
0: नहीं बिल्कुल गुनगुनाइए। जी,
1: लंबी जुदाई वाला याद ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू होता है।
0: चार दिनों का प्यार रब्बा,
1: चार दिनों का प्यार वो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, सॉरी अभी कुछ याद नहीं आ रहा है।
0: रेशमा बहुत अच्छी एक गायिका हुई रेशमा, और उन्होंने कुछ गाने गाए हिंदी फिल्मों में भी, और उसमें से ये शुरुआत का बड़ा यादगार और महत्वपूर्ण गीत है जो आपने फरमाइश की है।
1: फिल्म के तो सारे गाने अच्छे हैं लेकिन ये गाना,
0: हाँ ये चूंकि रेशमा ने कम गाए, दो चार गाने ही फिल्मों में गाए हमारे भारत में खासतौर से हिंदी फिल्मों में, और उसमें से ये बड़ा यादगार शुरुआत का उनका गीत है। अब ये गीत सुन लेते हैं, आपको बहुत शुक्रिया। हीरो है फिल्म का नाम। नमस्कार जी, आपसे बातें होती रहेंगी। नमस्ते। श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:10 से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 यानी 2222 और 2221050 यानी 2221050। एसटीडी कोड है वाराणसी का 05-42 अर्थात 0542। और अब आज का प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। ये आपको बता दें कि ये प्रोग्राम शनिवार को 11 से 12 बजे तक और रविवार को 12 से 1 बजे तक प्रसारित होता है। बहुत सारी शुभकामनाएं, फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम में। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। श्रोताओ, कार्यक्रम से जुड़ी प्रतिक्रियाएं आप हमें भेज सकते हैं pkldaiarvaranasi@gmail.com पर। और वो कार्यक्रम यानी पत्र के लिए धन्यवाद प्रसारित होता है आज एक दिन रविवार शाम 7:31 पर।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने वाला है। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और ये 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इस दौरान सामूहिक वंदे मातरम गायन, तिरंगा रैलियां, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। गृहमंत्री अमित शाह पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृहमंत्री ने आज गोरीमेदू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण

0: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश की जा रही है। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चियनशी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। क्षेत्र अधिकारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर चंदौली से प्राप्त सूचना के मुताबिक रामकेर सिंह यादव, पिता का नाम राम वृक्ष यादव, ये कुरहना अलीनगर चंदौली के निवासी हैं और 9 जुलाई 2026 की सुबह 5 बजे से अपने घर से लापता हैं। रामकेर सिंह यादव की आयु है 56 वर्ष, रंग गोरा, कद 5 फीट 6 इंच, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था हल्के लाल रंग की शर्ट और नीले रंग की पैंट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो क्षेत्र अधिकारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर चंदौली को सूचित करें। ज्योति भारती, पिता का नाम बंदी भारती, जलालपुर अलीनगर चंदौली की निवासी हैं और 3 जुलाई 2026 की मध्य रात्रि 1 बजे से अपने घर से लापता हैं। ज्योति भारती की आयु है 19 वर्ष, कद 5 फीट के करीब, रंग सांवला, शरीर दरमियाना, चेहरा लंबा है, आंखें और बाल काले हैं। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था काले रंग का सलवार सूट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय चंदौली को सूचना दें। पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी से प्राप्त एक सूचना के अनुसार दीपक कुमार उर्फ पुनीत, पिता का नाम धीरेन्द्र कुमार, ये नदेसर कैंट वाराणसी के निवासी हैं और 9 अप्रैल 2026 की सुबह 8 बजे से अपने घर से लापता हैं। दीपक कुमार उर्फ पुनीत की आयु है 40 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था भूरे रंग की शर्ट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी को सूचना दें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले

शेष मुख्य कार्यक्रमों की। रविवार से अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण समय है रात्रि 10 बजे का। इसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज रात 8 बजे आप सुनेंगे विशेष भेंटवार्ता मेजर जनरल धर्मराज राय, कमांडेंट सिलेक्शन सेंटर ईस्ट से अरुण पांडे की बातचीत। प्रसारण समय याद रखें रात्रि 8 बजे का। अंजुमन कार्यक्रम होगा रात में 9:30 पर। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। इसमें श्रोताओं के ईमेल के साथ होंगे अरुण पांडे और सना सलीम। शाम 6:30 पर कार्यक्रम कृषि जगत में आज बातचीत अनुभव खेती में विषय पर रामलाल वर्मा से सतीश कुमार यादव की बातचीत सुनवाई जाएगी। इसी कार्यक्रम में लोकगीत के कलाकार होंगे महेंद्र सिंह यादव और उनके साथी। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज के आकर्षण है आज की बात, युवाणी क्विज, यूथ डायरी में आज के शब्द, विश्व घटना चक्र, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। बाल गोपाल कार्यक्रम होगा शाम 5 बजे। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज की फिल्म है खलनायक, प्रस्तुति स्नेहा सिंह की और प्रसारण समय 2:30 का। 1:30 पर व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम होगा लोक रंग। आज इतवार है कार्यक्रम में तपन भट्ट की लिखी झलकी सुनवाई जाएगी उदयपुर की ट्रेन, प्रस्तुति लता गुप्ता की है। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज काकोरी ट्रेन एक्शन डे पर तिरंगा यात्रा में शिरकत की। ये मार्च कौम और मुल्क के लाजवाल शहदा के तई एहतराम और इजहार तशक्कुर के लिए किया गया था। इससे पहले वज़ीर-ए-आला की रिहाइश गाह पर मुनक़िद एक प्रोग्राम में जनाब योगी ने रियासत के लोगों से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं सालगिरह के मौके पर अजीम इनकलाबियों और मुजाहिदीन आज़ादी से इजहार तशक्कुर के लिए मुल्क भर में तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया जा रहा है। हमारा तिरंगा हमारी सादगी, तरक्की और भारत की इज्जत और फ़ख्र की अलामत है। हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी विरासत की तौहीन करने वालों के लिए सख्त सजाएं देने का इंतजाम किया है।
1: हमारा एक तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है।
0: तिरंगा यात्रा वज़ीर-ए-आला की रिहायशगाह से शुरू हुई और सिविल अस्पताल और अटल चौक से होती हुई विधान भवन के सामने अख्ताम पजीर हुई। इस दौरान मरकजी वजीर ममलकत बराए ख़जाना और रियासती बीजेपी सदर पंकज चौधरी, नायब वज़ीर-ए-आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर ज़िले का दौरा करेंगे और दो असम्बली हलकों में तरक्याती प्रोजेक्टों का अफ्ताह करेंगे। वज़ीर-ए-आला सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज और बांसी असेंबली हलकों के लिए 311 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 107 तरक्याती प्रोजेक्टों का अफ्ताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों से फ़ायदा उठाने वालों को सर्टिफिकेट देंगे और एक जलसा आम से भी खिताब करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर

0: मुलाकात जितेंद्र प्रसाद और मरकजी वजीर ममलकत प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल ने कल आगरा में दो रोज़ा एआई फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव 2026 की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ममलकत जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क्यादत में उत्तर प्रदेश एआई के मैदान में आगे बढ़ रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए मरकजी वजीर ममलकत ने कहा,
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच अनुरूप कार्य हो रहा है कि धरातल पर इसका प्रभाव दिखाई दे, कृषि से लेकर स्वास्थ्य से लेकर छोटे मध्यम उद्योग और तमाम ऐसी जगहों पे एआई का इस्तेमाल करते हुए भारत कैसे आगे बढ़ेगा और खास तौर से हमारे युवा प्रतिभा मैंने देखी, ये जो छात्र छात्राएं हैं कॉलेज में उनको एआई के लिए क्या सरकार प्रोत्साहन दे रही है उसके बारे में जानकारी दी।
0: मरकजी वजीर ममलकत प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल ने कहा कि एआई के बगैर भारत तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन सकता।
2: एआई का भविष्य क्या है, हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और इसके बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता, विशेषज्ञों ने अपने विचार दिए। इस वैचारिक मंथन से अनुरोध निकलेगा तो भारत को प्रधानमंत्री का विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को पूरा।
0: रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। मरकजी हुकूमत ने वाजह किया है कि सार्फीन के लिए यूपीआई और तमाम जाती लेन देन मुफ्त बने रहेंगे। वजारत मालियात ने कहा कि यूपीआई के जरिए से अदायगी करते वक्त सार्फीन को किसी भी किस्म के लेन देन की फीस नहीं देनी होगी, जबकि ज़्यादातर तजारती लेन देन भी मुफ्त रहेंगे। वजारत ने मजीद कहा कि अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट फीस लागू होती है तो यह सिर्फ एक मखसूस हद से ज़्यादा महदूद तजारती लेन देन पर बराए नाम शरह पर लागू होगी। रियासती हुकूमत ने 12 साल तक की उम्र के स्कूल जाने वाले बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक नई पहल की है। इन बच्चों को ले जाने वाली हर स्कूल की गाड़ी के लिए एक अटेंडेंट होना लाजमी होगा, जो बच्चों को महफूज तरीके से सवार करने और उतारने का जिम्मेदार होगा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशुतोष निरंजन ने सिलसिले में रियासत के तमाम स्कूलों के मुंतजमीन को एक खत जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने से रियासत में कई नदियों की आबी सतह में इजाफा हुआ है। बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा नदी, लखीमपुर खीरी में शारदा नदी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने अगले दो दिनों के लिए रियासत के कई हिस्सों में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:15 हुए हैं, आज इतवार है। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं झलकी उदयपुर की ट्रेन। लेखक हैं तपन भट्ट, प्रस्तुति लता गुप्ता की।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बंबई से आने वाली गाड़ी 8 बजे अपने निर्धारित समय पर स्टेशन पर पहुंचेगी।
1: वो रहा इंक्वायरी ऑफिस। बहुत सुंदर बैठे हैं। भगवान, मेरी ड्यूटी का पहला दिन है। गुड मॉर्निंग सर।
2: क्या क्या कहा तुमने?
1: गुड मॉर्निंग सर।
2: गुड मॉर्निंग सर।
1: यस सर।
2: घड़ी है तुम्हारे पास?
1: घड़ी? हाँ घड़ी है ना। क्यों?
2: अरे घड़ी का ताल्लुक है। है घड़ी?
1: हाँ घड़ी है ना।
2: क्या टाइम हुआ?
1: 12:30।
2: 12:30।
1: हाँ।
2: गुड मॉर्निंग क्यों? गुड आफ्टरनून क्यों नहीं?
1: यस सर। गुड आफ्टरनून सर।
2: थैंक यू। जाओ
1: सर। सर
2: अब क्या है?
1: सर मैं आया हूँ।
2: आप आए हैं, ये तो मैं देख रहा हूँ। आपकी फोटो उतरवाऊं?
1: नहीं सर, सर वो बात ये सर। हाँ ये सर, ये लीजिए, ये लीजिए सर, ये लीजिए।
2: ये क्या है?
1: ये सर मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट।
2: तुम्हारी ज्वाइनिंग रिपोर्ट या जन्मपत्री?
1: अरे जन्मपत्री नहीं सर, मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट। सर मेरी ड्यूटी लगी है सर।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, नए नए आए हो?
1: यस सर।
2: आज पहली दफा?
1: हाँ सर।
2: और पहली दफा ही लेट? 2 घंटा से भी ज्यादा।
1: वो सर वो रास्ते में सर, रास्ते में।
2: रास्ता नाश्ता कुछ नहीं, तुम लेट हो, मान लो कि तुम लेट हो।
1: हाँ सर, वो तो मैं मानता हूँ सर, मैं लेट हूँ।

0: लेकिन सर वो बात ये कि
1: जब मानते हो कि लेट हो तो फिर ये लेकिन वेकिन क्यों लगा रहे हो?
0: वो सर बात ये सर वो मैं ये कह रहा था।
1: अच्छा अच्छा छोड़ो, वहाँ उस कुर्सी पर बैठना है तुम्हें।
0: इस पे देख रहे हो सर? हाँ हाँ बैठ गया सर।
1: हाँ अब ये पूछताछ का दफ्तर है।
0: यस सर पूछताछ का दफ्तर। हाँ
1: किसी भी यात्री को उसकी मांगी गई पूरी जानकारी मिलनी चाहिए।
0: यस सर।
1: समझ गए?
0: समझ गया सर।
1: और हर यात्री से बड़े प्यार से धीरे से और मुस्कुराकर बोलना है।
0: जी सर।
1: तो फिर शुरू हो जाओ।
0: हाँ सर
1: क्या बोलो?
0: हाँ तो सर कोई पूछेगा तो बोलूंगा ना।
1: अरे तो मैं पूछ रहा हूँ ना।
0: हाँ पूछो।
1: आपकी पूछताछ की खिड़की कब खुलती है?
0: अरे मुझे क्या पता कब खुलती है, मैं तो आज आया हूँ।
1: खा गए ना कच्चा?
0: जी
1: हाँ टेंपर लूज कर दिया
0: तो?
1: अभी समझाया था बड़े मुस्कुरा कर प्यार से बोलना है। खड़े हो जाओ सीधे।
0: अच्छा सर मुस्कुरा कर। हमको मुझे पता नहीं साहब कब खुलती है, मैं तो आज आया हूँ।
1: ये दांत क्यों दिखा रहे हैं आप? अरे हंसने के साथ जरूर यही क्या कि दांत दिखाओ?
0: अच्छा सर
1: मुंह बंद करो।
0: हाँ, मुझे पता नहीं सर, मैं तो आज ही आया हूँ।
1: अब क्या हुआ, पेट में ऐठन हो रही है या किसी ने गला दबा दिया?
0: अजी मैं बोल लूंगा साहब, आप ठीक है मैं देख लूंगा।
1: कोई बात नहीं, पसीना पहुंचो। अबे मेरा नहीं अपना पसीना पहुंचो और उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ।
0: ठीक है साहब।
1: खिड़की खोल लो और अपना काम शुरू करो।
0: हाँ,
1: कोई दिक्कत हो तो मेरे पास मेरे कैबिन में आ जाना।
0: आ जाऊंगा सर, बिल्कुल आ जाऊंगा, आपके कमरे में आ जाऊंगा सीधा ही।
1: मैंने कोई लतीफा कहा है?
0: नहीं तो
1: फिर हंसे क्यों?
0: वो तो मैं यूं ही हंस रहा था सर, वो अभी कहा था ना हंसके।
1: अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? खिड़की खोलिए और अपना काम शुरू कीजिए। दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना।
0: हाँ सर आ जाऊंगा। क्या आदमी है, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था।
2: राम राम
0: राम राम राम
2: राम
0: राम राम
2: राधे राधे
0: राधे राधे
2: कृष्णा कृष्णा। मैं पूछ रहा था क्या इंक्वायरी ऑफिस यही है?
0: हाँ हाँ यही है। क्यों?
2: मतलब पूछताछ नहीं होती है?
0: अरे यही होती है।
2: भाई साहब इस शहर में अच्छी से अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं?
0: कपड़े?
2: हाँ हाँ कपड़े, पैंट शर्ट कुर्ता पजामा धोती वगैरह कहाँ मिलते हैं?
0: मुझे क्या पता भैया कहाँ मिलते हैं?
2: पता नहीं, कमाल है।
0: कमाल है?
2: भाई साहब आप बता सकते हैं इस शहर में अच्छे से अच्छे जूते कहाँ मिलते हैं?
0: जूते?
2: हाँ जूते, काले भूरे लाल नीले, पैर में पहनते हैं जूते।
0: अरे मुझे मालूम है पैरों में पहनते हैं, लेकिन भैया जूतों से मुझे क्या मतलब?
2: कोई मतलब नहीं है। अच्छा भाई साहब एक बात बताइए आप, मुझे अपनी पत्नी के लिए हार खरीदना है, कहाँ से खरीदूं?
0: अबे तू तेरी पत्नी के लिए कहीं से भी हार खरीद यार, चोरी कर डाका डाल मेरे से क्यों पूछ रहा है?
2: अब इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पूछताछ, तुमसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा?
0: अबे तो इस पूछताछ का मतलब है रेल में पूछताछ, यार रेलों के बारे में पूछा जाता है।
2: ओ रेलों के बारे में पूछा जाता है?
0: हाँ।
2: भाई साहब ये रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं?
0: मेरे घर पे बनते हैं।
2: घर पे बनते हैं डिब्बे?
0: हाँ।
2: तो भाई साहब ऐसा करना, एक रेल का इंजन घर भेज देना, मुन्ना खेल लेगा।
0: अबे किन डब्बे कहाँ बनते हैं, रेल का इंजन बाहर कहाँ बनता है, इस बात से मुझे क्या लेना देना?
2: तो भाई साहब गुस्सा काहे को होते हो, रेलों के बारे में ही तो पूछ रहा हूँ ना।
0: अबे तो रेलों के बारे में पूछने का मतलब है रेलों के आने जाने के बारे में पूछना।
2: ओ रेलों के आने जाने के बारे में पूछना।
0: हाँ।
2: भाई साहब ये रेल आती क्यों है?
0: अबे यात्रियों को लेने आती है बाबा जी।
2: तो गुस्सा क्यों होते हो है? फिर जाती क्यों है?
0: तो उन्हें लेकर जाती है, पर तुझे कहाँ जाना है?
2: मुझे तो कहीं नहीं जाना, मैं तो यूं ही टाइम पास करने आया था।
0: टाइम पास करने आया था? तो कैसे?
2: भाई साहब इंजन भेज देना।
0: टाइम पास करने आया था? अजी भाई साहब जी क्या बात है भाई साहब, क्यों हाँफ रहे हो आप?
3: अरे पांच नंबर के पेड़ों से बकरा रहा हूँ भाई साहब जी।
0: अरे ऐसी क्या आफत आ गई यार?
3: मैं जाना चाह रहा था भाई साहब जी, ये भोपाल है जो उदयपुर जाने वाली ट्रेन है भाई साहब जी, कितने बजे जाती है?
0: उदयपुर जाने वाली
3: भाई साहब जी, उदयपुर जाना जी भाई साहब जी।
0: अरे देख के बता रहा हूँ भाई, ये ठावस तो खा
3: भाई साहब, जल्दी बताओ जी।
4: उदयपुर जाने वाली ट्रेन
3: आ जाए जी भाई साहब,
4: बता रहा हूँ भैया।
0: अरे भैया वो तो 11 बजे जाती है, वो तो गई
3: गई।
0: हाँ गई।
3: अरे उदयपुर जाने वाली ट्रेन।
0: अरे हाँ भाई उदयपुर जाने वाली।

0: ट्रेन।
1: ओ जो पांच नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है भाई साहब जी वो।
0: हाँ भाई पांच नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है, गई वो ट्रेन।
1: आप समझ नहीं रहे, सेवन डाउन है वो, पूछ रहा
0: हूँ। मालूम है सेवन डाउन है, सेवन डाउन है, पांच नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है, उदयपुर जाती है, ग्यारह बजे जाती है ट्रेन। गई
1: गई क्या?
0: हाँ गई।
1: अच्छा भाई साहब।
0: क्या अच्छा भाई साहब?
1: अजी भाई साहब जी
0: क्या है?
1: अजी कहीं शंटिंग करने तो नहीं गई है?
0: हमारी शंटिंग करने वो 9 बजे जाती है भाई, और अभी 12:30 बज चुके हैं, ट्रेन गई।
1: अरे तो नियम थोड़ी, कभी लेट भी तो जाती होगी ना।
0: अरे आज नहीं हुई लेट,
1: मतलब चली गई।
0: चली गई
1: ठीक है भाई साहब।
0: क्या ठीक है?
1: ओ भाई साहब जी।
0: अरे अब क्या है भाई?
1: अजी कहीं ऐसा तो नहीं वो दूसरे प्लेटफॉर्म में खड़ी हो, आपको पता ही नहीं हो?
0: हम तो पागल है, हम तो यूं ही ड्यूटी पे आ गए। अबे यार ये रजिस्टर क्यों रखा है यहाँ, काहे के लिए रखा होता है? इसमें देख के बताया ना मैंने, गई ट्रेन।
1: गई क्या?
0: हाँ गई।
1: ठीक है भाई साहब,
0: पता नहीं कैसा आदमी।
1: भाई साहब जी।
0: अरे अब क्या है यार?
1: आप मजाक तो नहीं कर रहे ना?
0: तो जीजा जी लगता है मेरा, तो भाई है मेरा, दोस्त है, मैं क्यों मजाक करूंगा? देर से चले दे, कह दिया तेरे से उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई तो गई।
1: खाओ मेरी कसम।
0: तेरी कसम भाई, तेरे पिताजी की कसम, अरे तेरे पूरे खानदान की कसम दादा, उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई।
1: वास्तव में गई क्या भाई साहब?
0: तो वास्तव में गई यार, सच्ची में गई।
1: सच्ची?
0: तो मैं सच्ची गई, रियली में गई, अरे उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई बाबा।
1: ठीक है भाई साहब।
0: भगवान क्या करूं।
1: अजी भाई साहब जी।
0: अरे मेरे बाप, अब उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई।
1: नहीं वो तो आपने बता दिया गई,
0: तो
1: मैं पूछ रहा था पूरी गई क्या?
0: आधी खड़ी है बाहर।
1: आधी खड़ी है ना?
0: खुली। अब आधी ट्रेन कैसे जाएगी? ट्रेन तो पूरी जाती है।
1: पूरी जाती है?
0: हाँ।
1: फिर तो इंजन भी गया होगा।
0: क्या आदमी, अबे इंजन के बिना ट्रेन चलेगी कैसे यार? इंजन ही तो ले जाता है ट्रेन को।
1: गार्ड का डिब्बा भी गया क्या भाई साहब?
0: अबे गार्ड के डिब्बे, डाक के डिब्बे, सारे डिब्बे गए भैया, तो चलने दे कहाँ से?
1: पहिए भी गए क्या भाई साहब?
0: अबे कौन से जन्म का बदला ले रहा है यार? अरे पहियों के बिना ट्रेन चलेगी कैसे
1: भाई साहब? मेरा उदयपुर जाना जरूरी है, मैं छत पे बैठ के चल जाऊंगा।
0: अरे जब ट्रेन ही नहीं है तो छत कहाँ से आई?
1: क्यों, छत भी जाती है ट्रेन के साथ?
0: नहीं भाई साहब, वो छत तो क्या ट्रेन के पीछे पीछे चलती है।
1: मैं भी ये
0: पर ट्रेन में ही तो लगी होती है छत।
1: अच्छा भाई साहब आप कह रहे तो मान लेता हूँ।
0: कान होगी लगा दी पहले दिन, पड़े पड़े लोग।
1: ओ भाई साहब जी।
0: अरे अब क्या है यार,
1: कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो सकता क्या?
0: एक इंतजाम तो हो सकता है भाई साहब।
1: क्या भाई साहब?
0: ऐसा करो आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं ले जाता हूँ उदयपुर।
1: ऐसे तो देर हो जाएगी।
0: तेरा क्या रह गया? कोई इंतजाम नहीं हो सकता समझे, चलो ऐसे।
1: अजी भाई साहब मैंने टिकट लिया था, ट्रेन कैसे चली गई?
0: अरे ट्रेन का टाइम हो गया भैया और तुम लेट हो गए इसलिए चली गई।
1: नहीं मैंने टिकट लिया था भाई साहब।
0: मेरा टिकट लिया था, तू भगवान हो गया क्या? कोई देर तक आना, उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई, चलो ऐसे।
2: अजी भाई साहब आप ऐसा कीजिए, ट्रेन को वापस बुला लिए, मैं लटक कर चला जाऊंगा।
0: ट्रेन वापस नहीं आ सकती समझे?
2: अरे कैसे नहीं आ सकती, ये तो आप रेल वालों की धांधली है। रेलवे, हाय हाय रेलवे।
0: ये क्या कर रहे हो यार?
2: देखो आप मेरे को उदयपुर भेजो, नहीं तो मैं ऐसे नारे लगाऊंगा।
0: तो मैं तेरे को उदयपुर कैसे भेजू?
2: अरे कैसे भेजो, आपको क्या है कि एक आध डब्बे बाद में भेजने चाहिए ताकि लेट आने वाले पैसेंजर को असुविधा ना हो।
0: हाँ भाई साहब मैं आपकी सलाह है ना रेल मंत्री तक पहुंचा दूंगा।
2: अरे लेकिन मैं अभी उदयपुर कैसे जाऊँ?
0: और तू कैसे जाए यार, मैं क्या करूँ इसे? हाँ भाई साहब एक काम हो सकता है, अरे आप बस से चले जाओ।
2: बस से नहीं मैं तो ट्रेन से जाऊंगा।
0: बट ट्रेन तो चली गई,
2: तो मुझे लेकर क्यों नहीं गई? तो
0: गलती हो गई भैया, रेलवे वालों से बहुत बड़ी गलती हो गई।
2: अब आप मुझे बताइए मैं उदयपुर कैसे जाऊँ?
0: अरे मैंने कहा ना दादा बस से चला जा। अरे आज छोड़ तेरे, बस से चला जा यार, मेरी ड्यूटी का पहला दिन है, मैं पैर पड़ू बस से चला। आरती सुन तेरी, जय जगदीश भाई साहब, बस से चला जाओ यार।
2: ठीक है भाई साहब, अब आप इतना कह रहे हो तो मैं बस से चला जाता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद
2: भाई साहब जी।
0: अब बोलो
2: आप मेरा एक काम करोगे क्या?
0: कहिए।
2: वो बस स्टैंड थोड़ा दूर है यहाँ से,
0: छोड़िए हम आपको।
2: नहीं नहीं आप फोन करके एक टिकट बुक करा दो मेरा।
0: फोन करूँ?
2: हाँ भाई साहब।
0: हाँ एक मिनट रुको भाई साहब, तो नंबर क्या है वहाँ का?
2: 2
0: चिपे बस स्टैंड 26-21-22।
2: मैं ये बता रहा था।

0: छब्बीस, इक्कीस, बाईस।
1: हाँ भाई साहब जरा सा,
2: अरे उठा ले रे। हेलो, हाँ बस स्टैंड से। हाँ साहब, ये मैं पूछ रहा था साहब, ये उदयपुर जाने वाली कोई बस है क्या? हैं? नहीं भाई साहब, मैं अकड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो सीधा ही हूँ। नहीं, वो प्रॉब्लम है कुछ भाई साहब आज। हाँ, मैं पूछ रहा था भाई साहब, उदयपुर जाने वाली कोई बस की क्या है, कि वो टिकट विकट मिल सकती है क्या? उदयपुर जाने वाली बस गई? हट, ठीक है भाई साहब। भाई, वो उदयपुर जाने वाली बस तो गई?
1: ऐसे पूछो, वास्तव में गई क्या
2: भाई साहब? वास्तव में गई क्या जी? वास्तव में गई?
1: ऐसे पूछो, पूरी गई क्या?
2: मतलब पूरी? अबे तेरी तो इधर आ तू।
3: उसने पूछवाया कि उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई क्या?
2: ये कोई नौकरी है? मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं अभी इस्तीफा दे देता हूँ। सर सर सर सर सर,
4: क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है?
2: ये लीजिए सर, ये लीजिए, ये लीजिए सर, ये लीजिए।
4: क्या है
2: ये सर? मेरा इस्तीफा।
5: अरे लेकिन दफ्तर के कुछ कायदे कानून होते हैं।
2: ये कायदे कानून क्या होते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। कायदे वायदे और कानून वानून
5: तुम्हें
2: मैं जानता हूँ, ये मेरा इस्तीफा है।
5: अरे भैया, इस्तीफे के साथ चार्ज देना पड़ता है।
2: चार्ज देना पड़ता है यहाँ भी? कितना चाहिए बोलो, क्या चाहिए बोलो।
5: अरे रे, अरे ये वाला चार्ज नहीं
2: तो?
5: हैंडिंग ओवर नोट में लिखना पड़ेगा तुम्हें कि उदयपुर वाली ट्रेन गई क्या।
2: हाँ गई। है?
6: आज इतवार है, कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे झलकी, उदयपुर की ट्रेन। लेखक थे तपन भट्ट, प्रस्तुति लता गुप्ता की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग।

0: कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और श्रोताओं आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। 7905519981 ये इस कार्यक्रम का व्हाट्सएप नंबर है। कलाकारों के नाम हम आपको बता रहे हैं और उन्हीं कलाकारों से लोकगीत की फरमाइश आपको भेजनी है। आज इस कार्यक्रम में शामिल कलाकार हैं बाबूलाल केसरी और साथी, नीलम मौर्या और हीरालाल यादव और साथी। 7905519981 ये इस कार्यक्रम का नंबर है और सबसे पहले कलाकार का नाम लिखें, उसके बाद अपना नाम और जगह का नाम। बाबूलाल केसरी, नीलम मौर्य और हीरालाल यादव और साथी ये कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
4: 0542227658।
1: 0542227658।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
1: 0542227658।
0: कार्यक्रम में शामिल कलाकारों के लोकगीत की फरमाइश आप में से बहुत सारे श्रोताओं ने भेज दी है। 7905519981 ये व्हाट्सएप नंबर है। वक्त रहते अपनी फरमाइशें भेज दें, यानी

शुरुआत में ही, ताकि आपके नाम कार्यक्रम में उस लोकगीत के साथ शामिल हो सके। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं आप ही की फरमाइश के इस लोकगीत यानी कजरी के साथ। कलाकार हैं बाबूलाल केशरी और साथी।

बाबूलाल केसरी और साथियों की गाई ये कजरी अभी आप सुन रहे थे। इसके लिए फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की आई है। थाना रोड बक्सर से हैं जीवत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष और आयुषी, साथ में सानवी। ग्राम पजोनिया जालौन के श्रोता हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। आप हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरया, जलंधर से। दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमें सुन रहे हैं मेरठ कैंट से, शुक्रिया आपका। आर्यनगर कोहका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल। इसी लोकगीत को सुनना चाहा जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल ने। गमहरिया जमशेदपुर से हैं विपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल आशुतोष और अभिनव जायसवाल। गांव कहमर पकड़ी तर हनुमान

मंदिर चांदनी चौक के श्रोता हैं त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी और शिवनाथ जायसवाल। विशाल मिश्रा हैं बधवा बाजार माधोपुर इमेलिया जौनपुर से। मजनू का टीला दिल्ली से। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक का संदेश है। रविन्द्रनाथ सिंह, रमन कुमार, जयंत कुमार, देवरिया, नुआव, रामगढ़, कैमूर बिहार के श्रोता हैं। गांव चोहल्दा बागपत से ये फरमाइश संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और कमल सहनी की आई है। सूर्यभान सिंह हैं बिसुंधरी घोरावल सोनभद्र के हमारे श्रोता। दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान और अबान अब्बासी। नवागढ़ कटई बेमेतरा से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत मयंक, जीत और पुष्पांजलि वर्मा। दिलदारनगर गांव गाजीपुर से हैं जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह, दीनानाथ सिंह और कयूम शाह। ये फरमाइश शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता लिपि गोप और दीपाली गोप की है पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। गमरिया जमशेदपुर से है रोहन और आर्य जायसवाल। बबरी बाजार चंदौली से विजय और सरोज जायसवाल। रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू और देवंती जायसवाल और चकिया बाजार चंदौली से सुंदर और सुमन जायसवाल। बैंजो मास्टर सुनील यादव, शिव कुमार यादव, तनिष्का यादव, नौबत यादव हमें सुन रहे हैं अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ से। आप हैं मुबारकपुर उची तकिया आजमगढ़ से। दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, कनीस, सकीना, हसीना दिलशाद और वसीम फातमा। ये फरमाइश भोपालगढ़ राजस्थान से आई है धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार की। बक्सर बिहार से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातमा खातून, असलम अंसारी, अकरम और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफ्ताब और मेहताब अंसारी। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया के श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से हैं अधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश कजरी नीलम मौर्य के स्वर में।

नीलम मौर्य के स्वर में अभी आप ये कजरी सुन रहे थे, फरमाइशें हमारे इन श्रोताओं की आई हैं। पटेल नगर मुगल सराय से ये व्हाट्सएप संदेश सुनील कुमार सिंह का है। मुंदीचक भागलपुर के श्रोता हैं दिलीप कुमार सोनी। पोफाली यवतमाल से जयराम सिंगड़ कर दिशांत कुमार और अर्पिता की फरमाइश है। हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और परिवार के सदस्य हैं हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से। नया पारा भिरई पलारी से बसंत कुमार ठाकुर, सरोजबाई ठाकुर, इशराज ठाकुर और प्राची ठाकुर। मजनू का टीला दिल्ली से हमें सुन रहे हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर उमंग और आकांक्षा मलिक। गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी की फरमाइश लेवाई छत्तीसगढ़ से आई हुई है। अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके माता पिता, उनकी माता जी हैं राजमुनिया नारी पचदेवरा गाजीपुर से। हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा और मनोहर बाई बागरी, साथ में प्रभुलाल बागरी की फरमाइश सुदामा नगर रटलाई झालावाड़ राजस्थान से। आशीष कुमार हमारे श्रोता हैं महरेव जौनपुर के। ये व्हाट्सएप संदेश है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब का। सुमंत कुमार प्रजापति हथौज बलिया के हमारे श्रोता हैं। ये फरमाइश है गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर और राजेश राकेश और ऋषिता की कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से आई हुई। इम्तियाज अहमद बस्ती सरायमीर आजमगढ़ के श्रोता हैं। स्नेहा शुभांकर बॉबी सोनारपुरा वाराणसी से हमें सुन रहे हैं, शुक्रिया आपका। आदर्श नगर मलौट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ साइना और निवान शर्मा का भी शुक्रिया। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां की फरमाइश आई हुई है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। जलालाबाद वेस्ट से व्हाट्सएप संदेश सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता हुजा की है। कोटवा कपिलधारा सराय मोहाना वाराणसी के हमारे श्रोता हैं रतिना त्रिपाठी, राखी आर्या, एंद्री सारंग, ओमनाथ, शिवांग अदिति और उनकी माता जी निर्मला त्रिपाठी। पीपरलोट सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पॉल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो की फरमाइश जनकपुरी सहारनपुर से। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा की फरमाइश दत्तरेंगी से आई हुई है। और आप हैं बा हिमांशु अग्रहरी उमरपुर जौनपुर से। मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान, कृष्णा धीमान, राहुल धीमान, कोमल धीमान, शुभम धीमान, प्रियंका धीमान और परिवार के बाकी भी सदस्य। जयंत केशव उपाध्याय है नवादा जौनपुर से। पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह और नीति शाह। शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान और रितेश कुमार बाबा कुटीर रायगढ़ से। श्याम सुंदर यादव, ब्रिजेश यादव, सुरेंद्र यादव, रतनपाल यादव और ललन भाई की फरमाइश सारंग छपरा खड्डा कुशीनगर से आई हुई है। सोनवर्षा खानपुर चुनार से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष और आकर्ष राजभर। शाहकुटी मुगलसराय से सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल।

जायसवाल, हनुमानपुर मुगल सराय से डब्लू और माया जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा और पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा से विनोद और पिंकी जायसवाल, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, गीतू और निहारिका है पटियाला कनेरा मोहल्ला से, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली के श्रोता हैं, तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, चंडीगढ़ पंचकुला से राहुल खुराना, रचिता केशु खुराना, आनंद प्रसाद श्रीवास्तव हैं आईएमएस पीएचयू वाराणसी के हमारे श्रोता, राधेश्याम यादव नगदिलपुर गाजीपुर से आपकी फरमाइश आई है, सोनू बिंद है जौनपुर से, रमेश कुमार विश्वकर्मा, पूनम विश्वकर्मा, प्रियांशु, प्रीत, प्रांजल, मेहदीगंज राजा तालाब के श्रोता हैं, मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन और तुबा फरीन, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य और पंकज प्रमोद, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक हैं अनारकली बाजार जगराव से, गणेशपुर, शिवपुर, वाराणसी से संतोष कुमार, अशोक कुमार, मनोज कुमार और सनोज प्रजापति।

बहुत सारी बातें आपने लिखी हैं शिवा गोप जी, बहुत शुक्रिया आपका। और ये फरमाइश है चोचकपुर बाजार गाजीपुर से राम सकल चौधरी की। शंकर प्रसाद, आदर्श कुमार, स्नेहा कुमारी, श्वेता कुमारी, जागृति और रुद्र कुमार हैं घमहापुर गंगापुर वाराणसी के हमारे श्रोता। पंचकुला से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना और तुलसी मस्कीन की फरमाइश है। मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान और इसरार की फरमाइश दुल्हापुर से आई हुई है। काली माता मंदिर दिलदारनगर गांव से हैं किशुन सिंह कुशवाहा और छविनाथ शर्मा। भीमपुर भदोही से महेंद्र कुमार, सरिता, शानवी, आशीष, सतीश और नीतू। संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह और विकास सिंह हैं उमरिया मध्य प्रदेश के श्रोता। और अब आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश एक मिर्जापुरी कजरी। कलाकार हैं हीरालाल यादव और उनके साथी।

मिर्जापुरी कजरी आप सुन रहे थे। हीरालाल यादव और साथियों की आवाजें थीं और फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की। श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गोंड वाराणसी पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 के हमारे श्रोता हैं।

देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया की फरमाइश डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। अमितेश कुमार तिवारी है करनई बलिया के श्रोता और सावतपुर छत्तीसगढ़ से। ये फरमाइश ऋषि सेन रितेश और कंचन माही सेन की है। गणेशपुर वाराणसी से है शालिनी प्रजापति, आकांक्षा प्रजापति, रीमा, बबीता, निशा और पूनम। बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर आप सभी हैं। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से। श्याम मनोज पन्ने, मयंक और आशीष, वंदना आश्रम रोड मारुति कुंज भोंडसी गुरुग्राम से आपने लिखा है। थोड़ा सा कॉमा फुल स्टॉप लगा दें ताकि दो नाम आपस में न सटे। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु और संस्कृति। दिलदानगर गांव से किशुन सिंह कुशवाहा और छविनाथ शर्मा और हेमराज प्रजापति। अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा की फरमाइश नारी पचतेवरा डीह चौराहा गाजीपुर से आई है। निहारिका श्रीवास्तव चेतगंज वाराणसी से आप हमें सुन रही हैं, शुक्रिया आपका। चोचकपुर गाजीपुर से हैं भास्कर दुबे। कटरा मुबारकपुर से जावेद अख्तर अंसारी, सलीम जावेद और शाहिद हसन आजमी। चोचकपुर गाजीपुर से अच्छे लाल बिंद और राम सकल चौधरी। हेमराज प्रजापति हैं दिलदानगर गांव के हमारे श्रोता।

जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर हैं निमनाबाद जिंद से। लौगर ठाकुरामाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह और

राजदीप सिंह, सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव हैं कालेगांव जाफराबाद के श्रोता। ग्राम बहुरा पोस्ट दिलदार नगर गाजीपुर से ये संदेश अक्लूराम केदार राम और दीनाना सिंह का आया है। तो श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपके जो भी अब तक संदेश तमाम आए वो शामिल हो चुके हैं, और अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: singles champion at the Korea Masters tournament today. Ashmita defeated China's Han Qianshi. The shuttler recovered from losing the opening game to prevail 14-21, 21-14, 21-14 in 53 minutes. With this win, she claimed her first BWF title. She has also become the first Indian to win the Korea Masters, and it's a second consecutive women's singles title for India after Tanvi Sharma's victory at the Taipei Open last week. India's medal tally rises to 3 at the World Athletics Under-20 Championship in the United States. Basant Kumar Meghwal won a silver in high jump, while Shahnawaz Khan wins a bronze in the long jump today. In men's high jump, 19-year-old Meghwal cleared his personal best of 2.21 meter to win a silver medal. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country to celebrate patriotism and national unity. Home Minister Amit Shah says three new criminal laws introduced by government are aimed at providing time-bound justice through technology-driven mechanism. NIA arrests one accused in connection with seizure of huge consignment of illegal explosives in Mallapuram, Kerala. Fresh rains revive floods concerns in Odisha with water level rising in several rivers. Alert issued for very heavy rainfall of Uttarakhand and Chhattisgarh today. In China, more than 1,300 flights cancelled and over 3 lakh people relocated ahead of Typhoon Dolphin. And in badminton, Ashmita Chalia clinches her first BWF World Tour title at the Korea Masters 2026. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की अश्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: हर घर तिरंगा।
3: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार

0: धार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
1: It is indeed to pleasure to launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
2: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है, जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहाँ पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
0: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
3: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
0: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों

0: बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
1: सरकार की चार सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं राज्य के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सीबीआई और ईडी जांच, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस कांस्टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्र सरकार ने चार उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्तियों की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रूपये से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई। इससे तेज बारिश हो रही है, जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चाचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चाचियांग भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
0: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बस्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका

0: भी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता, जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

0: दोस्तों, एक ही फिल्म से लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त स्नेहा सिंह। जी हाँ, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस फिल्म की बात करने वाले हैं। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं आज फिल्म खलनायक की। खलनायक 1993 में बनी हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है और मुख्य किरदार संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ ने निभाए हैं। ये फिल्म आंखें के बाद साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी।
1: जी हाँ, मैं हूँ खलनायक।

इस फिल्म की कहानी की अगर संक्षेप में बात करूं तो बल्लू बलराम प्रसाद यानी के संजय दत्त एक गैंगस्टर है जिसे इंस्पेक्टर राम यानी के जैकी श्रॉफ ने गिरफ्तार किया है। बल्लू जेल से बच निकलता है जब राम अपनी प्रेमिका गंगा यानी के माधुरी दीक्षित से मिलने जाता है।

इस फिल्म की अगर संगीत की बात की जाए तो इस फिल्म के सारे गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखित और सारा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित था।

इस फिल्म के अगर अवार्ड्स की बात करें तो दो फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे खलनायक फिल्म को। बेस्ट प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक और ईला अरुण को मिला था। बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड सरोज खान को मिला था। छोटी फिल्म होने के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और अब इस अंतिम गीत के साथ अपनी रेडियो दोस्त स्नेहा सिंह को दीजिए इजाजत, एक ही फिल्म से के इस संगीतमय सफर को यही विराम देने के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म थी खलनायक और प्रस्तुति स्नेहा सिंह की। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स DTH DRM वेव्स OTT और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं। आज की हमारी पहली सभा संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, DTS DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस समय शाम के 5 बज रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में बच्चे सुने अपना कार्यक्रम बाल गोपाल।
1: चुन्नू मुन्नू जय हिंद। बच्चा लोगन, देखा जिंदगी में कौनो कौनो दिन ऐसन होला ना जवन की कबो भुलात नहीं आ ओकरे खातिर समय भी निकल जाला। देखा ओइसे अपने देश खातिर भी ऐसन ऐसन दिन हौ जौने के भुलायल ना जा सकेला। ओकर याद न हमेशा बनल रहेला और ओकर असर देश के हर मनई पर भी पड़ेला। बाल गोपाल, हम जानत है कि तू लोगन बुझ गईला जा कि हम कौने दिना के बारे में बतियावत है। अरे बाल गोपाल लोगन, बिल्कुल सही बुझला हजा। आज हौ खास दिन और उ दिन हौ भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। आ तुही लोग तो बतावत रला कि एके अगस्त क्रांति के नाम से भी जानल जाला, है ना? तो देखा आजू के दिना माने 9 अगस्त 1942 के दिना महात्मा गांधी जी बम्बई के ग्वालिया टैंक नाम जौन रहो मैदान का वहाँ लोगन के जुटौले रहना। लोगन के जुटावे के पीछे यह उद्देश्य रह उनकर कि अंग्रेजी शासन से, अंग्रेजी गुलामी से अपने देश के आज़ादी दिवावल जाओ जल्दी से जल्दी, और अंग्रेजी सरकार के भारत छोड़े खातिर लचार कयल जा सके। देखा यही आंदोलन में एक नारा तू लोग सुन ले हुआ ना, करो या मरो। तो एकर जौन मंत्र हो ई जौन नारा हो ना गांधी जी यही आंदोलन में दिले रहना। आ जब आंदोलन का शुरुआत भयल ना बच्चा लोगन तो गांधी जी और कुछ जौन खास बड़ बड़का नेता रहा उनके अंग्रेजी शासन जौन है जेल में डाल दिलस। तो ऐसने में आम जनता और युवा लोग और जौन महिला लोगन हैं उ लोगन आगे बढ़ के ये आंदोलन का जौन संचालन है ओकर डोरी न अपने हाथे में ले लेना और ये आंदोलन के आगे बढ़ावत गई ना। और धीरे धीरे ये आंदोलन आम जनता का आंदोलन हो गल हो वही का देन हो कि आज हम लोगन आज़ाद है और आज़ादी से अपन हर काम करत है, है ना? तो देखा आजू का दिना जौन मनावल जाता ना ओकरे पीछे यही उद्देश्य है कि वो समय जौन देश के लिए त्याग कई ना बलिदान कई ना क्रांतिकारी लोगन उनके या बलिदान के उनके देशभक्ति के हम लोगन हमेशा याद रखी और अपने अपने काम से ये समय में जौन है देश के तरक्की खातिर हमेशा अपन योगदान देहत रही, है ना? देखा बच्चा लोगन, हम तो कहीं ना कि देखा ये जौन आज़ादी इतना आसानी से मिलल नहीं हो। अब भारत छोड़ो आंदोलन जौन है ना ओकर एक खास कड़ी कह सकीला जा, है ना? तो बाल गोपाल देखा अपने जौन है अपने ये कार्यक्रम में भी वार्ता यही से जुड़ल लेके आयल है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम कार एकर एक खास जानकारी और वार्ताकार हुआ डॉक्टर हरीश कुमार जी। तो तू लोगन ई वार्ता सुना ध्यान लगा के।
2: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल सत्ता परिवर्तन की एक आकस्मिक या एकल राजनीतिक घटना नहीं थी बल्कि यह एक शताब्दी से अधिक समय तक चलने वाला एक बहुआयामी वैचारिक आर्थिक सांस्कृतिक और सशस्त्र संघर्ष था। भारत में ब्रिटिश शासन की नींव केवल सैन्य श्रेष्ठता पर आधारित नहीं थी बल्कि यह भारत के व्यवस्थित आर्थिक शोषण और औपनिवेशिक संरचनाओं पर टिकी थी। 18वीं शताब्दी के मध्य से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों को नष्ट करना शुरू कर दिया था। इस आर्थिक विनाश और वैज्ञानिक तथा वैचारिक आधार पर चुनौती देने का अभूतपूर्व कार्य दादा भाई नौरोजी ने अपने धन निष्कासन सिद्धांत के माध्यम से किया था। नौरोजी ने 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन के समक्ष इग्लैंड्स डेप्थ टू इंडिया नामक अपने शोध पत्र में पहली बार यह अवधारणा प्रस्तुत की थी। बाद में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक

पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो 1901 में छपी, इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत का मूल तर्क यह था कि भारत का धन और संसाधन लगातार ब्रिटेन की ओर प्रवाहित हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कोई आनुपातिक या न्यायसंगत आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा था। यह स्थिति ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों से भिन्न थी, जहां विदेशी पूंजी का निवेश किया गया था। इसके विपरीत भारत को अपने स्वयं के संसाधनों का विकास करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उसका अधिशेष ब्रिटेन भेज दिया जाता था। नौरोजी का अनुमान था कि भारत को सालाना 30 मिलियन पाउंड से अधिक का नुकसान हो रहा था, जिससे भारत में पूंजी निर्माण अवरुद्ध हो गया और देश भयानक गरीबी और अकालों के दुष्चक्र में फंस गया। धन निष्कासन के इस सिद्धांत ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक अकाट्य आर्थिक आधार प्रदान किया। नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे और आरसी दत्त जैसे विचारकों ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की गरीबी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि औपनिवेशिक संरचना का सीधा परिणाम थी। इस बौद्धिक जागरण का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि भारतीय राजनीति की विमर्श केवल नैतिक और राजनीतिक सुधारों की मांग से आगे बढ़कर साम्राज्यवादी आर्थिक ढांचे को उखाड़ फेंकने की दिशा में मुड़ गया, जिसने भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलनों जैसे स्वदेशी आंदोलन आदि के लिए एक वैचारिक उत्प्रेरण का कार्य किया। आर्थिक शोषण, रियासतों के विलय की आक्रामक नीतियों और सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप ने भारतीय समाज के हर वर्ग में गहरा असंतोष पैदा कर दिया था। यह असंतोष 1857 में एक महान सैन्य और नागरिक विद्रोह के रूप में फूट पड़ा। इसका तात्कालिक कारण सैनिकों में चर्बी वाले कारतूस को लेकर फैला आक्रोश था, परंतु इसका वास्तविक आधार वह संचित क्रोध था जो दशकों के ब्रिटिश दमन से उत्पन्न हुआ था। वर्तमान उत्तर प्रदेश, तत्कालीन संयुक्त प्रांत या आप कह सकते हैं अवध प्रांत, इस महासंग्राम का प्रमुख केंद्र था। विद्रोह के विस्तार के साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों के नेताओं ने इसका नेतृत्व संभाला। वाराणसी में जन्मी मणिकर्णिका, जो बाद में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से विश्वविख्यात हुई, ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना के खिलाफ असाधारण वीरता का परिचय दिया था। 1857 का विद्रोह भले ही ब्रिटिश सेना की तकनीकी श्रेष्ठता और कुछ रियासतों के ब्रिटिश समर्थन के कारण कुचल दिया गया हो, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हुए। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया और सत्ता सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में चली गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि संग्राम ने भविष्य के आंदोलनों के लिए राष्ट्रवाद की भावना का बीज सबके अंदर बो दिया था। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन परिपक्व हुआ, भारतीय नेताओं ने यह महसूस किया कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं को मानसिक रूप से गुलाम बनाना था। 1920 में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन का एक प्रमुख रचनात्मक कार्यक्रम यह था कि छात्रों को सरकारी और अर्ध सरकारी शैक्षणिक संस्थानों से निकालकर राष्ट्रीय शिक्षा से जोड़ा जाए। इसी वैचारिक पृष्ठभूमि में स्वदेशी शिक्षा के विचार ने मूर्त रूप लेना शुरू किया। वाराणसी के छात्रों ने ईश्वर गंगी में एक गांधी आश्रम की स्थापना की और एक स्वतंत्र राष्ट्रीय संस्थान शुरू करने की योजना बनाई। 10 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने वाराणसी में काशी विद्यापीठ का उद्घाटन किया। इस संस्थान की स्थापना में राष्ट्ररत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त और भारत रत्न डॉ भगवान दास का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था। बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने 1913-14 में अपनी जापान यात्रा के दौरान वहां के स्वतंत्र शैक्षणिक संस्थानों से प्रेरणा ली थी। संस्थान के प्रशासन को राजनीतिक हस्तक्षेप और सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए एक निरीक्षण सभा का गठन किया गया। डॉक्टर भगवान दास काशी विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने।

0: यहाँ शिक्षा का माध्यम हिंदी अर्थात देवनागरी लिपि रखा गया और सांस्कृतिक शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया। काशी विद्यापीठ राष्ट्रवादियों और समाजवादियों के लिए एक वैचारिक प्रयोगशाला बन गया। इसके प्रमुख सदस्यों में आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य जे बी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू श्री प्रकाश और डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे शीर्ष विद्वान शामिल थे। 1930, 1932, 40 और 42 के आंदोलनों के दौरान विद्यापीठ के लगभग सभी छात्रों और शिक्षकों ने संघर्ष में भाग लिया और जेल गए, जिसके कारण ब्रिटिश पुलिस ने कई बार संस्था को बंद कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता ने ब्रिटिश अत्याचारों को उजागर करने और जनता को संगठित करने में एक अस्त्र का काम किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने हड़तालों में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप उनको उनका जीवन सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति समर्पित था। 1931 में कानपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान शांति बहाल करने के प्रयास में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे अनेक योद्धा रहे जो स्वाधीनता संघर्ष में लगातार संघर्ष रहे। अंततः हम कह सकते हैं कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम अनगिनत धाराओं, धन निष्कासन के सैद्धांतिक विरोध, काशी विद्यापीठ के बौद्धिक बहिष्कार, काकोरी के सशस्त्र संघर्ष, बलिया की समानांतर सरकार और नौसेना के सैन्य विद्रोहों के अभूतपूर्व संगम का परिणाम था, जिसने 1947 में एक संप्रभु भारत की नींव रखी।
1: देखला बाल गोपाल लोगन कितना नीक वार्ता रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम कैसे भयल और कैसे हम लोग आजाद भली डॉक्टर हरीश कुमार का। और कहीं ना कि जौन अपन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुन वो जहाँ भी हुई हैं बस तू लोगन से देखा यह पूछत हुई हैं।

0: बच्चा लोगन देखा बातचीत करा तू लोगन से, समय हो गल तू लोग से विदा लेवे का, तो बस यह कहा के है कि देखा आजादी बड़ी त्याग बलिदान से मिलल है, तो अपन जो राष्ट्रीय प्रतीक हुअन ओकर तू लोग हमेशा सम्मान करिया, और देखा बखत हो गल अब चले का, तो चुन्नु मुन्नु जय हिंद।
1: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5:15 हो रहे हैं। युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: डूबता हुआ सूरज कभी हार का संदेश नहीं देता। वह हर शाम यह विश्वास दिलाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है।
1: बिल्कुल, और रविवार की यह शाम भी हमें यही सिखाती है कि बीते सप्ताह की कमियों को पीछे छोड़कर नए सप्ताह पूरे आत्मविश्वास और नई उम्मीदों के साथ की जाए।
0: क्योंकि जीवन का सबसे सुंदर सफर वही है जहां हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाए और हर नया सप्ताह हमें स्वयं का एक बेहतर रूप बनने की प्रेरणा दे।
1: तो आइए सुकून भरी शाम में कुछ प्रेरणादायक विचार, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों और मधुर संगीत के साथ बिताते हैं कुछ यादगार पल।
0: इन्हीं सकारात्मक भावों के साथ आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ ऋतिका
1: और मैं हूँ स्नेहा।
0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, और चलिए करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस गीत के साथ।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
6: सुनो ना।
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे।
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
8: 0542227658।
6: ओ
5: 0542227658।
6: लो अभी फोन लगाता हूँ।
5: 0542227658।
9: दोस्तों इतिहास केवल बीते हुए समय का आईना नहीं होता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख भी छोड़ जाता है। आज का दिन भी हमें ऐसे ही दो महत्वपूर्ण प्रसंगों की याद दिलाता है, एक जो हमें शांति का संदेश देता है और दूसरा जो हमें देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देता है।
10: बिल्कुल नेहा, हर वर्ष 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1945 में इसी दिन जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। इस त्रासदी में हजारों लोगों ने अपने प्राण गंवाए और इसके दुष्प्रभाव वर्षों तक लाखों लोगों ने झेले।
9: दोस्तों नागासाकी दिवस हमें यह सोचने का अवसर देता है कि युद्ध और हिंसा कभी भी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकते। विज्ञान और तकनीक का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना है, न कि विनाश का कारण बनना है।
10: यही कारण है कि आज का दिन पूरी दुनिया को शांति, संवाद और मानवता का संदेश देता है। जब देश और समाज आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।
9: बिल्कुल दोस्तों, 9 अगस्त का यह दिन भारत के इतिहास में भी स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। आज ही के दिन वर्ष 1925 में हमारे क्रांतिकारियों ने प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया था।
10: इस साहसिक अभियान का उद्देश्य सरकारी खजाने को अपने कब्जे में लेकर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संसाधन जुटाना था। इस योजना के नेतृत्व पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था और इसमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लोहड़ी, ठाकुर रोशन सिंह सहित उनके क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
9: दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि ये युवाओं के लिए अदम्य साहस, देश प्रेम और आजादी के लिए हर त्याग करने के संकल्प का प्रतीक बन गया। इन वीरों ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना मातृभूमि की स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखा।
10: नागासाकी दिवस हमें शांति का महत्व सिखाता है, वहीं काकोरी ट्रेन एक्शन हमें यह प्रेरणा देता है कि देश के प्रति समर्पण, साहस और कर्तव्य की भावना किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है।
9: दोस्तों आइए आज हम यह संकल्प लें कि अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे और शांति, एकता तथा मानवता के मूल्यों को सदैव आगे बढ़ाएंगे।
10: और आज का जीवन मंत्र है, इतिहास हमें केवल घटनाएं नहीं बताता बल्कि यह भी सिखाता है कि साहस और शांति दोनों ही एक उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। दोस्तों अब समय है कार्यक्रम के उस पड़ाव का जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है।
9: बिल्कुल दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आप सभी साथी बराबर हमें हमारे कार्यक्रम में भेजते रहते हैं और उसके साथ में विनर भी बनते रहते हैं। तो चलिए इसी नियम को आगे बढ़ाते हुए जानते

0: हमारा कल का प्रश्न क्या है और किन साथियों ने हमें सही जवाब देकर ना विनर बनकर वो आज हमारे कार्यक्रम में सामने आए हैं। तो हमारा कल का प्रश्न था दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है, जिसका सही उत्तर है 22 जुलाई। और जिन साथियों ने इसका सही उत्तर हमें भेजा है उनके नाम है
1: ग्राम पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, चंदा चंदौली से, अंकेश कुमार सिंह नकहरा चुनार मिर्जापुर से, प्रवीर चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल साहिल, भारती बघेल लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई और दिव्यांश नागनपुरे, रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, ग्राम खैगाव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश नंदिनी हर्षिता और ममता बाई वर्मा, रवि मौर्य सिमरौल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से।
0: तो आप सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई इसी तरह से हमें अपने जवाब भेजते रहिए और हमारे कार्यक्रम में विनर्स भी बनते रहिए। हमें आपके जवाब का इसी तरह इंतज़ार बना रहता है और ये भी रहता है कि हमारे कौन से साथी हैं जो हमें सही जवाब देकर विनर बने हैं और उनका नाम घोषित करने में ना रितिका सच में यहाँ बहुत खुशी मिलती है ना, और साथियों का भी उत्साह बढ़ता है कि उनके नाम हमारे कार्यक्रम में सही जवाब देने के लिए बताए जा रहे हैं। तो इसी तरह से जागरूक बनते रहिए और हमारे प्रश्नों का सही जवाब देते रहिए। बाकी मुझे पता है कि आपको इंतजार है हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का, तो हाँ फटाफट से डायरी और पेन लेके रेडी हो जाइए क्योंकि जल्द ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम इसका राज भी आपके सामने खोलने वाले हैं। तब तक चलिए इन विनर्स के लिए ये गाना सुन लेते हैं।

0: तो दोस्तों इस रॉकिंग वाले सच में धमाकेदार गाने के बाद चलिए अब बारी आ गई है हमारे कार्यक्रम को जो रॉकिंग बनाने वाला है। हाँ जी, आज संडे का दिन है, वीकेंड का दिन है, और आप जैसा कि जानते हैं कि वीकेंड पर हम हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए स्पेशल ले करके अपने कार्यक्रम में हाजिर रहते हैं। तो भैया, रॉकिंग बनाने के लिए आज भी हम कुछ स्पेशल ले करके आए हैं। तो आज रॉकिंग ये होने वाला है, यानी कि आज का जो खास जानकारी से भरा जो हमारा सेगमेंट होने वाला है वो ये कि आज संडे का दिन है और हम गए थे विद्यापीठ कैंपस, जहां पर हमने कुछ छात्रों से बातचीत की और उनसे उस विषय से जुड़ी हुई करियर में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम ऑप्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में भरपूर जानकारियां ली। और वो बातचीत, चलिए अब मौका आ गया है कार्यक्रम में सुनने का, तो चलिए फटाफट से वो सारी बातचीत अब सुन लेते हैं। हाँ जी नमस्ते, मेरा नाम नेहा है। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनमोल पांडे है
0: अनमोल, क्या करती हैं आप?
1: मैम। मैं अभी जो है वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से MA संस्कृत की छात्र हूँ।
0: बहुत अच्छा लगा जान करके कि भाई संस्कृत जैसे विषय से, जो कि आमतौर पर लोग इतना कठिन मानते हैं, उसकी जो वर्तनी है, जो शैली है, उससे लोग भागते हैं, और आप उससे मास्टर्स कर रही हैं। अनमोल, मुझे ये बताइए कि संस्कृत जैसे विषय से आपने कैसे सोचा कि इसमें हमें मास्टर्स करना चाहिए और ये विषय आपने ऑप्ट किया?
1: संस्कृत में MA करने से मेरा एक विचारणीय निर्णय यह था कि केवल यह एक डिग्री नहीं है, यह हमारे भारत की परंपरा, दर्शन और साहित्य है, तो इसे हमें सीखना चाहिए। सीखने का एक माध्यम है, अगर हम इसे अच्छे से सीख लेते हैं तो अपने साहित्य को, अपने दर्शन को हम समझ पाएंगे। और संस्कृत से MA करने के साथ साथ जो है मेरा व्यवहारिक, शैक्षणिक और एक तरीके से मेरा एक व्यक्तिगत निर्णय था कि मैं संस्कृत से MA करूं। और हाल फिलहाल में देखा जाए तो जो हमारा वर्तमान का समय चल रहा है, तो संस्कृत में एक मजबूत करियर और रोजगार के अवसर जो है उभरते हुए दिख रहे हैं। और शिक्षण क्षेत्र में भी अगर देखा जाए तो स्कूल में TGT, PGT और कॉलेज और विश्वविद्यालयों में संस्कृत शिक्षण शिक्षकों की जो है भारी मात्रा में निरंतर जो है मांग जो है बढ़ती जा रही है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं MA कर लेती हूँ संस्कृत से, तो आगे जो है UGC नेट को उत्तीर्ण करने के बाद शोध या प्रोफेसर बनने की दिशा में आगे बढ़ूंगी। और शुरुआती दौर की बात की जाए तो जब मैं कक्षा 12 में थी तभी से मुझे संस्कृत के प्रति बहुत ही ज्यादा रुचि थी। और फिर जब मैं ग्रेजुएशन में पहुंची तो मैंने संस्कृत को जो है वो एक अपना कोर विषय के रूप में जो है वो चुन लिया। और इसी के साथ साथ मैंने अपना BEd भी जो है वो कंप्लीट कर लिया कि आगे जो शिक्षण क्षेत्र में जो अवसर आए मैं उन्हें छोड़ू ना, बल्कि उसमें अपना जो है वो 100% प्रयास करती रहूं कि मुझे अवसर मिले अध्ययन अध्यापन करवाने का। और इसी के साथ साथ मैंने MA में भी जो है इस साल जो है एडमिशन ले लिया है।
0: क्या बात है अनमोल, आपकी बातें सुन करके तो सच में मेरे अंदर भी विषय को लेकर के बहुत सारी रुचि जाग गई है और बहुत सारी उत्सुकता है। ये

0: आपके दिमाग में सबसे पहले कब आया था कि हाँ मुझे ये विषय लेकर के पढ़ना है, जैसे इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली?
1: मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैम, जैसे कि मैंने बताया कि मैं ब्राह्मण परिवार से जो है वो मेरी बिलोंगिंग है, तो शुरू से ही परिवार में जो है वो धार्मिक कर्मकांड को देखते आई हूँ। और मंत्रों के उच्चारण जब होते हैं तो एक कह सकते हैं कि जो मेरा दिमाग है वो एकदम पीस में चला जाता है। तो जब, और मैंने बताया कि 12, जब कक्षा 12

0: मैंने बताया कि 12 जब कक्षा 12 में मैं थी तभी से मेरा रुचि जो है इसके प्रति धीरे धीरे जो लगाव जो है वो बढ़ता गया। तो मैंने सोचा कि जब मेरी रुचि इस विषय में है तो क्यों ना इस रुचि को जो है वो कुछ बड़ा स्थान दिया जाए, अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया जाए। तो मैंने जो है वो बीए में किया और अब मैं चाहती हूँ कि या तो मैं शोध में जाऊं, संस्कृत को और विस्तार से पढ़ूं, या फिर मैंने जैसे बोला कि शिक्षा क्षेत्र में जो है वो विद्यार्थियों को पढ़ाने का मुझे अवसर
1: जरूरत
0: मिले।
1: है, जो भावी आने वाला हमारा जो जनरेशन है हमारी, उनको नीड है, तो उसके लिए भी आप कुछ करना चाह रही हैं। एक और सवाल मैं आपसे इसी में पूछना चाहूंगी कि जैसे अगर मैं कोई छात्र है और शुरुआती दौर में वो संस्कृत लेकर के पढ़ना चाह रहा है, तो किस तरीके से उसे शुरुआत करनी चाहिए और आगे वो इस विषय को लेकर के क्या क्या अपने लिए करियर सोच सोच सकता है और क्या चीज़ें उसके लिए बेहतर ऐसी हैं जो वो ऑप्ट करके आगे कर सकता है।
0: तरफ से उस विद्यार्थी को यही सलाह रहेगी कि अगर उसकी रुचि संस्कृत विषय में बहुत है तो वो अपना पूरा मतलब पूर्ण प्रयास करे कि उस संस्कृत भाषा को समझ कर पढ़े और उसमें अपने रुचि को जो है वो घटने ना दे। सबसे पहली बात की जो इतना क्लिष्ट विषय होने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो है वो रुचि जो है घटने लगती है, तो वो घटने ना दे और निरंतर प्रयास करते रहे। और इसमें जो है अगर वो बहुत ही अच्छे से अगर पढ़ता है तो फील्ड की अगर स्कोप की बात करें तो संस्कृत में बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं। जैसे शैक्षणिक क्षेत्र में देख लिया जाए तो पीजीटी टीजीटी को देखा जाए, या फिर प्राध्यापक बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा जो है अनुवाद में, जैसे पांडुलिपियों के अनुवाद जो किए जाते हैं, तो अगर एक शोधकर्ता के रूप में वो पांडुलिपियों का अध्ययन करे, ठीक है, तो ये सारी जो है वो रोजगार की अपॉर्चुनिटी उनके लिए जो है वो खुली पड़ी हुई है। सिविल सर्विसेज जैसी प्रतियोगिताएं जो होती हैं उसमें भी जो है वो लाभ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं अपने ऑप्शनल विषय के रूप में और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखा जाए तो ये हमारा मूल ज्ञान भी है। अगर बहुत लोगों को जो है वो रुचि होता है कि हम जो है वो अपने मूल ज्ञान को प्राप्त करें, अपने वेदों को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें, दर्शन को पढ़ें, आयुर्वेद को, योग का ज्ञान लें, जो कि हमें पता है कि मैक्सिमम जो ये किताबें हैं वो संस्कृत भाषा में है, और कोई दूसरा अगर हमें अनुवाद करके बताता है तो उनके अनुवाद को तो हम समझ पाएंगे, लेकिन जो उनके उसमें छुपी भावनाएं हैं वो जो है वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो अगर उन भावनाओं को जो अगर हमें समझना है तो मूल रूप से हमें इसके ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी। संस्कृत को जो है वो परंपरागत रूप से जो है वो ग्रहण करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो भावनाओं के साथ साथ जो है हम संस्कृत को, अपने शास्त्रों को, अपने उपनिषदों को जो है वो समझ पाएंगे।
1: समझ पाएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात कही आपने। और इसी के साथ एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे संस्कृत पढ़ने के दौरान अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं उच्चारण में बड़ी दिक्कत होती है, और जो छात्र हैं वो तो अभी समझ लीजिए शुरुआती दौर में है, उन्हें तो कोई ज्ञान नहीं है। तो उच्चारण के लिए और सही वर्तनी के लिए क्या चीज़ें हैं जो एक अभ्यास के तौर पर छात्र कर सकते हैं और इससे ताकि उनका जो इस विषय पर कमांड कह सकते हैं वो अच्छा बने, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
0: अगर उच्चारण की बात की जाए तो संस्कृत एक कठिन भाषा है, लेकिन सभी भाषाओं की बात की जाए, भारत में जितनी भी भाषाएं हैं मूलतः सभी भाषाओं को हमें जो है वो निरंतर जब हम उसे पढ़ेंगे, उसमें लगाव लाएंगे, तो वो जो है वो हमारे जो है ऑटोमेटिक हमारे अंदर जो है वो उतर जाएगी कि हमें कैसे उसका उच्चारण करना है। सबसे सीधी बात है कि अगर हमें संस्कृत पढ़ना है तो हमें उसके प्रति रुचि लानी पड़ेगी, और रुचि के साथ साथ निरंतर उसका अध्ययन अध्यापन करेंगे तो हम जो है वो संस्कृत में उसके उच्चारण से एकदम नहीं डरेंगे, जैसे हम लोग हिंदी इंग्लिश मैक्सिमम रीडिंग करते हैं और डरते नहीं है, उसी प्रकार से इस संस्कृत के उच्चारण के डर से भी हमें मुक्ति मिल जाएगी।
1: बहुत सही शब्दों में आपने बहुत सही बात कही, और मुझे सच में आपसे बात करके अनमोल और ढेर सारी जानकारी जो आपने इस विषय से जुड़ी हुई थी उसे सुन करके भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ जानने को भी मिला। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस विषय में बहुत अच्छा करें और जो आप चाह रही हैं उस विषय में आपको ज़रूर प्राप्त हो। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू मैम।
1: चलिए मिलते हैं अब हमारे दूसरे साथी से और उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो इस कैंपस में क्या करते हैं और वो अपने लिए क्या फ्यूचर इस कैंपस से जोड़ते हुए सोच रहे हैं आगे। तो सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम प्रशांत सिंह है।
1: प्रशांत, क्या कर रहे हैं आप इस टाइम विद्यापीठ कैंपस से?
2: अभी मैं करेंटली महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ से एमएससी इन जियोलॉजी का कोर्स कर रहा हूँ।
1: क्या बात है, मतलब आप भी मास्टर्स के स्टूडेंट हैं और
2: यस
1: बायोलॉजी, फिर बायो

0: का दो डिवीजन, बॉटनी और जूलॉजी, और इसमें फिर हायर स्टडीज के लिए सोचना, कहाँ से आया ये ख्याल आपके दिमाग में?
1: एक्चुअली मैंने एमएससी जियोलॉजी का जो मैंने सेलेक्ट किया, एक मेरे रिलेटिव हैं तो करेंटली अभी वो साइंटिफिक ऑफिसर के पोस्ट पे है इसरो में। तो जब मैंने पता किया तो इसके लिए मुझे पता लगा कि अगर आप एमएससी इन जियोलॉजी करते हो तो ऐसे पोस्ट पे आप इजली जा सकते हो, अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप उसमें, और उसके लिए अच्छी सैलरी पैकेज भी उसमें रहती है और काफी रिस्पेक्टेड जॉब है वो।
0: ओके, मतलब आपने पढ़ाई मास्टर्स की ऐसे ही नहीं चूज की है, बल्कि वास्तव में लाइफ में भी आप मास्टरी हासिल करना चाह रहे हैं और बहुत ही अच्छा अचीव करना चाह रहे हैं, इसलिए इस माइंडसेट से आपने वर्क करना शुरू किया है। तो शुरुआती दौर में प्रशांत, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है वैसे?
1: मैंने 12th में पीसीबी लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और उसके बाद मैंने बीएससी किया जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से। और करेंटली जब मुझे मास्टर्स करने थे तो मेरे पास तीन ऑप्शन थे कि मैं एमएससी बॉटनी करूँगी, जियोलॉजी करूँगी, केमिस्ट्री करूँ। तो
0: ओके,
1: उसके लिए मैंने काफी सर्च किया कि किसमें मैं अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो अपनी एलिजिबिलिटी है या जिसमें मेरी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए कौन सी पोस्ट ठीक रहेगी। तो देन मैंने, मेरे ख्याल में दो दिमाग में आया ब्रेन में कि मैं बॉटनी लूँ कि जूलॉजी लूँ। फिर मैंने
0: ओके,
1: जूलॉजी के कैरियर स्कोप्स को ढूंढना चालू किया तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें जूलॉजी में काफी अच्छे अच्छे कोई कैरियर स्कोप है, तो मैंने इसलिए सेलेक्ट किया इसको।
0: ओके ओके ओके, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ में आपने इस विषय को चूज किया है। अच्छा, अब जैसे ये तो हो गई आपकी बात, अब अगर मैं हम आने वाले हमारे भावी जो छात्र हैं उनके बारे में बातचीत करें, तो उनके लिए क्या क्या जियोलॉजी में, एक तो आपने जो अपॉर्चुनिटी बताई वो तो मान लीजिए बेस्ट है, उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो बेस्ट ऑप्शन है, बट और भी अगर मैं अदर हम कुछ प्लान करें, और जो आने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस सब्जेक्ट को लेकर के आगे करना चाह रहे हैं कुछ इस विषय में, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें किस तरह से फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए इस विषय को लेकर कर?
1: ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट एमएससी जियोलॉजी कर रहा है तो आप उसको कंप्लीट करने के बाद आप वाइल्ड कंजर्वेशन में एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर अप्लाई कर सकते हैं, एंड वहां पे एज अ फील्ड वर्कर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है यूपीएससी के थ्रू आईएफएस में जाकर जा सकते हैं, और इसके अलावा अदर्स भी ऑप्शन है आपके पास, जैसे आप फिशरी इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ आप तो
0: ओके,
1: मैंने ये भी बताया कि आप ICMR या DRDO जैसे इंस्टीट्यूट में एक जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट आती है तो वो भी आप कर सकते हैं।
0: क्या
1: इसके
0: बात
1: अलावा
0: है,
1: जो अगर आप ये अगर यहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो आप टीचिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 11th 12th के जो टीचिंग टीचर्स होते हैं जो पीजीटी के टीचर्स होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि आपको बीएड के साथ साथ आपको एमएससी इन जूलॉजी या और बॉटनी करना ही होता है। तो जब आप वो कर लेंगे तभी आप वहाँ पे 11th 12th के, जिसको हम लोग पीजीटी टीचर्स कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, तो
0: बिल्कुल
1: उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको प्रोफेसर बनना है या लेक्चरर बनना है तो इसके लिए आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके पीएचडी करने के बाद वहां पे एज अ गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ प्रोफेसर नियुक्त हो सकते
0: नियुक्त
1: हैं,
0: हो सकते
1: जिसमें
0: हैं।
1: काफी अच्छे अच्छे स्कोप है। बस हाँ, इसमें ये है चीजें कि आपको केवल जूलॉजी या बॉटनी कर रहे हैं मास्टर्स में तो आपने आपको उसके ऊपर कंप्लीट डेडिकेशन अपना रखना है, उसमें हार्ड वर्क करेंगे तभी स्कोप आपको जो सोचे अच्छा वही मिलेगा।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने, और सच में एकदम सटीक शब्दों में आपने बहुत ही सही तरीके से और सरल तरीके से सारी चीज़ों को समझाया। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी सुनने वाले श्रोता हैं उनको ज़रूर मदद मिलेगी ये सारी जानकारी सुन करके। और प्रशांत, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आपका भी इस विषय को लेकर के बहुत अच्छा भविष्य हो और आप बहुत आगे जाएं। आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा,
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रविवार के दिन वाकई हम आपके लिए कोई ना कोई रोचक एक जानकारी लेकर के आते हैं जो आपके कहीं ना कहीं करियर और रोजगार से जुड़ी हुई रहती है ना? तो अभी आपने सुनी ये सारी बातचीत, अब चलिए इसी के साथ सुनते सुनते अब एक गीत भी हम सुन लेते हैं और थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं।

0: अब समय है हमारे नॉलेज सेगमेंट यानी यू डायरी का, जहां हर दिन हम सीखते हैं एक नया हिंदी और एक अंग्रेजी शब्द। आज का हिंदी शब्द है सनिकश, जिसका अर्थ है निकटता, समीपता या किसी संपर्क में होना। इसको वाक्य में ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे लोगों का सनिकश हमारे व्यक्तित्व और विचारों को सकारात्मक दिशा देता है।
1: और दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का अंग्रेजी का शब्द है इंसाइसिव, जिसका अर्थ होता है पैनी समझ वाला, सटीक और प्रभावशाली, बिल्कुल हमारे रितिका की तरह, है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों, अब चलिए इसका वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। तो इसका वाक्य प्रयोग जो होगा वो होगा, हर इंसाइसिव ऑब्जर्वेशंस हेल्प्ड एवरीवन अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर।
0: यानी अच्छे लोगों और सकारात्मक विचारों का सनिकर्ष हमारी सोच को भी इंसाइसिव यानी अधिक स्पष्ट, गहरी और प्रभावशाली बनाता है।
1: तो दोस्तों, अब जैसा कि हमारा कार्यक्रम भी प्रभावशाली बनता है, क्योंकि उसमें हर रोज हम लाते हैं आपके लिए रोजगार सूची।

0: ना, और आप इसे नोट भी करते हैं मुझे पता है ना, तो जल्दी से अगर मैं नोट करने के लिए तैयारी नहीं है तो पेन और कॉपी के साथ रेडी हो जाइए, क्योंकि आज की रोजगार सूचना हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारी आज की रोजगार सूचना है,
1: सबसे पहले बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की। इसरो ने असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 16 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
0: वहीं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने विभिन्न ग्रुप ए और बी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 14 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने ये दोनों रोजगार सूचना कहीं ना कहीं नोट कर ली होगी, और उसके साथ में इसकी तैयारी के लिए भी आपने मन बना लिया होगा, और जल्दी से फटाफट से इसकी तैयारी के लिए अपना तैयारियां शुरू कर दीजिए, और आने वाला जो टाइम है आशा करते हैं कि आपके लिए अच्छा होगा। चलिए इसी के साथ साथ, जैसे कि हम अपने कार्यक्रम में विश्व घटना चक्र यानी जो इधर बीच की जो भी घटनाएं हैं, जो वास्तव में जानने लायक हैं और जो चर्चा में हैं, उसके बारे में हम हमेशा अपने कार्यक्रम में चर्चा करते रहते हैं। तो चलिए, बारी आ गई है। आपको बता दें दोस्तों कि पहली खबर ये है कि भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जिम्मेदार और सुरक्षित इस्तेमाल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में AI के सुरक्षित, पारदर्शी और लोगों के हित में इस्तेमाल के लिए SAHI यानी स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया और BODH यानी बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI जैसी पहलें शुरू की हैं, और इन पहलों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली AI समाधानों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सही तरीके से परखा जा सके
1: और तकनीक का लाभ लोगों तक जिम्मेदारी के साथ पहुंचाया जा सके। सरकार के अनुसार AI का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं की अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
0: तो दोस्तों, ये था हमारा इधर बीच की चर्चे वाली ये एक छोटी सी खबर थी जो आपको बताना बहुत जरूरी था। तो अब चलिए, इसी के साथ साथ एक और चीज जरूरी है, वो है गीतों का सफर। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं।

0: you were boring.
1: Please, grow up.
2: तो दोस्तों इस ट्रैक के साथ चलिए, अब हमारा जाने का भी समय पास आ रहा है और हमारे स्टूडियो की क्लॉक ना अब ये टिकटिकी करते हुए हमें इशारा दे रही है कि यहां से टाटा बाय बाय कर लिया जाए। लेकिन जाते जाते आप जानते हैं कि हम एक ना एक कोई जानकारी एक आपको देते हुए जाते हैं। तो हमारी आज की जो जानकारी है वो ये है कि ये जो हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना, नहीं सिर्फ अपने बारे में नहीं, हमारे आस पास के लोगों के बारे में भी सोचना है, यानी सोशल वर्क भी इम्पॉर्टेंट है ना ऋतिका। और जैसा कि ऋतिका मुझे हमेशा नजर आती है अपने कामों में उलझी हुई और अपने बारे में सोचती हुई और ज्यादा से ज्यादा अपने पर फोकस करती हुई, तो
3: नहीं नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी एक एनजीओ ज्वाइन कर लूँ और अपना भी कुछ योगदान दूँ।
2: क्या बात है, क्या बात है। मतलब देखिए ऋतिका ने तो भाई पहल कर ली है कि एक एनजीओ ज्वाइन किया जाए और सोशल वर्क के लिए भी अपनी पहल आगे की जाए। तो दोस्तों सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि हमारे आसपास की जो सोसाइटी है उसके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। सोशल वर्क भी इम्पॉर्टेंट है। अब चाहे आप कहीं से भी शुरुआत करें, ये जरूरी नहीं कि हमारी शुरुआत कोई बड़ा बदलाव लेकर आए, मगर हमारा योगदान भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो इसी संदेश के साथ अब बारी आ गई है हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। हाँ हाँ हाँ, उसको बताते हुए जाएंगे, तो जल्दी से फटाफट से उसे नोट कर लीजिए। हमारा आज का प्रश्न है दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। और फिर से मैं प्रश्न रिपीट कर देती हूँ, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल यानी youthAIR वाराणसी पर जाकर या फिर हमारे ईमेल के पते पर यानी youthAIRVNS@gmail.com पर जाकर के फटाफट से भेज दीजिए और बन जाइए हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर, है ना ऋतिका?
3: बिल्कुल।
2: तो साथियों इसी के साथ अब हमारा जाने का वक्त भी एकदम पास आ गया है। बाकी हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, युवाणी एंजॉय करते रहिए। आज की ये दो रेडियो साथी यानी कि मैं नेहा
3: और मैं ऋतिका
2: का नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप भोजपुरी में समाचार सुनेंगे, जिसे हमारे गोरखपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचार के साथ हम शिवानी अरोरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ कैले। एक बात जनप्रतिनिधि नौजवान महिलन कलाकारन के सतही प्रदेशवासियन के साथे मुख्यमंत्री आवास से विधान भवन ले तिरंगा यात्रा निकल ले। मुख्यमंत्री तिरंगा फहरावत लेकन के साथे सेल्फी ले ले।

0: उनकर उत्साह बढ़वले। शुभारंभ वाला जगही पर वंदे मातरम का सामूहिक गान कैल गई। मुख्यमंत्री स्वाधीनता दिवस का अग्रिम बधाई देत अपील कैले कि ऐसे पहले हर घर में तिरंगा फहरावे। मुख्यमंत्री तिरंगा के सादगी विकास विरासत आ भारत का आन बान शान का प्रतीक बतावले।
1: हमारा तिरंगा, हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संदेह प्राप्त की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय लिया है।
0: मुख्यमंत्री कहले कि राष्ट्रगीत के 50 बरिस पूरा भैले के उपलक्ष्य में देश में वंदे मातरम का गान हो रहल हो। तिरंगा यात्रा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आ भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मंत्री सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह, लखनऊ का महापौर सुषमा खरकवाल, राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा, ब्रजलाल, संजय सेठ के सतही कई गो जनप्रतिनिधियन मौजूद रहले। मुख्यमंत्री आजो काकोरी ट्रेन एक्शन का 101 वर्ष पूरा भैले के उपलक्ष्य में काकोरी शहीद स्मारक पर आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल भैले। यह मौका पर वहां के राष्ट्र नायकन के श्रद्धांजलि देत कहने की भारत आपसी भूत षड्यंत्र के नाते गुलाम भैल रहे। क्षेत्र जाति अ भाषा के नाम पर भारत के कमजोर करे वाली ताकते आजहू फूट डाली रहले हो। मुख्यमंत्री कहले कि देश विरोधी ताकते सोशल मीडिया प्लेटफार्म का दुरुपयोग करके भारत के खिलाफ अफवाह फैला रहे हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजू सिद्धार्थनगर जिला में डुमरियागंज आ बांसी विधानसभा क्षेत्र बदे करीब 311 करोड़ रुपया के कई गो विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कैले। ये मौका पर आयोजित समारोह के संबोधित करत मुख्यमंत्री कहले कि पछिला 8-9 साल के दौरान भेल कार्यन आ कोशिशन से सिद्धार्थनगर जिला विकास के पैमाना पर तेजी से आगे बढ़ी रहल हो।

लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में सांसद जगदम्बिका पाल के सतही कई को जनप्रतिनिधि मौजूद रहले। स्कूल जाए वाला 12 बरिस तक के लैकन का सुरक्षा के लेके राज्य सरकार नया पहल कहले हो। ऐसन लैकन के लिए आवे ले जावे वाला हर स्कूल के गार्डियन में अटेंडेंट यानी परिचारक चाहे परिचारिका रखा जरूरी हुई। जे लैकन के गार्डियन में सुरक्षित चढ़ावले आ उतरावले का जिम्मेदारी संभरी। एक लेके परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन प्रदेश के सचिव विद्यालयन के प्रबंधक लोग इनकी चिट्ठी जारी कैले हवे। चिट्ठी में स्कूल गार्डियन का सुरक्षा व्यवस्था करेर कैले का निर्देशी दिहल कैल पा। प्रदेश के नौजवान के उच्च शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा के सतही कई गो क्षेत्र में बढ़िया मौका उपलब्ध करावले के उद्देश्य से हर जिला में तैनात IAS, IPS, IFS के नौजवान अधिकारी हर महीना स्कूलन में पहुंची हैं। ये अधिकारी महीना में कम से कम एक इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालय पर जाके विद्यार्थियों के साथ बातचीत करके उनका मार्गदर्शन करी हैं। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा बतवले की ये बारे में शासन की ओर से सचिव जिलाधिकारियों के निर्देश दी हल कैल पा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया गठित धार्मिक समिति का पहला बैठक की आज श्री राम वल्लभा कुंज मंदिर में भेल। बैठक के बाद समिति के सदस्य महंत रामानंद दास पतवले की 15 अगस्त के संजा रिवाज के मुताबिक रामलला का पालकी जत्रा निकाला जाए। पालकी मंदिर परिसर के उत्तरी द्वारे से निकाले के प्राचीन कुबेर टीला पहुंची। कुबेर टीला पर करीब 2 घंटा ले धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कैल गई। एक बाद रामलला का पालकी जत्रा वापस मंदिर के गर्भगृह पहुंची, जहां भगवान रामलला के सोना से जड़ल चांदी के हिंदुला पर जुलवा जुलाई जाये। पिछला 24 घंटा के दौरान प्रदेश के पूर्वी अपच्छ में

0: इलाकन में कहीं कहीं हल्लुक से लेके मध्यम बरखा दर्ज कैल गई। मौसम विभाग बिहने कुछ जिलन में भारी बरखा एकरे बाद अगला दो दिन ले गरज चमकी के साथ बौछार पड़े का अनुमान जतवले हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे किसान रामलाल वर्मा से उनके अनुभवों को खेती में। साथ में महेंद्र सिंह यादव और साथियों का लोकगीत भी किसान भाई सुनेंगे। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। प्रस्तुति होगी अरुण पांडे और सना सलीम की। रात 8 से सुनिएगा विशेष भेंट वार्ता मेजर जनरल धर्मराज राय, कमांडेंट सिलेक्शन सेंटर ईस्ट से अरुण पांडे की बातचीत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अंजुमन और रात्रि 10 से सुनिएगा रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। कार्यक्रम विवरण में अब सुनिए कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे ध्रुपद गायन। कलाकार होंगे उस्ताद वसीफुद्दीन डागर। कल दोपहर 12:45 पर और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे उपशास्त्रीय गायन। कलाकार होंगे विदुषी शोभा गुरटू। कल सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 9:50 पर और कल दोपहर 1:45 पर। कलाकार होंगे राम नारायण मौर्या और साथी। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 12:30 पर। कलाकार होंगी सुषमा गुप्ता। कल दोपहर 1:15 पर महिलाएं सुनेंगी कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में जूट उत्पादों का बढ़ता महत्व, इस विषय पर दीपमाला जी से बातचीत। कल दोपहर 2:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, जो भोजपुरी फिल्मी गीतों पर आधारित होगा। कल शाम 5:15 पर युवा साथी युवाणी कार्यक्रम में सुनेंगे वार्ता अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका। वार्ताकार होंगे अंकित दुबे। कल शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे दलहन की फसल में खरपतवार नियंत्रण, इस विषय पर बातचीत। साथ में राम नारायण मौर्य और साथियों का लोकगीत भी किसान भाई सुनेंगे। कल रात्रि 8 से सुनिएगा संसद समीक्षा और कल रात्रि 10 से आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।

0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म कटी पतंग से। आवाज है किशोर कुमार की, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है आरडी बर्मन का।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म इजाजत से। आवाज है आशा भोसले की, गीतकार हैं गुलजार और संगीत है राहुल देव वर्मन का।

0: अस्य अभियानस्य उद्देश्यभूतम् अस्ति। अवधेयं यत् अस्य वर्षस्य अभियानस्य विशेषं महत्वम् अस्ति, यतः इदं भारतस्य राष्ट्रगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सार्धैकशततमस्य वार्षिकोत्सवेन सह सम्बद्धम् अस्ति। अनेन राष्ट्रध्वजः राष्ट्रगीतं च देशभक्तेः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका मुदिता वेतालः। स्थलस्य गृहमंत्री ए नमस्सी वयमः, कृषि कृषक कल्याण मंत्री जी एन एस राजशेखरन, बीजेपी अध्यक्षः वीपी रामलिंगम इत्येते तत्र उपस्थिताः आसन्। ध्वजान् धारयन्तः सहस्रशः जनाः अस्यां यात्रायां सोत्साहं भागं गृहीतवन्तः। इतः पूर्वं गृहमंत्री गोरीमेडुस्थिते आरक्षक प्रशिक्षण क्रीडांगणे पुडुचेरी आरक्षक सेनायै राष्ट्रपति आरक्षक ध्वजः इति संप्रदान समारोहे भागम् अभजत। पुडुचेरी आरक्षक सेनां वर्धापयन् अमित शाहः अवदत् यत् राष्ट्रपति आरक्षक ध्वजः अतीव गौरवपूर्णः क्षणः भवति।
1: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
0: सः अकथयत् यत् यद्यपि पुडुचेरी आरक्षक सेनायां 5,000+ न्यूनाः आरक्षकाः सन्ति, तथापि केन्द्रशासित प्रदेशस्य सुरक्षायाः, आन्तरिक सुरक्षायाः च उत्तरदायित्वम् एतेषां हस्तेषु अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। जनपदे अवैध विस्फोटक राशि ग्रहण प्रकरणे अपरः आरोपी निगडितः। संस्थया सूचितं यत् आरोपी गतदिने मलप्पुरम जनपदस्य मंजेरी स्थानात् निगृहीतः। अवधेयमिदं यत् असौ मुख्य षड्यंत्रकारीषु अन्यतमः अथ च अस्मिन् प्रकरणे प्राप्तानां विस्फोटक द्रव्याणां अवैध प्राप्तौ सह संलग्नः आसीत्। एतत् निगडनम् एनआईए संस्थया शुक्रवासरे कर्नाटक राज्यस्य विजयपुर स्थानात् त्रयाणाम् अन्य आरोपिणां निगडनानन्तरम् अभवत्, येन अस्मिन् प्रकरणे निगृहीतानां संख्या आहत्य 10 संजाता। नवीनवृष्टया ओडिशा राज्ये पुनः जलाप्लावस्य स्थितिः वर्धिता जाता। राज्यस्य बहवः प्रदेशाः पूर्वमेव जलाप्लावेन दुष्प्रभाविताः सन्ति। इदानीम् अनेकाः नद्यः पुनः जलस्तरवृद्धिं प्राप्नुवन्ति। बालासोर जनपदे जलका नदी अपि च भद्रक जनपदे वैतरणी सालन्दी नद्यः जलस्तरवृद्धिं प्राप्नुवन्ति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य प्रोक्तवान यत् ऑपरेशन सिंदूर इति सैन्याभियानेन विश्वपटले एषः संदेशः प्रेषितः यत् भारतं स्वनागरिकाणां सुरक्षायै सहैव देशस्य महिलानां सिंदूरं रक्षितुं यत्किमपि कर्तुं शक्नोति।
2: पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: रक्षामंत्री नवदिल्ल्याः मुख्य सैन्य चिकित्सालये आयोजितस्य सिंदूर महारक्तदान यात्रा

0: पंचो
1: राम
0: राम राम।
1: राम। और हो मुनक्का बहन?
0: बढ़िया है बिरजू भैया, आपन बतावा का हो जाता हो खेती किसानी में अभी हो।
1: देखा बहन, खेती किसानी तो लगभग संपन्न हो गई ले। अब थोड़ा बाद भी कि हमन सुस्ता थे जा, अब आगे वो सोहनी ओनी का कार्यक्रम लगी।
0: बड़ा जल्दी तो हर सोहनी के कार्यक्रम होगा ला, वही तो हमार कहूँ कहूँ जौन है कि रोपही के बाकी बा, हमार नहीं बहुत किसान हैं लोगन का बाकी बा बही।
1: हाँ तो आप अदरा में बिया डल्ले हो ना, यही से भाई जहाँ ऊंचे कुछ बा जमीन, जहाँ पानी ना बत भाई, वो तो थोड़ा पछड़ जेबे कराला।
0: सही बात हो। और खेती बारी में कहे का मतलब कि देखा समय के साथ चले के चाहिए, तब जौन कि सही से फसल भी हुई और सही होकर मुनाफा भी मिली हो बिरजू भैया।
1: हाँ एकदम सही कहलो हो, सचेत किसान का यह भाई मायने रखा ला कि भाई तू हमेशा सतर्क रहा, अपन कौनो काम सुचारू ढंग से करा।
0: सुचारू ढंग से कब काम तू कब जौन बात कैला है ना, तो
1: हाँ
0: देखा अपने खेती किसानी में भी, अब देखा हम लोग समय का बात करत थी तो समय के साथ साथ देखा कई तरह का तकनीक आ गल हैं हो कि नहीं, माने चाहे जोताई के बात लेला, चाहे बुआई के बात ला, चाहे सिंचाई के बात ला, आ चाहे तू कह सकला कि कीटनाशक के छिड़काव के बात ला, ई सब में जौन है कि तकनीक का बहुत ज्यादा उपयोग अब होत हो और किसान भैया लोगन करत भी हूँ।
1: एकदम हमरे मन के बात कहलू हो कि परंपरागत खेती अब हमन के छोड़े के चाहिए, आ तकनीक भाई अपनावल बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कला है कि तकनीक अपनावल जरूरी है, ऐसे देखा फायदा फायदा है भैया, जियान तो केहरो से नहीं हो
1: एकदम
0: है।
1: एकदम
0: अब देखा तकनीक के बात हो तो सबसे बढ़िया तो हो कि तोहरे हाथे में मोबाइल है किसान भैया लोग के हाथे में, अमन जौन मौसम जौन एप्स हो ओके डाउनलोड कर ले हूँ, ऐसे देखा।

0: बड़ी सहूलियत ई हो गल हो ना कि उनके मौसम का पहले से पता चल जाता हो तो सतर्क हो जात हुआ कि का करे के चाहिए।
1: देखा अब तकनीक के बात कैलू है ना, तो देखा अब तकनीक से खेती कैले से न बहन, देखा लागत भी बहुत कम लगेले, समय के भी बचत होले। आ देखा अब जीरो टिल एक ठे आ गल है, उसे बिना जोतले खेत के अनाज के बुवाई बड़े आराम से, ओमे देखा अनाज भी कम लगत है आ खाद भी कम लगत है, एकदम कूड़ में अनाज आ खाद दोनों जाते है, ऐसे किसान भैया लोग के हर एक तरह से लाभ है।
0: आ एही के साथे साथे तो हम कहें कि देखा मट्टी जवन है ओकर जांच के होए के चाहिए, और मट्टी के तापमान का हो, उमन का कमी है, कौने पोषक तत्व का कमी है, एहू के देखा जवन है बहुत सही तरीके से ये उन्नत तकनीक से हो जात हम अपाई। आ साथे में देखा जौन जीपीएस एक माध्यम हो गल है, आ साथे में जीआईएस तकनीक हो गल है, एहू से ई पता चल जात हो कि मतलब हमार जौन खेती है ओमन खाद कितना पड़े के चाहिए, ओमन बीज कैसन डाले के चाहिए। ऐसे ई होला ना कि भाई जौन बहुत से लोगन के कहत सुनल है ना पंच भैया लोगन के कि
1: हाँ
0: बिया तो बड़ी बढ़िया डल्ले रही खरीद के लिए रही, बाकी बढ़िया उपज नहीं मिलल,
1: जामल ना बढ़िया से
0: जामल
1: बिया।
0: नहीं। और एहू के साथे कही है कि खाद तो डाली ला बाकी पता नहीं कहे हमार जौन है कि बढ़िया फसलें नहीं होत। तो यह कुल से बचे खातिर उन्नत तकनीक अपनाना जरूरी हो।
1: हाँ बहन तो बात सही कलो, तो यही से किसान भैया लोग के चाहिए कि अपने माटी के जांच करावा, जवन तत्व का जरूरत है वो है भाई अपने जमीन में डाला, तब समुचित तो के लाभ मिले।
0: बिल्कुल लाभ तो एक थे और मिली बिरजू भैया, देखा तकनीकें का बात करत ही जाता है जोन डीप सिंचाई आ गल हो या जो
1: टपक टपक विधि
0: हाँ टपक
1: द्वारा।
0: विधि और एक फव्वारा विधि, एमन कितना फायदा है किसान भैया लोगन के कि देखा पानी पहले भरे के हो खेते में, जैसे सब्जी बा तो पूरा खेत भरे के हो।
1: हाँ भाई जहाँ खाल बा वहाँ गल जी तुहार सब्जी, आ
0: हाँ
1: जहाँ
0: गल
1: ऊंचा
0: जी
1: से पानी पहुँचबा नहीं करी।
0: पहुँचबे न करी, अब पानी अतिरिक्त पानी जौन फैली खेते में। अब ऐसे ही फायदा हो गल बा कि भाई जहाँ जहाँ पौधा बा वहाँ वहाँ टप टप पानी हमेशा जौन है कि गिरत रही, आ वही में जौन उर्वरक है ओहू के डाल के लोग सिंचाई करत हुन जौने से कि पौधा भी बढ़िया हो तो पानी का भी बचत हो तो।
1: आ देखा बहन जब तकनीक का बात होता है तो यो बात बा कि देखा पहले दमरी गेहूं का होख है, तो देखा चच्चर बेरा गेहूं भेज जाए ओके आदमी किसान भैया लोग पसा रहे हैं, लेकिन अब देखा तरह तरह के बड़ा बड़ा थ्रेसर आ गल है, हार्वेस्टर द्वारा फट से अपन समय से अनाज कट के अपने खलिहान से घर में आ जाता, अब बढ़िया से किसान भैया लोग हमारे

0: परिवार के खिलावत बा।
1: सही बात हो, लेकिन ई जौन फसल हो या ई जौन सब्जी के बात हमन करत है जा, ई बचल रह बढ़िया से, है ना। एकर समय समय पर मतलब इमन कौन रोग लगे थो, ओकर जौन है कि निवारण कैसे हुई, या उमन जौन है कि छिड़काव जौन कीटनाशक ऊ समय से कब कब कब होए के चाहिए, कब सिंचाई होए के चाहिए, ई कुल इतना आसान हो गल। अब तो अपने क्षेत्र में भी देखत हुआ कि आ गए है ड्रोन, हाँ
0: ड्रोन द्वारा
1: ड्रोन,
0: देखा।
1: एकदम ड्रोन दीदी का नाम तो सुन ले हो बाना। बहुत बढ़िया ये तकनीक हो गल अपने खेती में, मतलब कहे के जरूरत ना है कि ऐसे फायदे फायदा है ड्रोन से, जियान तक केहरों से नहीं है भाई।
0: नहीं नहीं एकदम सही कहलो दीदी। अच्छा दीदी बत कही तो हमन करल जी, लेकिन अब सोचते हैं कि हम भाई ये अनुभव खेती में है, प्रगतिशील किसान हो रामलाल वर्मा और उनसे बतियोले हो सतीश कुमार यादव भैया, तो तनी पंच लोग के बत कही सुनवा देवल जा।
1: एकदम पंच लोगन सुने, कहे से खेती बारी में अपने अनुभव का भी बहुत ज्यादा महत्व हो।
0: बहुत
1: अपन
0: बहुत
1: पंच भैया लोगन एहू से प्रेरित होने कि भाई का करे के चाहिए और कैसे करे के चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम उपज ले सके, है ना। पंच
0: बिल्कुल
1: भैया
0: सही
1: लोगन
0: कहलो।
1: सुने।
2: आज अपने कार्यक्रम में आयल हैं रामलाल वर्मा। आप
0: जी
2: प्रगतिशील किसान हैं, अनुभवी किसान हैं, आप रहे वाला हैं ग्राम जयापुर पोस्ट जखनी जिला वाराणसी के। सबसे पहले वर्मा जी हमने के कार्यक्रम में आपका स्वागत
0: जी हाँ
2: है। तो आप तो भाई कहल जाओ कि अनुभवी किसान हैं, और जब आप अनुभवी किसान हैं तो हमने किसान भैया उनके ये बताएं कि आप कौन कौन खेती कैले हैं इस समय।
0: एकरे पहले तो जौन हो बुढ़िया लगाए रहे,
2: अच्छा
0: एकर बिया सेपी सेवन सब्जी अनुसंधान सांसापुर से ले रहे। आ सेपी सेवन के ई विशेषता हुआला कि एकर बुढ़िया फली भी बढ़िया दाम पर बिकला, अगर जब रेट 50 रुपया पसेरी से नीचे गयल तब हम लोग एकर बीज बनावल जाला।
2: अच्छा
0: तो बीज जौन हो जब तैयार होला तो ओके जौन है सूख गए तब तोड़ तोड़ के छाट छाट के लिया के रख देवल जाला।
2: अच्छा
0: एक बाद ओके पिटना से पिटाई सब इकट्ठा जब हो जाला तो पिटना से पिटाई करके बीज जौन है तैयार करके कादे से प्लास्टिक के बोरी में एक और प्लास्टिक लगा के रखाला।
2: अच्छा
0: ठीक
2: तो एक खेती में का आप एकर बाजार भाव का रहल, एकर खेती कैसे कैलर नहीं हमारे किसान भैया लोग
0: हाँ,
2: बताएं।
0: एकर खेती ऐसा कि आलू और मटर सब बोअ रहन, तो आलू में तो गन्ना बो गए। गन्ना चूंकि बोआ में उमे आसान होला, ओकर जब मट्टी चढ़ावे के होला तब ओ समय गन्ना के पेराई भी चलत रहला। गन्ना के जौन आगे के भाग होला अंगूरी ओके कहलेन, ओके काट काट के जौन हो ओमे जौन मट्टी चढ़ावा गल हो ओमे डाल जाला, और डालने के बाद सिंचाई किया जाला और पैर से दबा जाला ओके
2: अच्छा
0: गन्ना के। अच्छा अंगूरी के विशेषता ये हुआ ला कि अंगूरी का जमाव बहुत बढ़िया होला।
2: अच्छा
0: अब बाकी जौन एहर के हिस्सा बचल पेढ़ी ओके जौन हो पेराई करके अपन गुड़ खाड़ या तो जौन भी बनाओ हो बना ले अपन बना ला। अच्छा पेराई का मशीन भी हम रख ले ला,
2: अच्छा
0: इंजन से चलाई ला, हम तो अपन पेरबा करी ला और लोग भी अब हमारे यहाँ पेरावलेन।
2: मतलब एमए भी आप लाभ कमानी।
0: हाँ
2: अच्छा
0: हाँ
2: आप और बताइए हमारे किसान भैया के
0: जी
2: कि
0: हाँ
2: आप कुद्रुम का कहत रहनी है कि खेती कैले हैं।
0: हाँ कुनरू के भी खेती के लिए ला। तो जैसे आलू के खेती में गन्ना बो गए, तो जौन मटर बोए रहे हैं तो ओमे जौन हो ई सब्जी वाला मटर रहल, तो ओमे जौन हो जब खली आयल निझा फिझा गयल तब ओमे जौन हो कुनरू लगा दे।
2: अच्छा
0: अच्छा कुनरू लगाओ के दो विधि हो। कुनरू चूंकि बरसात के फसल उगला ऐसे जौन हो एके पहले खेत बना के और एकरे बाद चारों किनारे पर फरसा से मट्टी फेंक दे
2: अच्छा
0: ताकि बरसात में पानी बरसत है, एहर वर्ष समथर तो खेत रहेगा कि एहर वर्ष से पानी किनारे आ जाए। अब बीच में दो जगह और जौन हो नारी बना दे कि बीच में से भी पानी किनारे वाले लाइन में लग के निकल जाए।
2: अच्छा
0: अच्छा एकरे बाद जौन हो दो विधि हो। एक विधि तो ई हो कि 6 इंची के जौन हो कुनरू का जड़ी अंगुरी के मोटाई के बराबर काट ले करीब 6 इंची के, अब पान थे एक दरे लगा दे। छ छ फीटे पर लाइन से लाइन 6 फीट और पौधा से पौधा 6 फीट पर लगा दे ले। अब एकरे बाद जौन हो ओके थोड़ा सा मट्टी से ढक दे। तो एमे का होला कि कभी कभी एक दो पौधा एक जगह 6 ठे लगला 5 ठे लगला, तो एक दो या 3 ठे चूंकि बरसात का मौसम रहला नमी रहला

0: तो उ दोनों ओरी से कटा रहला तो ऐसे सड़न उड़न आयल तो जमाव नहीं भी होत।
1: अच्छा
0: अच्छा दूसरका विधि जो हम लगाईला और मैं 5 फीटे के पतला सा जो हो कुनरू ले लेब ओके अंग्रेजी के 8 जैसे होला वैसे बना दे।
1: अच्छा
0: वैसे बनौले के मतलब 3-4 फेरा मतलब अंग्रेजी के 8 बना जाये तो ओके बनौले के बाद में एक जगह गड्ढा में जौन हो 6 इंची गाड़ जाये।
1: अच्छा
0: 6 इंची गाड़ले के बाद थोड़ा सा
1: मैंने गहराई 6 इंच रहे।
0: हाँ 6 इंची गहराई रहे ओकरे नीचे पीला मट्टी उट्टी निकल लगेला तो एक बार जौन हो ऊपर जौन थोड़ा सा दिखात रही ओके भी हल्का सा मट्टी से मुलायम मट्टी से तोप दे। अब उम्मे से जौन हो गासा फूट के जमाव हुई और नीचे जो सोर फेंक के अथुआ हुई और एक जमाव करीब करीब सवे होला।
1: अच्छा पूरा बाद एक आप पौधा के देख रेख कैसे करनी कुछ
0: हाँ जैसे अब जैसे ओमे अंकुरित आ गए तो ओके जौन हो तब तक धीरे धीरे जाड़ा के मौसम खत्म होके घाम उम जौन हो करीब 15-16 जनवरी 20 जनवरी सब चले लगेला तो ओमे जौन हो जमा हो लगल तो ओमे ओकरे थाला पर जौन हो ये कंपोस्ट खाद जौन हो वाला हम तो केचुआ के भी खाद रख ले बना हिला कृषि विभाग से मिलल रहल।
1: अच्छा
0: तो ओके थोड़ा थोड़ा जौन हो थाला पर जौन हो दे के जौन हो हल्का सा DAP खाद पोटास जौन भी दे जाला एकरे बाद बीच में बरसात होबे करेला ओमे भी मौसम में और न बरसात हुई तो सिंचाई हो जाला फिर जमा होके बढ़िया सा चले लगेला। जब जमा होके बढ़िया से ये लता वाला फल है।
1: अच्छा।
0: फसल है तो एमे जमा जब लता एक बहरे निकलल तो ओमे 3-4 ठे कहीन गाड़ जाला किनारे किनारे।
1: अच्छा
0: मजे के गाड़ गया और कहीन पर जो होके चढ़ा जाला चढ़ौले के बाद करीब जब 5 फीटे के भयल तब जौन हो आरी आरी किनारे किनारे बांस गाड़ जाला और बांस बीच में भी गाड़ जाला किनारे के बांस मजबूत रखल जाला। मान लिया बांस नहीं मिला टाटला तो लोग जौन पिछले साल बांस के प्रयोग भरल सड़ल उड़ल तो के बीच में सपोर्ट बदे गाड़ जाला लेकिन किनारे वाला बांस जौन हो वो मजबूत डालल जाला।
1: अच्छा।
0: तो ओके कुल आरी आरी गड़ले के बाद जौन हो एक नगीच भी गाड़ जाये जौन थाला हुआला और फिर ओपे पैरा धागा होला खे जौन की बड़ा मजबूत होला और ओके पैरा खिंचाला फिर ये जौन सनई कई जिस पर जौन चढ़ा गल ओके पैरा पर कुल उरी जौन हो फोर जाला चारों तरफ अब ओकरे बाद फिर ओकरे सिंचाई भी होत रहला खाद भी होत रहला दियात रहला एकरे बाद जौन हो जब कुछ बड़ा भयल तब जौन हो इफको से नैनो DAP आवला तरल पदार्थ में और नैनो यूरिया आवला कापर भी आवला जिंक भी आवला।
1: अच्छा
0: इस सबहन के मिल के मिला के जौन हो छिड़काव कर देवल जाला तो जौन हो ऊपर से खाद के अथवा प्रयोग हो गल अनैनो डाई यूरिया के छिड़काव तो हम लोग धान उन पर भी और सब भी खेती पर कर जाला।
1: तो एक खेती से का आपके अनुभव मिलल कि इसमें का फायदा है तनी किसान भाइयों को बताएं।
0: अभी आप समझे करीब लगभग कुनूर हमारे 12,000 के करीब करीब तो बिकी गल हो
1: कितना में लगे लो नहीं कितना खेत में
0: अरे करीब 4-5 बीसा के अंदाज में हुई।
1: अच्छा
0: जी हाँ
1: तो मैंने 12,000 का बिक गई है अभी और भी है और तोड़ाई होती
0: है इस साल कुनरू असल में महंगा हुआ ला।
1: अच्छा
0: ऐसे 12,000 के बिक गए अभी तो तोड़ाई बटला तीसरे चौथे जो हो कुनरू का तोड़ाई होला जाला रात ला मंडी में
1: इता आप बतैनी कि कौन खेती कैलर नहीं है और कौन इस समय लगल है आवे वाला समय में आप कौन खेती कर जाते हैं।
0: हाँ अब एक बाद जो हो पालक लगी।
1: अच्छा
0: चूंकि पालक कुछ लोग सावन वन में कम खा लेन बरसात में एक बाद ये पालक लगी तो करीब 1 महीना बाद पालक भी निकले लगी पालक सस्ता खेती है कम खर्च के भी खेती है।
1: अच्छा
0: अच्छा पालक में पिछले साल में बढ़िया फायदा भर रहा ओकरे पहले भी बढ़िया फायदा भर रहा अब एक बाद थोड़ा सा मरचा के बिया पड़ी और थोड़ा सा गोभी के
1: जो
0: कि बिक्री में जाई अपने के खाए के भी हो गल जो अटला।
1: तो जो ना आप पालक के खेती करे के बात कहते हैं कि भाई कम लागत की खेती है बढ़िया खेती है आपके मुनाफा भी पिछली बार भाई है तो एक आप बीज के कैसे चयन करनी या एक बीज कहाँ से
0: एक बीज सब्जी वाले दुकान जो है उस सब बेच लेन वहां से ले लो जाला।
1: अच्छा
0: बाकी पालक के बदे के हम तो छीट के बोईला तो हमें खादो नहीं दिया तो पालक जैसे घासी तरह अपने आप पे बढ़ला एकाध बार बहुत हल्का सा जब उसमें पत्ती किरौना काटा लें तो बहुत हल्का दवाई का छिड़काव हो जाला।
1: अच्छा आप गोभी की बात करते नहीं कि अब गोभी का भी अब लगावे की तैयारी करते हैं खेती की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या क्या तैयारी है और कौन आप गोभी लगावे नहीं।
0: गोभी तो हम लोग करीब 20 साल से लगावते रहे लेकिन अब सूट नहीं करते रहते दू चार साल।

0: छोड़ देवल गया,
1: अच्छा
0: लेकिन अब फिर जन होकर गोभी के खेती थोड़ा सा कम पैमाने पर कैल जाये।
1: अच्छा
0: एक दो पैकेट बीज जन हो लगावल जाये कोनो बढ़िया कंपनी के देख के। एक बाद गोभी के बीज में बड़ा सावधानी भी रखा होला, ओके बदे भी जौन हो जैसे 3 फीट चौड़ा और करीब 5-6 फीट लंबा में बेड बना जाला, थोड़ा सा ऊपर भुरभुरी मट्टी डाल जाला, खाद डाल जाला बहुत हल्का, एक बाद में ओके लाइन के विधि से जौन हो रोपाला, चूंकि जौन हो बहुत महंगा करीब 600-700-800 कई कंपनी के 10 ग्राम बिया मिलेला, 600-700-800 रुपया के 10 ग्राम मिलेला, तो ओके जौन हो लाइन से लाइन जौन हो 2-2 इंची पर हाथे से गोदाला, एक बाद हल्का सा मट्टी ऊपर छिड़क जाला भुरभुरी कहके कि आसानी से जाम जाए।
1: अच्छा
0: एक बाद ओके जौन हो पताई से या तिरपाल उरपाल रहे उसे तोप जाला, लेकिन पताई सबसे बढ़िया ये पड़ला कि अगर बरसात नहीं हो तो उस समय पानी के छिड़काव पे हो जाला तो खराब नहीं होती।
1: अच्छा
0: अच्छा दूसर बात ये कि जैसे ओके रोज उखरार के देखे के चाहिए, नर्सरी के रोज उखरार के देखे के चाहिए, थोड़ा सा पताई हटा ले या कोनो चीज से तोपे हटा के देख ले, जब जमीन के बराबर सफेद सफेद आंख दिखाई देवे लगे तब ओके शाम के समय, दिने नहीं शाम के समय ओके जौन हो हटा दे सब।
1: अच्छा तो कहे बदे शाम के ही,
0: शाम के जैसे कि ओकर नरम अखुआ दिखाला और दिने अगर घाम हो तो वो फिर पे प्रभाव पड़ा लगला, झुराए लगल या अथुआ हो लगल तो अच्छा। अगर शाम के मौसम ठंडा रहला, राती के ओस पड़ला, कायदे से फिर आवला, सवेरे धीरे धीरे धीरे धीरे धूप बढ़ला तो फिर जौन हो ओकर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता।
1: अच्छा एक रोपाई कीला की बात काहे में ध्यान देवे के होता।
0: अच्छा दूसर बात की अगर हम बताए हैं कि अगर जैसे अफुआ देखाल आप नहीं हटौले या एक आध दिन लेट कर दिले तो बहुत जल्दी छाया से लंबा हो जाला।
1: अच्छा
0: एक बाद फिर आप समझ कि उत्पादन बढ़िया न हुई और फिर ओकरे बाद वो गिर जाये जब पानी के छिड़काव उड़का कर बते, ऐसे ये सावधानी रखे चाहिए कि गोभी का अफुआ जब जमीन के बराबर थोड़ा सा दिखा तो हटा दे। अच्छा एक बदे के फिर जौन हो खेत तैयार कर ले, चूंकि बरसात का फसल हब्बे हो तो एक बदे भी जौन हो गोभी के खेत बदे के किनारे किनारे जौन हो खेत तैयार भैले के बाद जौन हो घास पात बीन बांध के नारी बना ले, बीच में भी नारी बना ले, एक बाद जौन हो करीब 13-14 इंची पर लाइन से लाइन की दूरी, 13-14 इंची पर पौधा से पौधा की दूरी, चूंकि बरसात का थोड़ा सा बढ़ाला पत्ता वत्ता जगह रह चाहिए तो ओके लग जाला, और लगौले के बाद थोड़ा जौन हो के पानी दे जाला 2-1 दिन लोटा लोटा, और फिर मान लिया ढेर अगर सूखा मौसम हो गल बा तब ओके हथिया जाला।
1: अच्छा
0: और नारी बना जाला जो जौन बनल हो में हथिया देवे, हथियाओ के मतलब जैसे थरिया से लोग छोपला वैसे हथिया जाला, तो फिर ओके बाद फिर चल दे मरीना और जैसे बढ़ल जैसे बीच में बरसात हो तो ओमे थोड़ा सा घास आ गया तो खुरपी लेके निरावत है, निरावत है तो ओकरे साथे साथे जौन खुरपी से थोड़ा सा मट्टी उठा के जौन ओकरे जड़ी के लगा दे, क्योंकि बरसात होला तो बरसात में पानी के बूंदी जौन हो ओकरे जड़ी तर भी जाला तो जौन हो वो जौन एक तरफ गिर जाई या तो खराब हो जाई या ओकर तना दिखाए लगी, तो ऐसे थोड़ा सा मट्टी निकाल के ओके भुरभुरी बना के कुलोरी चारों तरफ गोभी के पौधा छोटा चूंकि बच्चा रहा वही हिसाब से थोड़ा सा मट्टी डाल दे, क्योंकि बरसात अगर हो तो वह मट्टी अब है पौधा पड़ा है।
1: रामलाल वर्मा जी आप तो खेती कह लो कि बड़ा बढ़िया कैले हैं
0: जी हाँ।
1: और जैसे आपका खेती से कुछ साग सब्जी या कह लो कि जौन भी अनाज निकलत है तो क्या बाजार तक ले जाए में का साधन का व्यवस्था के लिए ही बाजार भाव आपके कैसे जानी ना कि हाई बाजार भाव अच्छा है हे समय अच्छा है, एक बारे में तेरे किसान भैया बताए कहा से कि बहुत से किसान भैया हर खेती तो कर ले लो लेकिन ओके बाजार भाव तक या बाजार तक पहुंचावे में कहीं ना कहीं कमी भी रह जाला, तो एक बारे में बताए कि इनमें आपका का अनुभव है और का सूझबूझ रहे के चाहिए और किसान लोगों के।
0: जैसे हम लोग धान गेहूं हो तो सरकार के तरफ से ओकर एक केंद्र खुलल हो, एक ओकर रेट निश्चित हो, ओकरे नीचे भाव रहला ऐसे अच्छा रेट वहां मिलेला तो वहां ले आके तौला देवल जाला
1: साग सब्जी में।
0: अच्छा बताओ थे फिर जहिया तौलाए जैसे आज तौल हो गया कल शाम ले पैसा आ जाला।
1: अच्छा
0: पूरा का पूरा एकदम एक मुश्त। अच्छा सब्जी में जैसे हमरे कुनूर जात हुआ तो पता होत रहला कि हई मंडा का अभाव हो, हई का अभाव हो, ये तरह से सब पता लगत रहला।

0: और फिर ये अंदाज लगावल भी जाला कि ए साल कौन सब्जी महंगा रही जो उनकी बोवल जाला, ए तरह से मतलब सब्जी के खेती कैल जाला।
1: अच्छा जी, तो बहुत बढ़िया आप जानकारी देनी, अपन अनुभव साझा कैनी। रामलाल वर्मा जी, आप हम लोग कार्यक्रम में आईनी, एक बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: देखा कितना नीक कई बतकही होत है कि अपन जौन अनुभव खेती में रामलाल वर्मा का
3: बहुत बढ़िया साझा कैला
2: बतावत रहना है सतीश कुमार यादव से। और हम कहीं कि अपन पंच भैया लोगन भी ऐसे ही ध्यान दे के सुन ले हुई हैं कि कैसे कोने कोने बाती का ध्यान रखे के चाहिए।
3: आओ के बढ़िया से अमल लोग करी हैं।
2: काहे से होला ना कि देखा सब्जी के बेहन लिया दी हैं, लगाए दी हैं, लेकिन वो तरह से हो ना पावला तो कही है कि गल के गिर गयल, फिर दोबारा लिया के लगी हैं, तब वो उनका जो है कि बेहन ना टिकी। तो ई कुल देखा छोट छोट बात रनी है जो कि अगर ध्यान रखा है ना तो फिर मुनाफा तो होबे करी जब वो पकड़ ले बढ़िया से।
3: हाँ भाई, गाँव घर में जे बा प्रगतिशील किसान जिकरे जानकारी बा, थोड़ा भाई सलाह लेला, कौनो खेती करत हो अगर ना जानकारी है तो पूछे में शरमाए के ना चाहिए।
2: एकदम नहीं, और यही से तो हम आनो अपने कार्यक्रम में पंचायती में यही से समय समय पर ऐसने लोगन से अनुभव लेत रही लजा आ विशेषज्ञ के भी बुलावत रही लजा जौने से कि अगर जौने भैया लोगन के ए तरह के दिक्कत होत बा तो उ अपन जौन सुधार कर ले ताकि उनकर खेती और बाड़ी दोनों बढ़िया से चलत रहे।
3: ए मुनक्का बहन, देखा पांच लोग अब एकदम जोहत हुए लिए भाई, खाली बत कही है लोग कर रही है कि कुछ मर मनसायन कर रही है लोग।
2: ऐसा कैसे हो सकेला कि मन मनसायन न हो तो चला हम कहीं तोहरो मन करत है आ पंच भैया लोगन तो जोहते हुआ तो महेंद्र सिंह यादव और साथी भैया लोगन कई गौनई है पंच लोगन सुने
3: कजरी है बहन। हाँ सुना लो पंच।

0: बहन देखा गौनाई तो हो गई।
1: गौनाई हो गई। अब पंचलोगन के काली के कार्यक्रम के बारे में भी बता देवल जाहो। तो कल सवेरे 6:05 पर जौन अपन खेती के बात होला ना बिरजू भैया, ओमन
0: बहन
1: मूंगफली फसल का देखभाल कैसे करे के चाहिए किसान भैया लोगन के, ए विषय पर जानकारी दी हैं दिनेश कुमार सिंह भैया अकाल सांझी के।
0: देखा कल सांझ का 6:30 में बहन कृषि जगत में अपने बत कही हुई तोरिया की खेती ए पर जानकारी दिए हैं डॉक्टर राहुल कुमार सिंह। पंच भैया लोग सुनी हैं। आ देखा बहन बरसात का मौसम बहो आ हम जानत ही भाई। देखा सभी लोग इतना व्यस्त रहा अपने काम में तो जल्दी जल्दी में न लाठी लिए हैं लोग, न डंडा लिए हैं, न लाइट लिए हैं, चल दिए हैं खेते डाँडे। तो ऐसे भाई हम कहब किसान भैया लोग के भैया सचेत होके रहा, जीवन बड़ा अनमोल है।
1: बिल्कुल सही बात है। खेती बाड़ी तक जहाँ के पड़ी भाई जरूरी है जाना, तो बढ़िया से प्रकाश का व्यवस्था करके चलें, साथे में गोड़े में जो ना पन्ही अच्छे से पहन के चलें, लाठी डंडा ले के चलें, जौने से सतर्क रहें ताकि कुल जौन विषैला जानवर हुए जंतु हुए ऐसे बचाव हुई। जब स्वस्थ रही हैं बचल रही हैं तब अपन खेती बाड़ी भी बढ़िया से होत रही हो बिरजू भैया। और देखा बतकही करत करत
0: हाँ बहन
1: पंच भैया लोगन से विदा लेवे कभी देखा समय होगा तो
0: तब
1: अब
0: बहन
1: चलल
0: पंचो।
1: जा।
0: हाँ तो पंचो
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म आजा नचले से। आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, गीतकार हैं जयदीप साहनी और संगीत है सलीम सुलेमान का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म थ्री इडियट्स से। आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे और संगीत है शांतनु मोइत्रा का।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का आखिरी गीत है फिल्म एजेंट विनोद से। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और जॉय की, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत है प्रीतम का।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। पुलिस अधीक्षक चंदौली के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सोनाली लाल, पुत्री संजय लाल, निवासी ग्राम डूही सूही, पोस्ट चकिया, चंदौली, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। सोनाली लाल के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 21 वर्ष, रंग गोरा, इकहरा शरीर, लंबाई 4 फिट 9 इंच। इनके बारे में कोई भी सूचना हो तो अपने नज़दीकी थाने पर या पुलिस अधीक्षक चंदौली को सूचित करें। अगली सूचना भी हमारी पुलिस अधीक्षक

0: चंदौली के द्वारा ही दी गई है, जिसके अनुसार आरती यादव, पत्नी राम प्रकाश यादव, निवासी ग्राम पोस्ट लक्ष्मणगढ़, थाना बलुआ, जिला चंदौली, ये भी पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। आरती यादव के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। रंग गेहुआ, चेहरा गोल, आंख नाक कान औसत, स्वस्थ शरीर, लंबाई 4 फुट 6 इंच, उम्र 29 वर्ष। आरती यादव के बारे में कोई भी जानकारी हो तो अपने नज़दीकी थाने पर या पुलिस अधीक्षक चंदौली को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: हो गया इंतजाम।
6: किसका?
5: गुड्डी की फीस का।
6: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
7: आरबीआई कहता है,
8: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
9: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से हर घर तिरंगा अभियान का किया शुभारंभ। काकोरी ट्रेन एक्शन के 101 वर्ष पूरे होने पर शहीदों को किया नमन। मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर में 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार की विकास नीतियों से प्रगति की राह पर अग्रसर हुआ जनपद। प्रदेश भर में सावन के दूसरे सोमवार को लेकर सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम। कांवड़ यात्रा मार्गों पर लागू किए गए विशेष ट्रैफिक प्लान। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक संपन्न। 15 अगस्त को परंपरागत रीति रिवाज के साथ निकाली जाएगी रामलला की पालकी यात्रा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की और इस क्रम में जनप्रतिनिधियों, युवाओं, महिलाओं, भाजपा नेताओं

0: और कलाकारों समेत राज्य के विभिन्न स्थानों से आए लोगों के साथ मुख्यमंत्री आवास से विधान भवन तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तिरंगा लेकर पैदल चले। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि तिरंगा विकास और विरासत का प्रतीक है।
1: हमारा एक तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है।
0: श्री योगी ने देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले शहीदों, क्रांतिकारियों, सैनिकों और संविधान निर्माताओं राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की जा रही है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। उन्होंने भारत के प्रतीकों, युवाओं, गरीबों, आधी आबादी, किसानों के लिए नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए उचित मंच देकर आदर्श पेश किया है। ये तिरंगा यात्रा उसी आदर्श की अभिव्यक्ति है। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काकोरी ट्रेन एक्शन के 101वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में काकोरी शहीद स्मारक पर आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्र नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अंग्रेज भारत के लोगों की गाढ़ी कमाई लूटकर ब्रिटेन ले जाना चाहते थे, लेकिन काकोरी में 9 अगस्त 1925 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों ने खजाने को अपने लेकर आजादी की लड़ाई को नई ऊंचाइयां प्रदान की थीं। श्री योगी ने आमजन का आह्वान किया कि हमारे गांव, क्षेत्र और जनपद में अनेक गुमनाम नायकों से जुड़ी बिखरी सामग्री को एकत्र करें। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद थे। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। पेश है एक रिपोर्ट।

0: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिद्धार्थनगर जिले में 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों के कारण सिद्धार्थनगर जनपद लगातार प्रगति की राह पर अग्रसर है।
2: सिद्धार्थनगर जनपद जो आकांक्षी था, पिछले 8-9 वर्षों के अंदर जो प्रयास हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, देश के अंदर 112 जनपद आकांक्षी जनपद है और अग्रणी छलांग लगाने वाला कोई जनपद है तो सिद्धार्थनगर जनपद है। अब ये आकांक्षात्मक नहीं, विकास के पायदान पर तेजी के

0: अपनी भूमिका के लिए जाने जाने वाला जनपद है।
1: कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल सहित जिले के कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। कल सावन का दूसरा सोमवार है। कांवड़िया प्रदेश भर में सुरक्षा और सुविधा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया है कि काशी विश्वनाथ धाम में सुरक्षा के विशेष व्यवस्था की गई है।
2: तमाम हमारे कांवड़िया श्रद्धालु केवल उत्तर प्रदेश से नहीं विभिन्न अन्य प्रदेशों से भी लोग यहां पर आ रहे हैं। जो हमारा संगम रूट है प्रयागराज से लेकर के यहां का रूट है उस पर लगातार लोगों का आवागमन बना हुआ है। सभी श्रद्धालु यहां पर सुरक्षित तरीके से यहां पर आए इसके लिए एक डेडिकेटेड लेन बनाई गई है। विश्राम गृह बनाए गए हैं, पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। जितने भी पुलिसकर्मी यहां पर ड्यूटी पर लगे हैं उनकी लगातार ब्रीफिंग की जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं के साथ मित्रवत व्यवहार किया जाए और उनको अपना मेहमान समझा जाए, किसी के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए और प्रयास ये किया जाए कि वो यहाँ से बहुत अच्छी यादें लेकर के यहाँ से जाएं।
1: सभी जिलों में कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। बाराबंकी से हमारे प्रतिनिधि की खास रिपोर्ट।
3: कल सावन का दूसरा सोमवार है लेकिन श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का श्री लोदेश्वर धाम मंदिर पहुंचने का सिलसिला आज रविवार से शुरू हो गया है। सुदूर जनपदों से श्रद्धालु जय बम बोले के घोष लगाते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा भी उनका नगर क्षेत्र में स्वागत कर एक बड़े कैंप का आयोजन किया गया है जहाँ उनकी जाँच और अन्य सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाराबंकी से परवेज अहमद।
1: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक आज हुई। बैठक में श्री राम मंदिर की धार्मिक परंपराओं और आगामी आयोजनों के बारे में चर्चा की गई। बैठक के बाद महंत रामानंद दास ने बताया कि 15 अगस्त की शाम अयोध्या की परंपरागत रीति रिवाज और साज सज्जा के साथ रामलला की पालकी यात्रा निकाली जाएगी।
4: रामलला है उनका झूलन उत्सव अयोध्या की परंपरा के अनुसार विधि पूर्वक मनाया जाए। कुबेर टीला जहां वृक्ष भी है भगवान दिव्य झूले में वहां पधार करके और सबके साथ वहां साजबाज से जाएंगे। उनका जो उत्सव है यानी गान बजान है वो परंपरागत अयोध्या की परंपरा से होगा।
1: कल राज्य के पूर्वी और पश्चिमी अंचलों के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से हर घर तिरंगा अभियान का किया शुभारंभ। काकोरी ट्रेन एक्शन के 101 वर्ष पूरे होने पर शहीदों को किया नमन। मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर में 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा सरकार की विकास नीतियों से प्रगति की राह पर अग्रसर हुआ जनपद। प्रदेश भर में सावन के दूसरे सोमवार को लेकर सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम। कांवड़ यात्रा मार्गों पर लागू किए गए विशेष ट्रैफिक प्लान। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक सम्पन्न। 15 अगस्त को परंपरागत रीति रिवाज के साथ निकाली जाएगी रामलला की पालकी यात्रा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
6: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
5: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
6: तो फिर सही नंबर
5: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
6: आपने तो बचा लिया दीदी।
5: काम से नहीं।
7: RBI कहता है
8: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। आज की प्रस्तुति है अरुण पांडे और सना सलीम की।

0: पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। सना सलीम जी, आपको भी नमस्कार हमारी ओर से।
1: अरुण जी, आपको और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का नमस्कार। और ये ढेर सारी
0: मैं भी इसी टॉपिक पे आने वाला था कि ये जो महीना है ये बड़ा खास है, और खास तौर से ये चूड़ी बिंदी मेहंदी का भी महीना होता है,
1: इसीलिए मुझे बहुत और सभी लड़कियों
0: और बहुत हाँ, ये जैसे हम कहने वाले थे कि इसी महीने वो भी त्योहार आता है जिसमें बड़ा नेग मिलता है और चूड़ी बिंदी वगैरह के लिए भी मांग मांग के ली जाती है चीजें कि भाई ये करना है वो करना है। सावन तो तैयार होने का मौसम है।
1: तो अभी देखते हैं कि हमारे पास मेल बहुत सारे हैं आज, तो उसे पढ़ते हैं अरुण जी।
0: श्रोता भी तैयार होकर के मेल भेजते हैं और थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया है तो इस वजह से भी, और नए नए श्रोता भी हमसे जुड़ रहे हैं, ये भी खुशी की बात है, और लिखते रहे हमारे प्रोग्राम में और शिरकत करते रहे खतों के जरिए, मेल के जरिए।
1: जी, आज का ये पहला मेल हम शामिल कर रहे हैं। हमारे नियमित श्रोता है जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल।
0: जी,
1: शुरुआत इन्होंने बधाई से की है कि 14 जून को एक ही फिल्म से कार्यक्रम में चौदहवीं का चांद पर गौतम प्रियदर्शी यानी कि प्रियदर्शी गौतम की प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी। और
0: जून भी 14 है और चांद भी 14वीं का है।
1: जी, और गुड मॉर्निंग बनारस भी सुना, बहुत अच्छी जानकारी मिली, इसके लिए प्रियदर्शी गौतम को बहुत बहुत बधाई।
0: हाँ, एक जगह कभी गौतम प्रियदर्शी भी लिखा है, प्रियदर्शी गौतम भी लिखा है।
1: जी,
0: अच्छा लगेगा उन्हें कि उनका प्रोग्राम पसंद किया गया 14वीं का चांद वाला।
1: जी, आगे लिखते हैं, 15 जून को सना सलीम द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस और 16 जून को पूजा सिंह द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस बहुत ही शानदार था।
0: इन्होंने वो नहीं लिखा जो मैं बार बार कहता हूँ,
1: लिखा है लास्ट में। दोनों लोगों की अपने अपने अलग अलग प्रस्तुतियां दिल को छू गई। अच्छी सफल प्रस्तुति के लिए सना और पूजा दोनों अंतरंग सखियों को।
0: ये देखिए, हवाओं को भी खबर हो गई है कि दोनों अंतरंग सखियां हैं।
1: जी, ये तो खबर आपने ही फैलाई।
0: दोनों को दो दिल से धन्यवाद दिए कि एक ही दिल से
1: दोनों को धन्यवाद दिए।
0: जी,
1: आगे लिखते हैं कि 19 जून को एक ही कलाकार में नूतन पर था जिसे पेश किया था पूजा ने। स्क्रिप्ट बहुत दिल को छू लेने वाली थी, प्रस्तुति करने का खूबसूरत अंदाज दिल को आह्लादित कर दिया। 24 जून को अनुपम गुप्ता द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस और 25 जून को चित्रा दुबे द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, हम लोगों को बेहद पसंद आया, इसके लिए अनुपम गुप्ता और चित्रा दुबे को बहुत बहुत बधाई। 26 जून को शुचि उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना, बहुत प्यारा लगा, उनके द्वारा दी गई जानकारी बहुत लाभप्रद लगी, बहुत बधाई।
0: यानी कई तारीखों के इन्होंने प्रोग्राम सुने हैं।
1: आगे लिखते हैं कि उसी दिन स्वस्ति श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, बहुत प्यारा लगा, गाने का सिलेक्शन दिल को छू गया, उसमें मैंने मैसेज किया शामिल की, दिल खुशी से झूम उठा, बहुत सारे नाम को शामिल करती हैं और उनकी प्रस्तुति बहुत लाजवाब थी, इसके लिए स्वस्ति श्रीवास्तव को बहुत बहुत बधाई।
0: जी,
1: आगे लिखते हैं कि 5 जुलाई को पूजा सिंह द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना, बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा, बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए पूजा को बहुत बहुत बधाई। 28 जुलाई को स्नेहा सिंह द्वारा प्रस्तुत सुहाने तराने प्रोग्राम सुना जो रिपीट प्रोग्राम था। इन्होंने इससे पहले भी मार्च में एक ही स्क्रिप्ट को 3 बार पेश किया था और इसी तरह फिर उन्होंने रिपीट प्रोग्राम पेश किया जो पूर्व में भी प्रसारित हो चुका है। किसी से भी कभी कभी भूल से हो जाता है, लेकिन इनकी तो आदत बन गई है रिपीट प्रोग्राम पेश करने की।
0: यानी शिकायत बड़ी गहरी है, बधाई के बाद ये शिकायत बड़ा जोरदार हो रही है शिकायत। तो ये प्रोग्राम हमारे हर साथी सुनते हैं और आपकी बात हम लोगों ने स्नेहा सिंह जी तक हम लोग पहुंचा देंगे और ये जिम्मेदारी हम लेते हैं, सना जी को ये तकलीफ नहीं देनी है। उधर आपने तमाम प्रोग्राम सुने और आपकी बधाई पूजा जी, सना जी और स्वस्ति और तमाम आशुतोष जी, जिन भी हमारे साथियों का आपने जिक्र किया उन तक पहुंच रही है। कभी कभी ये होता है कि हमारे यहाँ कुछ थोड़ी सी तकनीकी एडिटिंग वगैरह रिलेटेड दिक्कत आती है, कई बार स्टूडियो फ्री नहीं रहता, लेकिन इतना जल्दी प्रोग्राम रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर प्रोग्राम है भी तो थोड़ा अंतराल जरूरी है क्योंकि ये

0: प्रोग्राम जो होते हैं खास तौर से पुराने गीतों के और स्क्रिप्टेड जो होते हैं वो श्रोताओं के जहन में रहते हैं, याद रह जाते हैं। तो आपकी बात का हम लोग आइंदा ख्याल रखेंगे और स्नेहा जी भी ख्याल रखेंगी, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है
1: जी। और जुलाई के बाद इन्होंने फिर जून के प्रोग्राम्स का जिक्र किया है कि 3 जून को पूजा सिंह द्वारा गुड मॉर्निंग बनारस सुना, बहुत पसंद आया, ज्ञानवर्धक जानकारी मिली। उसी दिन अंजना झा द्वारा प्रस्तुत ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस भी सुना।

0: शाम को आकाशवाणी के 90 साल बेमिसाल वाचन स्वर बनारसी बाबू आशुतोष शास्त्री और सना सलीम का था, बहुत अच्छी जानकारी मिली।
1: वो तो नहीं लिख रहे हैं, लेकिन सुरेश जी जो लिखा करते थे और जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आई नहीं रही है। सावन आ गया लेकिन वो घड़ी नहीं आई।
0: घड़ी नहीं आई। 9 जून को आशुतोष शास्त्री द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस और सुहाने तराने में आशा भोसले पर दी गई जानकारी और उनके प्यारे प्यारे गीतों को सुनकर आनंद आया। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आशुतोष जी को पुनः बधाई।
1: तो आकाशवाणी के 90 वर्षों में हमारे सुरेश जायसवाल जी जैसे जो नियमित श्रोता हैं, पुराने श्रोता हैं, उनके भी कई दशक का योगदान है। तो बहुत शुक्रिया कि आप न सिर्फ कार्यक्रम सुनते हैं बल्कि कार्यक्रमों के बारे में तिथिवार तफसील से लिखते हैं। आज के समय में वास्तव में इतना समय निकाल करके और कार्यक्रमों से जुड़ना, इस बात को हम लोग, इसकी अहमियत को हम लोग समझते हैं। बहुत शुक्रिया। यूं ही साथ बनाए रखिए, प्रोग्राम सुनते रहिए और वो बात भी याद रखिए।
0: अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ से हमें मेल किया है बैंजो मास्टर सुनील यादव और शिव कुमार यादव ने।
1: जी, बैंजो मास्टर आजकल इसलिए हम लोग रहने दे रहे हैं और प्रोग्राम में बोल भी देते हैं क्योंकि सुनील यादव जी बाकी कामकाज भी करते हैं लेकिन शादी ब्याह के सीजन में ऑर्केस्ट्रा वगैरह में या फिर बैंड में बैंजो बजाते हैं। हर काम बड़ा अहम होता है और खासतौर से किसी साज को साज लेना बड़ा कठिन है, तो बड़ी साधना होती है और बैंजो की आवाज तो लोकगीतों में और बहुत सारे कवालियों में एक मुद्दत से इसका इस्तेमाल होता रहा है। तो कभी हम लोग फोन इन वगैरह में आप बैंजो लेकर बैठें और फोन लग जाए तो हम लोग आपका बैंजो भी सुनेंगे।
0: प्रोग्राम्स के बारे में लिखते हैं कि आकाशवाणी वाराणसी जीवन का एक प्रमुख पक्ष या हिस्सा कहें तो गलत नहीं होगा। आज की वास्तविकता, व्यस्तता, भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच कई हजारों लाखों श्रोताओं को जोड़े रखा है आकाशवाणी वाराणसी के कई आरजे और उद्घोषक उद्घोषिका, जिनका बोलने का अंदाज एक अपने आप में अलग है। सभी को हम तक इतनी मेहनत करके कार्यक्रम को सजा कर लाते हैं, उसके लिए हृदय से आभार और धन्यवाद। इसी क्रम में 21 जुलाई 2026 को व्हाट्सएप एसएमएस पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आरजे अरुण पांडे सर के मुखारविंद से सफर खत्म हुआ। कई सारे पत्र और सुकून से भरे गीतों ने मन को प्रफुल्लित कर दिया।
1: कभी कभी लग रहा है कि ये किसी चैट जीपीटी ने लिखा है या आपने दिल से लिखा है, तो जरूर बताइएगा क्योंकि हमें लगता है बड़ी कई बार व्यवस्था में अव्यवस्था हो जा रही है, लेकिन ये है, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहे हैं और बहुत सारे कार्यक्रम आप सुनते हैं, जुड़ते हैं, ये बड़ी बात है।
0: जी, इसी क्रम में शाम को कार्यक्रम युववाणी को सजा कर लाए थे प्यारी दीदी वैष्णवी और दिव्या। वाकई शाम को सुहाना बना दिया इन लोगों ने। और इसी बीच में रोहित अस्थाना द्वारा स्वरचित कविता पाठ सुनाया गया, बहुत कर्णप्रिय लगा। और 23 जुलाई को 11 बजे कार्यक्रम ईमेल संदेशों पर समर्पित प्रोग्राम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस परोसा गया। अनुपम सर के सुंदर मुखारविंद से कार्यक्रम में 4 चांद लग गया। इन तीनों कार्यक्रमों के लिए अरुण पांडे सर, दिव्या, वैष्णवी, अनुपम सर सहित पूरे आकाशवाणी वाराणसी परिवार को दिल से हार्दिक धन्यवाद।
1: तो जितने लोग हैं उन तक बधाई पहुंच रही है। खासतौर से ये अच्छी बात है कि आप युववाणी कार्यक्रम भी सुनते हैं और वहां के हमारे साथियों का उत्साह वर्धन इस कार्यक्रम में करते हैं। बाकी श्रोताओं से भी कहेंगे कि और जो हमारे यहाँ अनुभागीय कार्यक्रम है, हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, कृष्ण जगत, युववाणी, अंगनैया, गृहलक्ष्मी, उन कार्यक्रमों को भी सुने और उसके बारे में कोई विचार आप लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और जो उधर का प्रोग्राम है उसके बारे में भी लिखेंगे। उधर से आशय है जो प्रोग्राम हमारे विविध भारती चैनल का होता है, उसमें कई प्रोग्राम सोशल मीडिया पर आधारित हैं, तो वहां भी आप शिरकत करें और फिर बताएं।
0: और सुबह के भी प्रोग्राम सुने विविध भारती के, काशी कनेक्ट, बनारस।
1: हाँ, क्योंकि सना जी सुबह ही आमतौर पर इन दिनों रहती हैं
0: जी, इसीलिए।
1: और वो आप फेसबुक पेज, व्हाट्सएप पे अपनी प्रतिक्रियाएं उन कार्यक्रमों में भेज सकते हैं और प्रसारण के बाद भी वो कार्यक्रम फेसबुक पेज पर उपलब्ध रहता है। आकाशवाणी वाराणसी का फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है, वहां आप जुड़ेंगे तो आपको हमारे केंद्र से जो लगाव है वो और भी बढ़ेगा क्योंकि कभी भी आप और आपके दोस्त, मित्र, परिवार के लोग कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं।
0: जी, इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्यभान सिंह ने अगला ये मेल किया है विसुंदरी घुरावल सोनभद्र से। लिखते हैं 12 जुलाई को हेलो फोर इन फरमाइश कार्यक्रम में जौनपुर के श्रोता आशीष कुमार द्वारा गुनगुनाया गया गीत और उनका पसंदीदा गीत भी बहुत प्यारा लगा। अरुण सर के साथ साथ आशीष कुमार का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारे कुछ श्रोता हैं, एक तो कुमार सानू के फैन हैं जिसमें ये आशीष कुमार हैं और एक देवजीत जी हैं, वो बढ़ चढ़ करके हमें लग रहा है कुमार सानू को भी नहीं मालूम होगा कि इतने बड़े बड़े फैन हैं। और हमें भी आश्चर्य होता है कि आज के दौर में भी जैसा अभी भी और पहले भी मुकेश रफी साहब और किशोर कुमार इस तरह के बड़े कलाकारों के फैन रहे हैं। वैसे कुछ समर्पित इस तरह के आशीष कुमार जैसे

0: से हमारे श्रोता हैं जो कुमार सानू का हर बार जिक्र करते हैं अपने फरमाइश में और उनके गाने भी गुनगुनाते हैं।
1: जी, इसी दिन सुगम संगीत कार्यक्रम में ताहिरा सईद की आवाज में गजल सुना, गजल बहुत अच्छा लगा।
0: इसी दिन हम लोग गजल सुनी कहते और गजल अच्छी लगती तो अच्छा होता।
1: जी, इसी दिन सुगम संगीत कार्यक्रम में धनंजय कुशवाहा के स्वर में सूरदास और मीराबाई की भक्ति रचनाएं सुनी, रचनाएं पसंद आई। और इसी दिन पुनः प्रसारित आरोग्यम कार्यक्रम में डॉक्टर दिव्यांश पाठक से शिखा श्रीवास्तव और श्रोताओं के एलर्जी विषय पर सवालों के जवाब डॉक्टर साहब से सुने। डॉक्टर साहब का सुझाव कि जितना हम प्रकृति के पास रहेंगे एलर्जी उतनी ही कम रहेगी।
0: ये अच्छी बात है कि हमें नेचर से जुड़ा होना चाहिए, थोड़ी सी साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, मौसम के अनुरूप हमारा आचरण और खान पान होना चाहिए, तो जरूर हम इस तरह की तमाम बीमारियों से और एलर्जी से बचे रह सकते हैं। और जिन कलाकारों के प्रोग्राम का आपने जिक्र किया उन तक आपकी बधाई इस कार्यक्रम के जरिए पहुंच रही है।
1: जी, आगे लिखते हैं कि 13 जुलाई को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में सना जी द्वारा समय के महत्व पर दी गई जानकारी अच्छी लगी और अपने महत्वपूर्ण सेगमेंट बाद जरूरत की में वॉशिंग मशीन को नुकसान होने से कैसे बचाएं विषय पर जानकारी अच्छी लगी। लेकिन सना जी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जितना हम लोग मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं उतनी बीमारियां हम लोगों को हो रही हैं। अगर हम हाथ से कपड़े धोते हैं तो शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है।
0: अच्छा, आरोग्यम का असर हो रहा है।
1: जी, तो आगे और इन्होंने बनारसी बाबू के प्रोग्राम के बारे में लिखा है 16 जुलाई का। आशुतोष जी ने भगवान जगन्नाथ की कथा ऐसा सुनाया जैसे मुझे कुछ पल के लिए लगा कि मैं वास्तव में कथा सुन रहा हूँ।
0: ये आशुतोष को अच्छा लगेगा। हाँ। थोड़ा सा वो कथा वार्ता संस्कृत और संस्कृति में डूबे रहते हैं दिल से, तो ये इस बात की ताकीद करता है कि वो अपने काम को ईमानदारी से और अच्छी तरह कर रहे हैं।
1: जी, आगे लिखते हैं कि 17 जुलाई को इसी कार्यक्रम में स्तुति जी ने यानी कि गुड मॉर्निंग बनारस में रथ यात्रा का वर्णन करते हुए बताया कि जिंदगी भी रथ यात्रा के समान होती है। जैसे रथ यात्रा में कहीं रास्ते अच्छे होते हैं, कहीं खराब होते हैं, इसी तरह जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। स्तुति जी द्वारा रथ यात्रा को जिंदगी से जोड़ना मुझे बहुत पसंद आया, इसके लिए स्तुति जी को धन्यवाद।
0: तो स्तुति को अच्छा लगेगा कि उनका भी प्रोग्राम आपको इस कदर पसंद आ रहा है और आप अच्छी समीक्षा कर रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई।
1: जी, 18 जुलाई को लोक संगीत कार्यक्रम में दीपक सिंह और साथियों के स्वर में गंगा गीत और पचरा सुना, गीत बेहद पसंद आया, इसके लिए आकाशवाणी परिवार को बधाई। इसी दिन झंकार कार्यक्रम में जोधा अकबर, गुमराह, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं हूं ना, लाका चुनरी में दाग, प्रेम रतन धन पायो और राजनीति फिल्मों के गीत सुने, सारे चुनिंदा गीत बेहद पसंद आए, इसके लिए कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता तक तो बधाई पहुंच रही है, लेकिन फिल्मों के नाम इन्होंने याद रखने में इतना तलीनता इन्होंने लगाया कि और ये क्योंकि झूठ भी नहीं बोलता हूँ ना है और मैं हूँ ना भी है, तो
1: ये सारी नई फिल्मों के नाम है, तो कोई नया प्रेजेंटर में भी हो सकता है।
0: तो अच्छा लगा कि उन तक आपकी बधाई पहुंच रही इस कार्यक्रम के जरिए, बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए आपको।
1: जी, अगला ये मेल है असगर अली का शिवपुर से। लिखते हैं मेरे प्यारे छोटे भाई सूरज पांडे जी,
0: चलिए
1: अरुण पांडे जी, सुबह से आपका
0: अच्छा, इन्होंने अरुण का तर्जुमा कर दिया है।
1: हाँ, सुबह से आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ, संडे का अभी 2 बजने वाला है। व्हाट्सएप संडे में आप नाम फटाफट पढ़ते जा रहे हैं, इसके पहले हेलो फोन इन फरमाइश भी सुना जिसमें आखिरी कॉल चौचकपुर का था। आप थकते नहीं है क्या? कम से कम पानी तो पी लिया करिए वरना हलक सूख जाएगा।
0: हाँ, चूंकि हम दिखते नहीं है ना, तो पानी अगर पीते भी होंगे तो आपको नहीं नजर नहीं आता होगा। वैसे ये ऊर्जा आप जैसे श्रोताओं से मिलती है, जो श्रोता उतनी मेहनत से नाम भेजते हैं, हमसे बातें करते हैं, तो हमारी ओर से तो पूरा प्रयास होना चाहिए कि प्रोग्राम अच्छा हो, हर श्रोता को लगे कि उसी ऊर्जा और एनर्जी के साथ हम श्रोता से जुड़े हुए।
1: जी, दूसरी बात ये कि गूगल से वीडियो में देखा आपकी और सना जी की जोड़ी भाई बहन की बहुत अच्छी लगी, अल्लाह करे आप दोनों की जोड़ी कयामत तक ऐसे ही रहे।
0: नहीं, कयामत तक तो बड़ा कठिन है क्योंकि आना जाना तो लगा रहता है, खासतौर से जाने वाला में नंबर तो हमारा ही पहले है।
1: आपने बोला सना जी के दोनों हाथ पे लड्डू, समझ नहीं आया।
0: ये जो लड्डू है ना, ये ट्रांसफरेबल है, कभी किसी के हाथ में रहता है,
1: कभी किसी के हाथ में रहता है,
0: तो अर्थ बताते बताते वो लड्डू चेंज हो जाता है। तो इसलिए आप भी आइडिया लगाएं कि ये क्या होता है इसका मतलब, और हमें भी इंतजार रहेगा। बहरहाल आप कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं और बिल्कुल कमेंट्री नुमा आपने लिखा है कि आप ये कर रहे हैं वो
1: आगे भी लिखा है इन्होंने। मेरे भाई, आपकी आवाज पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दुनिया

0: करके करीब 99.99% श्रोता सुनते हैं और तारीफ करते हैं, तो हम कॉमन नागरिक की इतनी जरूरत कहाँ की तारीफ ना करूं।
1: आप हमारे बड़े पुराने श्रोता हैं और जैसे आपने अरुण के नाम का कहा, तो असगर का भी जो अरबी लफ्ज है उसका जो अर्थ है वो युवा होता है, कि हमेशा आप युवा हैं और इतने वर्षों नेवी से रिटायरमेंट के बाद भी इसी एनर्जी से जुड़े हुए हैं और माह नूर से आप लिखवा भी ले रहे हैं, तो उन्हें भी शुक्रिया, आपको भी शुक्रिया। जय हिंद जय भारत जैसा आपने लिखा है, और जय हिंद जय भारत से याद आया सना जी कि इसी हफ्ते स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तो तमाम श्रोताओं को अभी हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। ये दिन है हमारे देश में विकास और तरक्की का जो ये लंबा सफर रहा है उस पर गर्व करने का, और इस आजादी के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों के स्मरण का, तो उन्हें भी हम हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं, शत शत नमन करते हैं।
0: जी, अगला अब आज का जो मेल है हम शामिल कर रहे हैं रमेश कुमार विश्वकर्मा का, ग्राम मेहंदीगंज मड़ई पोस्ट राजा तालाब से।
1: हाँ, और इन्होंने एक बार तौबा की थी कि ये आखिरी मेल नहीं बोलेंगे, तो इसलिए इन्होंने आज आखिरी नहीं बोला है।
0: जी, आकाशवाणी वाराणसी की पूरी टीम को सप्रेम नमस्कार। आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक होते हैं, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है।
1: प्रेम रतन धन पायो, ये जो पूरी टीम के लिए प्रेम है इसको हम लोग अपने अपने टुकड़े टुकड़े में बांट ले रहे हैं।
0: 12 जुलाई दिन रविवार को हेलो फोर इन फरमाइश कार्यक्रम अरुण सर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो हर बार की तरह ही प्रशंसनीय था। अरुण सर का श्रोताओं से बात करने का अंदाज मन को भा जाता है। इसके बाद आज इतवार है कार्यक्रम में एक नई झलकी सुनी जिसका शीर्षक मैं याद नहीं रख पाया, इसका मुझे खेद है, लेकिन झलकी थी बहुत ही हास्यपूर्ण।
1: हाँ, इनको चूंकि आदत लगी हुई है ना कि पुरानी झलकी होगी, हो जाने दो शादी, चोर देवता, तमाम झलकियां हमें भी याद है, जीवन दान, तो इतने वर्षों से प्रसारित करते करते, लेकिन यह कि बहुत अच्छे प्रहसन और झलकी हमारे केंद्र में पहले के बने हुए हैं और दूसरे केंद्रों से प्राप्त, कि उन्हें बार बार सुनने पर भी वो हमें हंसाते गुनगुनाते हैं वो जो प्रस्तुतियां हैं।
0: आगे लिखते हैं कि इसके बाद लोक रंग कार्यक्रम अरुण सर ने प्रस्तुत किया था, लोक गीत गायिका सुचारिता गुप्ता के गीत के लिए मैंने अपना नाम भेजा जो शामिल हुआ, इसके लिए अरुण सर को धन्यवाद। शाम को पत्र के लिए धन्यवाद, कार्यक्रम हर बार की तरह सना जी और अरुण सर ने लाजवाब प्रस्तुति दी, बधाई। आकाशवाणी वाराणसी ऐसे ही हमारा मनोरंजन और ज्ञान वर्धन करता रहे, धन्यवाद।
1: बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपको ये प्रोग्राम पसंद आया और आपकी बधाई खासतौर से जो लोकगीत के कलाकार हैं सुचारिता गुप्ता जी तक भी पहुंच रही है, और हम आपको इस मेल के लिए शुक्रिया कह रहे हैं।
0: और जैसे हम आपका मनोरंजन करते हैं वैसे आप अपना फीडबैक हमसे हमेशा की तरह हर हफ्ते शेयर करिए, हमारी ईमेल आईडी पर pkldaiarvaranasi@gmail.com पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा।
1: अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए अरुण पांडे
0: और सना सलीम को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। प्रस्तुति थी अरुण पांडे और सना सलीम की।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग, और इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म फिल्लौरी से। आवाजें हैं रोमी पवनी पांडे की, गीतकार हैं अन्विता दत्त, और संगीत है शाश्वत सचदेव का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष भेंट वार्ता में मेजर जनरल धर्मराज राय, कमांडेंट सिलेक्शन सेंटर ईस्ट से अरुण पांडे की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। देश की रक्षा और इसका विकास हम सबका ध्येय होता है। ऐसे तो हम चाहे जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हों, राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकते हैं, लेकिन जीवन में अनुशासन, अटूट आत्मविश्वास और नित नवीन चुनौतियों का सामना करते हुए राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का खास जज्बा हो तो भारतीय सेना से बेहतर और कुछ नहीं। और देश के लिए समर्पित सुयोग्य वीर सपूतों का चयन होता है विशेष सिलेक्शन सेंटर के एसएसबी के माध्यम से। सिलेक्शन सेंटर ईस्ट प्रयागराज को पिछले 50 वर्षों में ये गौरव हासिल है कि इसने सबसे ज्यादा संख्या में सैन्य नेतृत्व क्षमता और दक्षता से परिपूर्ण अभ्यर्थियों की अनुशंसा भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रशिक्षण के लिए की है। चयन केंद्र प्रयागराज न सिर्फ सेना के लिए अधिकारियों का चयन करता है, बल्कि आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से समाज में विशेषकर युवाओं में सेना के प्रति मजबूत, सकारात्मक और गौरवपूर्ण दृष्टिकोण का प्रसार करता है। आज हमारे लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का अवसर है कि हमारे स्टूडियो में मेजर जनरल धर्मराज राय, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडेंट सिलेक्शन सेंटर ईस्ट उपस्थित हैं। भारतीय सेना में आपका दैदीप्यमान करियर रहा है, आपने शौर्य, वीर

0: वीरता और पराक्रम के कुशल नेतृत्व के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मेजर जनरल राय, आकाशवाणी वाराणसी के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, और काशी नगरी के इस आकाशवाणी स्टूडियो से मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं।
0: आप भारतीय सेनाओं के लिए युवाओं के चयन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका वर्षों से निभा रहे हैं, लेकिन स्वयं में भारतीय सेना में आपका प्रवेश कैसे हुआ और इसके प्रति शुरुआत में बचपन में किस प्रकार से आकर्षित हुए आप?
1: अरुण जी, बचपन तो मेरा यहीं से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है जो बनारस और मिर्जापुर के बॉर्डर पे पढ़ता है, तो वहां मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा
0: जी।
1: तो वहां तो आर्मी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके बाद मेरे पिताजी जो है काशी विद्यापीठ ब्लॉक में कार्यरत हुए, तो यहां आके मैंने एक साल कृष्ण मोहिनी विद्या मंदिर में पढ़ाई की और सैनिक स्कूल की तैयारी भी की, और मैं फिर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल वर्ष 79 में चला गया।
0: यानी एक बड़ा लंबा तजुर्बा रहा है, और खासतौर से आप हमारे इस इलाके के जमीन से जुड़े हुए हैं, ये हम सबके लिए बड़ा गर्व का विषय है। अब अपने लौटते हैं इसकी ओर कि अपना वर्तमान जो आपका ये दायित्व है, पद है, इसके बारे में, अपने कार्य प्रणाली के बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: हाँ, एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने मेरे से किया, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि जो प्रयागराज की नगरी है
0: जी,
1: उसमें देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सिलेक्शन सेंटर है, और यहां से हमारे सिलेक्शन सेंटर से देश के हर वर्ष 50% से भी ज्यादा आर्मी ऑफिसर्स और कुछ नेवल और एयरफोर्स ऑफिसर्स सिलेक्ट होकर के जाते हैं।
0: तो ये जो सिलेक्शन सेंटर ईस्ट है, उसका जो स्ट्रक्चर है और उसकी कार्यप्रणाली है वो क्या है? किन किन लोगों को इसमें यहां पे प्रशिक्षित किया जाता है और उसका तरीका क्या है?
1: तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो पूरे देश में इंडियन आर्मी में 12 सिलेक्शन बोर्ड हैं, और उसमें से 5 प्रयागराज में
0: है,
1: बाकी 3 आर्मी के बोर्ड भोपाल, 2 बैंगलोर और 2 जलंधर में है। प्रशिक्षण किसका किया जाता है? प्रशिक्षण हम अपने ही जो ऑफिसर्स आते हैं असेसर बनने के लिए उनका प्रशिक्षण करते हैं, बाकी जो हमारे पास साल में 365 दिन में से 305 दिन 60 दिन छोड़ के हमारा हर बोर्ड खुला रहता है, और इसमें प्रतिदिन औसतन 100 कैंडिडेट्स आते हैं, और हम उन कैंडिडेट्स का पर्सनालिटी टेस्ट या एसएसबी प्रोसेस वो करते हैं,
0: और उसके लिए अलग अलग प्रक्रियाएं और जो तरीका है, टेस्ट है, वो आप लेते हैं। तो एक उम्मीदवार में ऑफिसर्स लाइक खासतौर से डिफेंस में आने के लिए जो गुणों का, जिनका आप परख करते हैं, वो मुख्य रूप से क्या आप देखते हैं और क्या अपेक्षाएं होती हैं एक अभ्यर्थी से आपके लिए?
1: देखिए, जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है ये बेसिकली 5 दिन का एक सिलेक्शन प्रोसेस है
0: जी,
1: और ये 2 स्टेजों में होता है। पहले दिन स्टेज 1 होता है जो कि उसमें 2 टेस्ट हम लोग करते हैं, और उसके बाद तकरीबन 40-50% कैंडिडेट्स को स्टेज 2 के लिए हम लोग उत्तीर्ण कर देते हैं
0: जी।
1: और जो उत्तीर्ण कैंडिडेट्स होते हैं उनका 4 दिन का ये सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। अब ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस अभी जो हम करते हैं वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हम मानते हैं
0: जी,
1: तो उन 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को हम टेस्ट करते हैं, और यही 15 क्वालिटीज 3 असेसर्स, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट और ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर, 3 लोग अपने अलग अलग टेक्निक से ये उसके माध्यम से टेस्ट करते हैं।
0: यानी हर स्किल के टेस्ट करने के लिए अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, और आपने कहा कि ये जो सेंटर है ये खासतौर से असेसर्स को भी सिखाता है। तो जैसे गुणों की आपने चर्चा की, बहुत सारे हमारे युवा हैं जो आना चाहते हैं, तो वास्तव में क्या गुण होने चाहिए एक ऑफिसर्स लाइक और डिफेंस में आने के लिए?
1: जी देखिए, पहले जो है हम आर्मी में ऑफिसर्स का सिलेक्शन यहां करते हैं तो हम लीडर्स देख रहे हैं
0: जी,
1: जो कि किसी भी ट्रूप्स की बॉडी को वॉर लाइक सिचुएशन में अच्छे से लीड कर सकें। बेसिकली देखिए, हम देखते हैं कि क्या उनमें इफेक्टिव इंटेलिजेंस
0: जी,
1: उसको बोलते हैं प्रभावी बुद्धिमत्ता। तो इंटेलिजेंस हो सकता है, बट क्या वो उस इंटेलिजेंस को प्रभावी तरीके से इस्तेमाल

0: संभाल कर पाएंगे चैलेंजिंग सिचुएशन में, एक चीज हो गई। दूसरी उनकी संगठनात्मक क्षमता, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, क्या वो चीजों को जो रिसोर्सेज उनके पास हैं उनको कठिन परिस्थितियों में ऑर्गेनाइज करके अपना एम हासिल कर पाएंगे। उसके बाद उनके पास अपनी बात कहने की क्षमता है कि नहीं है, क्योंकि जो युद्ध का मैदान है वो अकेले आप नहीं लड़ सकते, तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन, क्या वो अपनी बात को कह पाते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि उनकी जो सामाजिक समायोजन की क्षमता है कि नहीं है, क्योंकि मेनली लड़ाई जो है समूह में लड़ी जाएगी, और समूह में नहीं, अगर कुछ इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी भी आ गई तो उसको भी कोऑर्डिनेट करने के लिए आपको एक समूह में, एक ग्रुप में काम करना पड़ता है। और एक चीज है क्वालिटी बोलते हैं कि जवाबदारी लेने की क्षमता, उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो हम ये देखते हैं कि क्या आप जवाबदारी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और जब हम जवाबदारी लेने की क्षमता कहते हैं तो सिर्फ वो जवाबदारी नहीं कि जो आपको दी गई हो, उसके अलावा भी जो आपको काम दिया गया है, जो जवाबदारी दी गई है, उस कार्य को पूरा करने के लिए और भी जितने काम करने हो आप उनको भी अपने आप इनिशिएटिव लेके कर पाते हैं कि नहीं।
1: थोड़ा सा अगर ये जो प्रक्रिया है आपकी चयन की, इसको एलोबरेट करें कि कितने, किस तरह के टेस्ट होते हैं, कुछ एक उदाहरणों से कि मनोविज्ञान या नेतृत्व क्षमता, कम्युनिकेशन का जो गुण है, इन अलग अलग तरह से कैसे किया जाता है, जिससे हमारे जो श्रोता हैं जो खासतौर से इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो अपने अंदर उन गुणों का विकास कर सकें।
0: देखिए, तीन टेस्ट हैं मैंने आपको बताए। सबसे पहला है इंटरव्यूइंग, और तो जो साक्षात्कार है उसमें हमारे यहाँ 1-to-1 साक्षात्कार होता है, इसको सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू कहते हैं। तो इसमें जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर और कैंडिडेट आमने सामने बैठते हैं और ये 45 मिनट का साक्षात्कार होता है।
1: जी,
0: इस साक्षात्कार में हम मूलतः जो कैंडिडेट की लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में उससे सवाल जवाब करते हैं कि उसने कहाँ पढ़ाई की, क्या परसेंटेज आया, उसके परिवार में कौन कौन है, दोस्त कौन है, उसका जिंदगी में उद्देश्य क्या है, तो उसके हॉबीज से रिलेटेड, और वो समय कैसे बिताता है, फिजिकली और मेंटली फिट कैसे रहता है, तो इन विषयों पर चर्चा होती है।
1: जी।
0: दूसरा है साइकोलॉजी टेस्ट। तो साइकोलॉजी टेस्ट लेने के लिए हमारे पास क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं, वो चार टेस्ट हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट हम करते हैं ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च है, ये DRDO की लैब है, वो टेस्ट डेवलप करके हमें देते हैं। उसके बाद जो है ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट लेता है उनका, दो अलग अलग दिन दिवस समय पे, उसमें ग्राउंड में जाके जो मैंने बताया है कि ग्रुप में आपके काम करने की क्षमता है कि नहीं है, वो बेसिकली ग्राउंड पे टेस्ट होता है।
1: जी।
0: अब क्या है कि इनके लिए हमने अपने वेबसाइट पे भी जानकारी दे रखी है, और जो हमारा कॉल लेटर जाता है उसमें भी संक्षिप्त जानकारी हम कैंडिडेट्स को देते हैं
1: कि डिटेल क्या है और किस तरह के उसमें आपको सब्जेक्ट या टॉपिक्स का अपने अंदर स्किल डेवलप करना है। ये वेबसाइट कौन सी, अगर एक नजर में हम लोग जान ले तो?
0: देखिए, ये दो तीन जगह है, ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, तो वो है मेन जहां पर कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उसमें भी है, और जो यूट्यूब पे भी है। और मैं आपको ये बता दूं कि 5 वीडियोज हमारा जो रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट है आर्मी हेडक्वार्टर में उसने बनाए हैं, और एक वीडियो जो है अलग अलग सेंटरों द्वारा बनाए गए। पहला वीडियो जो है पूरी जानकारी देता है 30 में भी क्या क्या टेस्ट होते हैं, और फिर एक एक वीडियो स्टेज 1 जो टेस्ट है, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है का टेस्ट है, जो साइकोलॉजी टेस्ट हम करते हैं या ग्राउंड टेस्ट, इन सबके ऊपर अलग अलग एक वीडियो है। तो 4 ये और 1 मेन, 5 वीडियोज हैं, और ये वीडियो YouTube पे भी अवेलेबल।
1: और बिल्कुल जो भी SSC या सिलेक्शन सेंटर के जरिए SSB को फेस करना चाहता है उसे विस्तृत रूप से इन वीडियोस को अगर देख ले तो बहुत मदद मिलेगी। जो युवा आना चाहते हैं SSB में, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे कि वो कितने समय से पहले क्या तैयारी करें, और खासतौर से उस 5 दिन के लिए किस तरह की तैयारी करके आए?
0: जो भी टेस्ट हैं, जो भी जॉब्स हैं, चाहे वो आर्मी की जॉब हो, चाहे वो हमारे UPPSC या गवर्नमेंट की जॉब हो, और या फिर कॉरपोरेट की जॉब है, इन सबका स्टेज है और इसमें टाइम लगता है थोड़ा।
1: जी जी।
0: तो जब कैंडिडेट तैयारी शुरू करे तो सिर्फ साक्षात की तैयारी न करे, क्योंकि आर्मी का और UPSC का हमारा 9 से 12 महीने का टाइम है जिसमें पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। तो पहले कैंडिडेट को रिटर्न का तैयारी करना है, और जब रिटर्न की तैयारी कर रहा है उसी समय देखे कि किन विषयों पर साक्षात की तैयारी भी कर सकता है, और उसके बाद हमारे यहां उसको

0: मेडिकल भी फिट होना है, तो इन तीनों चीजों की तैयारी साथ करें। और 9 महीने पहले जब वो तैयारी कर रहा है
1: जी,
0: तो इन तीनों को समझ लें, इन तीनों प्रक्रिया को, जिससे कि जब वो रिटर्न पास हो और एसएसबी क्लियर हो तब मेडिकल भी फिट हो जाए और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में आके,
1: हाँ, क्योंकि वो अलग अलग चरणों के लिए अलग से उसको तैयारी का वक्त नहीं मिलेगा, उसको एक साथ शुरू से ही एक साथ ऐसा उसका टाइम टेबल हो, जीवनचर्या हो, जिसमें फिजिकल और पढ़ाई लिखाई सबका साथ में तैयारी कर सके। इस संदर्भ में एक चीज महत्वपूर्ण है कि आजकल हर फील्ड में कोचिंग संस्थानों की भूमिका आ गई है, तो वो कितने मददगार होते हैं या कितने प्रोफेशनल्स या एक्सपर्ट ऐसे चाहिए जो युवाओं को गाइड कर सके या स्वयं भी युवा अपने स्तर से तैयारी करके एसएसबी में आ सकता है?
0: देखिए, मैं ये कहता हूं कि हमारे पास जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं उसमें से ज्यादातर लोग कोचिंग लेके आ रहे हैं, और कोचिंग फायदा करेगी या नुकसान करेगी वो कैंडिडेट की समझ के ऊपर।
1: जी जी जी।
0: और दूसरा ये चीज है कि वो जो कोचिंग चला रहे हैं वो खुद कितने क्वालिफाइड हैं। तो कोचिंग एक गाइडेंस का माध्यम है। मैं बोलता हूं कि प्रोफेशनल गाइडेंस लेना चाहिए और अनप्रोफेशनल गाइडेंस में नहीं जाना चाहिए। कोचिंग में जाना चाहिए अगर जाते हैं लोग तो
1: जी।
0: अगर जाते हैं तो वहां से समझना चाहिए कि टेस्ट क्यों है या फेमिलिटी के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज कोचिंग से सिलेक्शन रेट बढ़ता है या कोच कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं ये सही नहीं है। बहुत से कैंडिडेट्स बिना कोचिंग के भी सिलेक्ट होते हैं और बहुत अच्छे नंबर लेते हैं
1: जी।
0: और इसी कोचिंग के प्रभाव को कम करने के लिए वो 5 वीडियो जो मैंने आपको बताया हमने बना करके डाले हैं, क्योंकि पूरी प्रक्रिया है उसमें। तो अगर वो हमारे 5 वीडियोज देख लें और अपने आप भी तैयारी करें तो उनका सफल होना निश्चित है।
1: यानी उन वीडियोस को देखने से जो अलग अलग सिलेक्शन सेंटर्स के ऑफिसर्स ने तैयार किए हैं उनमें आत्मविश्वास आएगा और सफलता के लिए बल और मंत्र दोनों मिलेगा। लेकिन एक चीज और है कि हर कोई, जैसा आपने ही बताया कि हर वर्ष कई बैच आते हैं, हजारों अभ्यर्थी आते हैं, कुछ सफल होते हैं, तो ये जो 5 दिनों की एसएसबी होती है इसमें कुछ तो सफल हो जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ को असफलता मिलती है, तो उन बच्चों के लिए कि जीवन में और भी बहुत सारे अवसर हैं या क्या कमियां रह जाती हैं, उनके लिए मनोबल में क्या कहेंगे आप बढ़ाने के लिए?
0: देखिए, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो असफल हो जाते हैं वो भी बहुत काबिल लोग हैं
1: जी,
0: और उनको असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके और अपने आप चिंतन और मनन करना चाहिए कि मैं असफल क्यों हुआ, और पुनः चिंतन मनन के बाद सफलता के लिए एक रणनीति बना करके दोबारा प्रयास करना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि वो ऐसा करेंगे तो दोबारा सफल होंगे।
1: बिल्कुल, और आपने कहा, और इससे इन बातों से युवाओं को खासतौर से जो आना चाहते हैं उन्हें बहुत बल मिलेगा। अब जिस तरह की हम जीवन शैली आर्म फोर्सेस में सिविल में रहते हुए हम कल्पना करते हैं, बड़ा उत्साह और गौरव मिलता है वर्दी को देख करके, अधिकारी को देख करके, परेड्स को देख करके, तो भारतीय सशस्त्र बलों में जीवन शैली कैसी होती है जो सिविल लाइफ से अलग है और वेल डिसिप्लिन्ड है?
0: हमारी जीवन शैली जो है अनुशासन और त्याग पर आधारित है
1: जी।
0: और अगर आप एक भारतीय सैनिक की जिंदगी देखेंगे तो भारतीय दर्शन से भी जुड़ा हुआ है। सुबह जल्दी उठना, पीटी परेड करना फिजिकल फिटनेस के लिए, फिर ऑफिस में जाके या कार्य से में जाके काम करना, शाम को गेम खेलना, जल्दी खाना खाना समय पर, 7-8 बजे ब्रेकफास्ट, 12-1 बजे लंच, 7-8 बजे तक शाम का भोजन, और फिर जो है मनोरंजन का भी साधन उपलब्ध है। तो अनुशासन और त्याग के साथ जिंदगी के जितने भी आयाम हैं उन सब आयामों को हमारी जिंदगी जो है, हमारा जो रूटीन है डेली, वो उसको टच करता है, और एक बहुत ही संतुलित दिनचर्या है और एक बहुत ही संतुलित जो है जीवन शैली है हमारी, बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है
1: जी। बिल्कुल, थोड़ा सा फर्क वही है कि आम जीवन में हम कुछ चीजों को थोड़ा टाल सकते हैं, थोड़ा सा सुस्त हो सकते हैं, वक्त पे छोड़ सकते हैं, लेकिन फौज में रहना मतलब अनुशासित होना होता है। एक ये आता है कि भारतीय सेना में आज के दौर में हर क्षेत्र में महिलाएं आधी आबादी बहुत आगे बढ़ रही है और नेतृत्व की क्षमता का परिचय दिया है, तो आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं के लिए कैसे अवसर हैं आज के समय में?
0: बहुत अच्छा अरुण जी, ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नारी का सम्मान भारतवर्ष में हमेशा ही हुआ
1: जी।
0: और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि साल भर में करीब

0: 900 वैकेंसीज टोटल इंडियन डिफेंस फोर्सेज में, आर्मी नेवी एयरफोर्स में आती हैं, जो कि मेरी समझ से सबसे ज्यादा वैकेंसीज महिलाओं के लिए किसी भी क्षेत्र में हैं। अब मैं इनका विवरण दे दूं, साल भर में करीब 140 वैकेंसीज आर्मी की, 140 ही वैकेंसीज नेवी की और 140 ही वैकेंसी एयरफोर्स की आती हैं। इसके अलावा हमारे मेडिकल कोर में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में, एफएमसी में और एमबीबीएस डॉक्टर्स की, इसके लिए भी करीब 400 से 450 वैकेंसीज आती हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब ये किस समय आती हैं, जो हमारा एनडीए की वैकेंसीज हैं और जो एफएमसी है, ये दोनों 10+2 12th के बाद आती हैं और ये बाकी सब वैकेंसीज ग्रेजुएशन के बाद आती हैं। और मैं ये बताऊं कि ग्रेजुएशन में भी हर क्षेत्र के लिए है, जो जैग लॉ करते हैं उनके लिए वैकेंसीज हैं, जो लोग एनसीसी लेते हैं सी सर्टिफिकेट उनके लिए वैकेंसीज हैं, जो लोग जो महिलाएं बीटेक करती हैं उनके लिए भी वैकेंसीज हैं। तो ये वैकेंसीज हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए इंडियन आर्मी और इंडियन डिफेंस फोर्सेज में खुली हुई।
1: सेना के लिए जब हम किसी अभ्यर्थी का चयन करते हैं और आम सेवाओं के लिए चयन करते हैं, तो प्रक्रिया तो वही होती है कि हम अपनी सेवा के लिए उत्कृष्ट और बेहतर उम्मीदवार तलाशते हैं, लेकिन मूल अंतर क्या है, क्या खास गुण ऐसे देखे जाते हैं जो फोर्सेज में आने के लिए होते हैं?
0: देखिए, दो चीजें हैं। गुण के पर आने के पहले मैं आपको बताऊं कि जो एक सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है वो 1990s के आसपास आया, जिसमें कहा गया कि व्यक्तित्व पर जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो उसमें और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसमें 12.8% से ज्यादा मार्क्स नहीं होंगे।
1: जी,
0: तो आप यूपीएससी को देखेंगे तो 750 मार्क्स रिटर्न के हैं, 275 मार्क्स पर्सनालिटी टेस्ट।
1: जी,
0: बट आर्मी इससे अलग है। आर्मी में जो यूपीएससी एंट्रीज हैं उसमें 50% वेटेज रिटर्न का है और 50% वेटेज पर्सनालिटी टेस्ट एसएसबी का है, और जो हमारी नॉन यूपीएससी एंट्रीज हैं उसमें 100% मेरिट जो है एसएसबी मार्क्स ही बनती है।
1: क्या बात।
0: तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि हमें बैलेंस पर्सनालिटी चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जिनमें आत्मविश्वास है, जो त्याग करके भी, अपना सब कुछ भूल कर भी देश के लिए प्राण न्यौछावर कर सके जरूरत पड़ने पे। तो हमारा उस तरीके से थोड़ा सा अलग है। हमें ये चाहिए, सामाजिक समरसता वाले लोग चाहिए, समाज में एक अच्छी पहचान देने वाले लोग चाहिए। तो इसलिए हमारा थोड़ा सा अलग है और विभिन्न है, और थोड़ा मैं कहूंगा 4-5 दिन वाला एक मुश्किल प्रोसेस भी है,
1: क्योंकि इसमें हम नेतृत्व गुण और मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों में, जहां पर आप बहुत दूर मोर्चों पर रहते हैं, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, वहां रहते हुए भी देश के रक्षा और जज्बे के साथ, देशभक्ति के जज्बे के साथ आपको निर्णय लेने होते हैं, लोगों को, अपने साथियों को प्रेरित भी करना होता है। यहां पर एक सवाल आता है, अग्निवीर की चर्चा बहुत रही है और खासतौर से मेजर जनरल राय, आपकी बड़ी भूमिका रही है अग्निवीर को इम्प्लीमेंट करने में और इस योजना को समाज में लोकप्रिय बनाने में। अग्निवीर के लिए जो हमारे श्रोता आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे कि इसमें क्या स्कोप और अवसर है जीवन के बेहतरीन करियर को लेकर के?
0: मैं कहूंगा कि अग्निवीर एक बहुत अच्छी स्कीम है और ये देश में ज्यादा युवाओं को मौका दे रही है आकर के अनुशासन में जीने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए। और इसका रिटेंशन अभी 25% है, बट 4 साल के बाद जो लोग छोड़ के जाएंगे उनको गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम्स दी है, बहुत जगह रिजर्वेशन, पुलिस में, सेंट्रल फोर्सेज में, रेलवेज में, तो ये रिजर्वेशन उनके लिए आया है। कुछ प्राइवेट फर्म्स ने भी बोला है, जो बड़े फर्म्स हैं देश के, कि हम उनको देंगे, तो उनके लिए अवसर है। और 4 साल बाद वो 14 लाख रूपये और अनुशासन और कुछ सीख करके जा रहे हैं, कोई न कोई क्षमता अपने अंदर डेवलप करके जा रहे हैं, तो वो भारत के लिए जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वो बेहतर काम करेंगे।
1: अग्निवीर जो हमारे जवान साथी जाते हैं, उनकी भी भूमिका क्या पहले की तरह आम फौजियों से जो उनकी एक्टिविटीज है या जो उनका योगदान है, कार्यक्षेत्र है, सेम वही है?
0: हाँ जी, देखिए, जो उनका 4 साल का कार्यकाल है उसमें 6 महीने वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और 3.5 साल वो यूनिटों में या हमारे एस्टेब्लिशमेंट में जाके नौकरी करते,
1: जिस तरह पहले फौजी करते थे।
0: तो जिस तरह से हमारा एक सैनिक सिपाही रैंक होता है जूनियर मोस्ट, जैसे काम करता था वही कार्य कर रहे हैं।
1: और बिल्कुल आपने आश्वस्त किया कि ये एक समाज को और समाज के विभिन्न क्षेत्रों को, कॉरपोरेट सेक्टर हो या और जो सेवाएं हैं उसमें, एक ट्रेंड, अनुशासित और जोश जज्बे से भरे हुए युवा बड़ी तादाद में मिल रहे हैं और वहां पर वो, उन्हें रोजगार के नए अवसर मिल जाते हैं, तो वो आश्वस्त रहे।
0: जरूर उनको आश्वस्त रहना चाहिए, क्योंकि

0: ये स्कीम जो है ये बहुत अच्छी है, ज्यादा युवाओं को मौका दे रही है, उनको ट्रेन कर रही है, तो वो वापस समाज में ही आएंगे, जो नहीं रिटेन किए जाएंगे आर्मी से तो समाज के अच्छे नागरिक अवश्य बनेंगे वो।
1: और मेजर जनरल राय, आप खुद भी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, बाकी कॉरपोरेट सेक्टर में जो ट्रेनिंग वगैरह होती है वहां भी जाते हैं, तो वहां का अनुभव कैसा रहा और किस तरह से आप प्रमोट करते हैं लोगों को?
0: वहां जब मैं जाता हूं तो बेसिकली मैं ये बताने जाता हूं कि भारतीय सेना जो है एक महान सेना है, इसकी दिनचर्या, इसके जो वैल्यू सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा है, इसलिए देश में के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भारतीय सेना में आना चाहिए और फिर उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, मैं इस सब विषय पर बात करने के लिए इन जगहों पर जाता हूं। और बाकी जब कॉरपोरेट के लोगों से बातचीत होती है तो मैं ये देखता हूं कि कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो वो कर रहे हैं, वो हम सीख करके अपने चयन प्रक्रिया में भी उनकी अच्छी अगर कोई चीजें हैं तो सीख करके हम अपनी जो बहुत ही अच्छी चयन प्रक्रिया है उसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं।
1: बिल्कुल, यानी आपको फीडबैक भी कैंडिडेट से, बच्चों से या जो ट्रेनिंग में आते हैं आपका व्याख्यान सुनने के लिए, उनसे फीडबैक मिलता है और उससे आपको अपने प्रक्रिया में भी मदद मिलती है। रेडियो में हम लोग आज जुड़े हुए हैं, आकाशवाणी के स्टूडियो में आप पधारे हैं। आकाशवाणी का बड़ा दूर दराज के क्षेत्रों में मोर्चों पर बड़ा योगदान रहा है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को लेकर के, और हमारे कई कार्यक्रम रहे हैं, विविध भारती का खास जयमाला प्रोग्राम है, इन दिनों भी संदेश टू सोल्जर्स प्रोग्राम आता है, तो ऐसे कार्यक्रमों को लेकर क्या चार्म और खासतौर से आपका रेडियो से कभी कोई संबंध जुड़ाव रहा, वो यादगार आप हमसे साझा करना चाहें?
0: देखिए, हम लोग जिस सदी में बड़े हुए 70s में और 80s में, उस समय तो रेडियो ही समाचार का और मनोरंजन का एकमात्र, मैं कहूंगा, अच्छा साधन था। तो मैंने जैसे 1983 जब विश्व कप चल रहा था तो शाम का वक्त था और हम लोगों ने वो चीज जो है सुनी, और भारत की जब जीत हुई, जब पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा, तो वो यादें हैं। बाकी हम लोग जब पढ़ते थे तो विविध भारती का प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम, हम लोग कमरे में चला देते थे और पढ़ते रहते थे। तो ये जुड़ाव सभी का है, और अभी का नहीं है, जब से बड़े हुए तब से है, और अभी भी कार में चलते हुए, कहीं चलते हुए रेडियो प्रोग्राम चल जाता है, तो ये मेरा इंडिविजुअल है। बाकी मुझे मालूम है कि पोस्टों पर अभी भी बहुत से जवान आपके इन कार्यक्रमों का इंतजार करते हैं, मनोरंजन का जरिया भी उसको मान करके अपने आप को खुश रखते हैं।
1: सामान्य जीवन में, क्योंकि फोर्सेज में भी हर क्षेत्र और विधा को महत्व दिया जाता है, वो कला संस्कृति हो, अध्यात्म हो, भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं, परंपरा है, लेकिन अभिभावक एक जो है बच्चों में अगर किन गुणों का विकास करे, और बच्चों में अगर शुरू में ही ऐसा कुछ दिखे कि बहुत से बच्चे फौज की ओर आकर्षित होते हैं, वैसे ड्रेसेज पहनते हैं, तो बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अभिभावक किस प्रकार से भूमिका निभा सकता है कि वो हमारे राष्ट्र के लिए एक संपत्ति साबित हो?
0: पहले ये ग्रोथ जब हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में थे तो परिवार में अगर अभिभावक नहीं तो किसी और से, माता पिता से, नाना नानी से, दादा दादी से बहुत से वैल्यूज हमें मिल जाते थे। अब आज उसकी समस्या खड़ी हो गई है, इसलिए हर अभिभावक को अपने बच्चों में के लिए रोज समय निकालना पड़ेगा और उनको एक अच्छा वैल्यू सिस्टम देना पड़ेगा। तो पहली चीज है, जैसे माता पिता की इज्जत हमारे समाज का हिस्सा है, तो अगर उसके स्टूडेंट के अभिभावक अपने माता पिता का पैर छूते हैं तो वो भी छुएगा, क्योंकि वो बच्चा देख के ज्यादा सीखता है और सुन करके कम सीखता है। और दूसरी चीज है, जब वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वापस आते हैं, तो हर दिन ये पूछते हैं कि कौन सा नंबर आया, क्या सब्जेक्ट हुआ, कौन सा टेस्ट हुआ, ये भी सवाल पूछें कि तुमने किसी दोस्त की मदद की, तुमने कोई ऐसा काम किया जो दूसरे नहीं कर पा रहे थे, आपने कोई लीडरशिप क्वालिटी देखी कि नहीं देखी। तो अगर ये बातचीत करेंगे तो एक उनका जो बच्चा है वो पढ़ाई में तो अच्छा करेगा ही करेगा, बाकी चीजों में भी उसकी पर्सनालिटी भी एक अच्छी पर्सनालिटी, एक संतुलित पर्सनालिटी होगी, जो कि लीडर भी होगा और जो आर्मी में ही नहीं, देश के किसी भी क्षेत्र में, दुनिया के किसी क्षेत्र में भी वो कामयाब बनेगा।
1: आपका ये जो इतना लंबा सैन्य करियर रहा है, इसके कुछ यादगार अनुभव जो श्रोताओं के लिए प्रेरक हों, और आपने किन महत्वपूर्ण चुनौतियों का किस तरह से सामना किया?
0: देखिए, मैंने ज्यादा समय ऑपरेशंस में जो है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में जम्मू एंड कश्मीर में निकाला, और कामयाबी के लिए या वहां भी सफलता के रहने के लिए बहुत ही बेसिक जो मूल मंत्र है
1: जी,
0: कि अपने जो विचारधारा है उसको आप संयोजित रखें, अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखें, और जो परिस्थितियां, जो वहां परिवेश हैं उसको समझ

0: करके और फिर उसके हिसाब से कार्रवाई करें, कम से कम फोर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप उस ऑपरेशंस में हैं, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में, तो अपने ही देश के लोगों के साथ के हैं, समाज को वहां के नागरिक को साथ लेके चलें, तो हम जरूर कामयाब होंगे। शहीद भगत सिंह जी की दो लाइनें हैं कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है।
1: क्या कहने,
0: तो ये देश प्रेम होना चाहिए सर। और देखिए, अगर आप देश के प्रति प्रेम रखते हैं और उसके प्रति समर्पण की भावना है, तो ये क्वालिटीज अपने आप आ जाएंगी। अगर आपके अंदर ये जज्बा रहेगा कि ये देश मेरा है और इसकी रक्षा मुझे करनी है और इसके लिए मुझे कंट्रीब्यूट करना है, ये क्वालिटीज हम जब सिलेक्शन करते हैं तो दो तीन बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है, स्पीड ऑफ डिसीजन, आप डिसीजन ले पाएंगे कि नहीं, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, तो हम इन क्वालिटीज को उस समय भी चेक करते हैं। और एक क्वालिटी है जो सबसे जरूरी है जिंदगी में, जो मैं चाहता हूं कि इस देश का हर बच्चा जो आज है अपने आप में डेवलप करे, वो है जीवंतता। कि जब आप असफल हो गए तो उसको सफलता की तरफ कैसे ले जाएंगे, तो वो क्वालिटी हम लोग जो है ट्रेनिंग में हर ऑफिसर को देते हैं, जिससे कि वो जब फील्ड में जाता है तो कामयाब हो जाता है।
1: चलते चलते प्रोग्राम के आखिर में, जो युवा फोर्सेज में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे आप, कोई खास बात, आपका मैसेज?
0: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं उनको बोलूंगा, सिर्फ जो सेना में जाते हैं वो नहीं
1: जी,
0: जो देश का हर बच्चा है वो कुछ बेसिक चीजों को फॉलो करे, जैसे हमारे माता पिता की इज्जत घर में करें, स्कूल में जाकर के टीचर्स की बात सुने, और अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखे। और एक कहते हैं कि मॉडर्न लाइफ धर्म को मैं आपको बताना चाहूंगा हर बच्चे के लिए, कि बी ऑनेस्ट इन वर्क, ऑनेस्ट इन वर्क, काइंड इन वर्ड्स, रिस्पॉन्सिबल इन एक्शन एंड करेजियस इन ट्रूथ। एंड ये सब करते हुए आपका जो डिवोशन है वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो किसी ग्रेटर कॉज के लिए होना चाहिए, देश के, समाज की भलाई के लिए होना चाहिए, तो सफलता आपके कदम अवश्य चुनेगी।
1: बिल्कुल, मेजर जनरल धर्मराज राय, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडेंट, सिलेक्शन सेंटर ईस्ट प्रयागराज, निसंदेह आपसे आज हुई इस उपयोगी ज्ञानवर्धक बातचीत से युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलेगी, अपने सैन्य करियर, विशेषकर सिलेक्शन सेंटर के और एसएसबी के बारे में आपने विस्तार से महत्वपूर्ण जानकारी दी। आकाशवाणी वाराणसी और हमारे श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: अरुण जी, आपको, आकाशवाणी वाराणसी को और सभी श्रोताओं को मेरा शत शत नमन, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
1: जय हिंद।
2: विशेष भेंट वार्ता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मेजर जनरल धर्मराज राय, कमांडेंट सिलेक्शन सेंटर ईस्ट से अरुण पांडे की बातचीत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी, और इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म रांझणा से। आवाजें हैं जावेद अली, कीर्ति और पूजा की। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है ए आर रहमान का। फिल्म रांझणा।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी, और इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म सांवरिया से। आवाज है शान की, गीतकार हैं समीर, और संगीत है मोंटी का। फिल्म सांवरिया।

रसमाधुरी कार्यक्रम का आखिरी गीत है फिल्म रेस से। आवाज है आतिफ असलम की, गीतकार हैं समीर और संगीत है प्रीतम का। फिल्म रेस।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार संध्या सुनेंगे, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
3: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
2: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में 14

0: चौथे स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
1: To launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए IIT ISM IIM रांची और XLRI के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि CBI जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को सीआईडी ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
3: पहलगाम में धर्म पूछ कर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी

0: आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है।
1: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया, ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त, हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जाँच की गयी। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर

0: तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है, जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3,00,000 लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। JPSC के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3,00,000 लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with medal winners of Commonwealth Games 2026, urges citizens to always cheer for Bharat. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country. Vice President and Prime Minister appeal to people to renew commitment to Viksit Bharat by joining this movement. Jharkhand government agrees to scrap JPSC preliminary exam over allegations of irregularities. Protesting students say agitation will continue. 3 JPSC members resign from their posts. Defence Minister Rajnath Singh asserts Operation Sindoor sent global message that India will go to any extent to protect its citizens with zero tolerance approach to terrorism. Pradhan Mantri Awas Yojana Urban has crossed major milestone with over 1 crore houses handed over to beneficiaries so far. And Typhoon Dolphin hits China's eastern coast, over 1,300 flights cancelled, while 3,00,000 people relocated. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. Sharing a video message, Mr. Modi said that those who participate in sports will prosper in life and urge citizens to always cheer for Bharat.
3: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
2: इंडिया फिनिश्ड एट द फोर्थ स्पॉट ऑन द मेडल्स टेबल एट द गेम्स हेल्ड इन ग्लासगो स्कॉटलैंड बिटवीन 23rd ऑफ जुलाई एंड द 2nd ऑफ ऑगस्ट। Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sporting disciplines. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity, and promote India's cultural heritage.

0: ये मुहिम हर घर तिरंगा पहल का पांचवां साल है, जिसका आगाज 2022 में हुआ था। ने जब से ये मुल्क की अवामी शिरकत की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक बन गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा मुहिम में जोशो खरोश के साथ शिरकत करने और विकसित भारत की तामीर के तईं अपने तआवुन के इज्तिमाई अहद का अयादा करने के लिए लोगों से अपील की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तिरंगा मुल्क की शान है, नेज़ मुल्क के लिए हमेशा अव्वलीन तरजीह देने की तहरीक का एक जामे जरिया है। वज़ीर आज़म ने यह कहते हुए इजहार मसर्रत किया कि इस साल की काविशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं, क्योंकि ये इसकी 150वीं सालगिरह है। जम्मू कश्मीर में आज से तमाम 20 अजला में जज्बे हुब्बुल वतनी नुमायां तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एक हफ्ते तवील प्रोग्रामों के सिलसिलों का आगाज हो गया है। इस साल की मुहिम खास तौर पर अहम है, क्योंकि ये भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के साथ आया है। ये तकरीबात 17 अगस्त तक जारी रहेंगी, जिनका मकसद हुब्बुल वतनी और कौमी फख्र को फरोग देना है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये तकरीबात कौमी यकजहती को फरोग देने, नेज आज़ादी की मुहिम और कौमी अलामत के बारे में काबिले कदर मालूमात हासिल करने में एक नुमाया संग मील की हैसियत रखती है। बड़े पैमाने पर वंदे मातरम पर दस्तखत करने, तिरंगे की रैलियां, नुमाइशें, सकाफती प्रोग्राम मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में मुनक़िद किए जाएंगे। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में हुब्बुल वतनी और अवामी शिरकत की सरगर्मियाँ ज़िला हेडक्वार्टर्स, सब डिवीजन्स, तहसीलों, ब्लॉकों और पंचायत सतहों पर मुनक़िद करने की मंसूबाबंदी की गई है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: JPSC और JSSC इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा के ज्यादातर मुतालबात झारखंड सरकार ने मान लिए हैं। इस सिलसिले में एक माहदे पर इतफाक हो गया है। रियासती वजीर सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि हुकूमत ने 14वें JPSC के इब्तदाई इम्तिहानात और 2023-25 के बैकलॉग इम्तिहानात मनसूख करने से इतफाक किया है। वजीर मौसूफ ने यह बात आज रियासती हुकूमत और एहतजाजी तलबा के दरमियान बातचीत के बाद मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट से मुबैना माली बेजाब्तगियों की तहकीकत, मुजरमाना पहलुओं की CID तहकीकत और 90 दिनों के अंदर चार्ज शीट दाखिल करने को यकीनी बनाने के लिए एक फास्ट ट्रैक अदालत के क्याम पर भी इत्तेफाक किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह वाजे पैगाम दिया है कि भारत अपने शहरियों और मुल्क की खवातीन के माथे के सिंदूर के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
2: पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: वजीर दिफा ने यह बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्त दान यात्रा के कैंप का इफ्तिताह करते हुए कही। उन्होंने भारतीय फौज की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर रखने वालों को संगीन नतायज का सामना करना पड़ा। सिंदूर महारक्त दान यात्रा का जिक्र करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि जहां ऑपरेशन

0: सिंदूर ने भारत की शुजात मंदी का मुजाहरा किया है, वहीं खून का अतिया देने का ये कैंप हमदर्दी और इंसानियत की अलामत है। उन्होंने बताया कि कैंप में महाराष्ट्र के तकरीबन 1000 पहलवानों और खिलाड़ियों ने खून अतिया किया। उन्होंने कहा कि ये इकदाम बेलौज खिदमत और मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती के जज्बे की अक्कासी करता है। वज़ीर दिफा ने कहा कि खून अतिया करने वाला और खून हासिल करने वाला हर शख्स अपने अपने तरीके से मुल्क की खिदमत कर रहा है। उन्होंने खास तौर पर नौजवानों से अपील की कि वह खून अतिया करने वालों को एक बाकायदा अमल बनाएं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU और PMAYU 2.0 के तहत अब तक 1,25,00,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। उनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकानात की तामीर मुकम्मल हो गई है, नेज उन्हें मुल्क भर में मुस्तफिदीन के हवाले किया जा चुका है। तकरीबन 1,00,00,000 मकानात खवातीन को अलाट किए गए हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर के सेक्रेटरी सतेंद्र सिंह की सरबराही में मुनक़िदा मंजूरी देने और निगरानी की मरकजी कमेटी की मीटिंग के दौरान 16 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में माशी तौर पर कमजोर तबके के कुनबों के लिए PMAYU 2.0 के तहत 2,09,000 से ज्यादा मकानों की मंजूरी दी गई थी। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मंजूर किए गए 2,09,000 मकानात में से 2,03,000 मकानात खवातीन को अलाट किए गए हैं। इसके अलावा 16,600 से ज्यादा मकानात बुजुर्ग शहरियों को, जबकि तकरीबन 22,000 मकानात दर्ज फहरिस्त के अफराद के लिए, 14,000 से ज्यादा दर्ज फहरिस्त कबाइल और 75,000 से ज्यादा मकानात दीगर पसमानदा तबकात के अफराद के लिए मंजूर किए गए हैं। स्कीम के तहत मकानात की मिल्कियत खवातीन के नाम करने को तरजीह दी गई है, जिसका मकसद खवातीन को माली तहफ्फुज़ फराहम करना, समाजी तौर पर बाख्तियार बनाना और घर के फैसलों में उनकी ज्यादा से ज्यादा शमूलियत को यकीनी बनाना है। PMAYU का आगाज 2015 में किया गया था, जिसका मकसद अहल शहरी मुस्तहकीन को बुनियादी सहूलियात के साथ हर मौसम के एतबार से पक्के मकानात फराहम करना था। PMAYU के नफाज से हासिल होने वाले तजुर्बात की बिना पर हुकूमत ने इसमें तरमीम की और यकुम सितंबर 2024 को PMAYU 2.0 सबके लिए मकानात मिशन का आगाज किया। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मोहम्मद शहजाद।
0: शदीद तूफान डॉल्फिन आज तीसरे पहर चीन के मशरकी साहिल पर पहुंच गया, जिससे जीजियांग और फुजान सूबे मुतासर हुए हैं। इस तूफान के आने के बाद मुल्क के मौसमियात के कौमी मरकज ने मुल्क में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान शंघाई के 2 हवाई अड्डों पर 1,300 परवाजें मंसूख कर दी गई हैं, जबकि हुक्काम ने आसपास के इलाकों में तकरीबन 3,00,000 अफराद को महफूज जगह पहुंचाया है। बुध के रोज तक शदीद बारिश होने की तवक्को है कि यह तूफान शुमाल मगरिब की जानी बढ़ जाएगा और वहां पहुंचने के बाद ये बतदरीज कमजोर पड़ जाएगा। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने आज कहा कि इस वक्त उनका मुल्क अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर रहा है, अलबत्ता दोनों ममालिक के दरमियान सालिसों के तवस्सुत से पैगामात का तबादला किया जा रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया के जरिए जारी किए गए उनके बयान के मुताबिक जनाब अराग़ची ने कहा कि बहुत से ममालिक ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा करने के लिए साजगार माहौल वजा करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन ने रात के दौरान एक दूसरे पर हमले किए, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों में बहुत से शहरी हलाक और जख्मी हो गए। रूस के बेलगोरोद इलाके में यूक्रेन के ड्रोन के हमले में 5 अफराद हलाक, जबकि दीगर 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिनमें 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने बताया है कि एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली जाने वाली परवाज के हालिया वाकये की तहकीकात हवाई जहाज के हादसात के तहकीकाती ब्यूरो की जानिब से की जा रही है। वजारत ने इस वाकये को एक संगीन वाकया करार दिया है। ये वाकया इस माह की 4 तारीख को पेश आया, जब परवाज के दौरान

0: दो दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिनमें 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने बताया है कि एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली जाने वाली परवाज के हालिया वाकये की तहकीकात हवाई जहाज के हादसात के तहकीकाती ब्यूरो की जानिब से की जा रही है। वजारत ने इस वाकये को एक संगीन वाकया करार दिया है। ये वाकया इस माह की 4 तारीख को पेश आया, जब परवाज के दौरान तैयारा अचानक हवा के दबाव की कमी के बायस तकरीबन 300 फीट नीचे आ गया था। भारतीय बहरिया और अमरीकी बहरिया की जानिब से धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने से मुतालिक मुश्तरका मश्क ईओडी 2026 कल से 14 अगस्त तक कोची में वाक़े जुनूबी बहरी कमान में मुनक़िद की जाएगी। वजारत दिफा के मुताबिक इस बाहमी मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माहिर गोताखोर और धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने वाली टीमों के दरमियान बाहमी तआवुन और अमली हमाहंगी को मजीद मुस्तहकम करना है। भारत की तनसीब शुदा गैर रवायती ईंधन पर मबनी बिजली पैदा करने की सलाहियत 300 गीगावाट के हदफ से तजावज कर गई है। गुज़िश्ता माह की 31 तारीख को हासिल करदा ये बड़ी कामयाबी 2030 के लिए 500 गीगावाट सलाहियत के हदफ का 60% ज्यादा है। भारतीय महकमा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी मध्य प्रदेश में कल के लिए शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका गेम्स 2026 में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो भारत के लिए हमेशा खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करें। मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात के साथ हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज हो गया है। वजीर आजम ने लोगों से अपील की है कि वो इस तहरीक में शिरकत करके विकसित भारत के अहद का इयादा करें। झारखंड की सरकार ने इल्जामात और बेजाब्तगियों पर JPSC इब्तदाई इम्तिहानात को मनसूख करने से इत्तेफाक कर लिया। एहतजाज करने वाले तलबा ने कहा है कि एहतजाज जारी रहेगा। JPSC के 3 अराकीन ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने आलमी पैमाने पर यह पैगाम दिया है कि भारत दहशतगर्दी के तई सिफर बर्दाश्त के साथ अपने शहरियों को तहफ़ फराहम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने अभी तक मुस्तफिदीन को 1 करोड़ मकानात से ज्यादा सुपुर्द करने के साथ अहम संग मील अबूर कर लिया है। और शदीद तूफान डॉल्फिन चीन के मशरकी साहिल पर पहुंच गया है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। 1300 से ज्यादा परवाजें मनसूख की गई हैं, जबकि 3 लाख अफराद को महफूज जगह पहुंचाया गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अमरीकी शहर ओरिगन में हुई लिट्स अंडर 20 चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एथलीटों को मुबारकबाद दी है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 242 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अंजुमन।

जो दूर चला जाए उसकी कमी कहाँ पूरी होती है। जो दूर चला जाए उसकी कमी कहाँ पूरी होती है। कुछ रिश्तों की यादें उम्र भर दिल में अधूरी होती हैं, दिल में अधूरी होती हैं।

किसी हम नफ्स का साथ मिले तो खामोशी भी बात करती है, किसी हम नफ्स का साथ मिले तो खामोशी भी बात करती है, दिल की वीरान गलियों में फिर

रूठना भी अगर मोहब्बत का हिस्सा है तो रूठे रहो। रूठना भी अगर मोहब्बत का हिस्सा है तो रूठे रहो। बस इतना करम रखना कि लौटने का कोई रास्ता रहे, लौटने का कोई रास्ता रहे।

लेकिन तैयार रहिए इसमें आप, नए पहलाओं के साथ कोशिश करूंगा मैं, जो कि कोशिश करूंगा जो अलग होंगे, जो आप लोगों की टेपों में नहीं हो शायद।

दो शेर नए हैं, अहमद फराज साहब की नहीं है। लेकिन रदीफ और काफिया एक ही है। अब ये नहीं कह सकता मैं कि अहमद फराज साहब ने पहले गजल लिखी है या उन शायर ने पहले गजल कही है।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है। रविवार से अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात के कार्यक्रम में हम आपके लिए श्रीमती सात्विका मोहन का गायन प्रस्तुत करते हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू ए वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती सात्विका मोहन।
0: श्रीमती सात्विका मोहन आकाशवाणी और दूरदर्शन की ए ग्रेड कलाकार हैं और एक सुशिक्षित कर्नाटक क्लासिकल गायिका और वायोलिन वादक हैं। इन्होंने अपनी प्राथमिक संगीत शिक्षा श्रीमती वी ललिता से शुरू की और विष्णु वटला सिस्टर्स नाम से प्रसिद्ध बहनों में विदुषी श्रीमती विष्णु वटला कृष्णवेणी के साथ आगे का अभ्यास जारी रखा। बाद में इन्होंने सुप्रसिद्ध हैदराबाद ब्रदर्स में से विद्वान डी राघवाचारी के मार्गदर्शन में अपने कौशल को निखारा। 6 साल की छोटी उम्र में प्रथम प्रदर्शन देने वाली इस बाल कलाकार ने आंध्र प्रदेश के सरकार से प्रतिष्ठात्मक बाल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। इन्होंने कर्नाटक गायन में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के CCRT के द्वारा वरिष्ठ छात्रवृत्ति प्राप्त किया। उसी वर्ष में आकाशवाणी के राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में शास्त्रीय भक्ति संगीत में प्रथम पुरस्कार और कर्नाटक शास्त्रीय गायन में द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त किया है। ये आकाशवाणी में पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी पीढ़ी की गायिका हैं। इन्होंने प्रख्यात सभाओं में, प्रतिष्ठात्मक संगीत उत्सवों में और भारत के अग्रगामी सांस्कृतिक संस्थानों में प्रदर्शन दिया है। इन्होंने कर्नाटक गायन में और वायलिन में डिप्लोमा के साथ साथ संगीत में MA डिग्री हासिल की है और IIT खड़गपुर में MBA डिग्री भी प्राप्त की है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन is an A-grade artist of Akashvani and Doordarshan and an accomplished Carnatic classical vocalist and violinist. She received her initial training under Srimati V. Lalita, followed by advanced tutelage under Vidushi Srimati Vishnubhatla Krishnaveni of the renowned Vishnubhatla sisters, and further advanced guidance from Vidwan Sri D. Raghavachari of the illustrious Hyderabad brothers, a child prodigy who presented her maiden concert at the age of 6, she was conferred the prestigious Balaratna title by the government of Andhra Pradesh. She is a recipient of the senior scholarship in Carnatic vocal music awarded by the CCRT, Ministry of Culture, Government of India, and achieved national distinction by securing first prize in classical devotional music and second prize in Carnatic classical vocal music at the All India Radio National Music Competitions in the same year. Becoming a second generation Akashvani National Prize winner, she has performed extensively at eminent sabhas, prestigious music festivals and leading cultural institutions across India. She holds diploma in Carnatic vocal and violin, an MA in music and an MBA in human resources.

0: मैनेजमेंट फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर।
1: आज रात के इस कार्यक्रम में आपके साथ संगत करने वाले कलाकार हैं वायलिन पर श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
0: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट श्रीमती सात्विका मोहन इज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय श्री ओ राजशेखर ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जय भास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
1: श्रीमती सात्विका मोहन अपने गायन का आरंभ त्यागराज की एक कृति से कर रही हैं, जो राग हमसा ध्वनि तथा आदि ताल में निबद्ध है।
0: श्रीमती सात्विका मोहन बिगिन्स हर वोकल रिसेटल विद अ कंपोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी इन द राग हमसा ध्वनि सेट टू आदि ताल।

0: अब आप सुनेंगे त्यागराज स्वामी की एक कृति जो राग आनंद भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी इन द राग आनंद भैरवी सेट टू आदि ताल।

0: श्रीमती सात्विका मोहन अपना गायन जारी रखते हुए अब प्रस्तुत करेंगी नारायण तीर्थ द्वारा रचित एक तरंगम, जो राग बिलहरी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर वोकल रिसाइटल, श्रीमती सात्विका मोहन विल नाउ प्रेजेंट ए नारायण तीर्थ तरंगम इन द राग बिलहरी सेट टू आदि ताल।

0: अब आप सुनेंगे मैसूर वासुदेवाचार्य की एक रचना जो राग सिम्हेंद्र मध्यमम तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार्य इन द राग सिम्हेंद्र मध्यमम सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: वो था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वाज द तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जय भास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: श्रीमती सात्विका मोहन अपने गायन का समापन श्री कनक दास की एक कृति के साथ कर रही हैं, जो राग सिंध भैरवी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन कंक्लूड्स हर वोकल रिसेटल विद द कंपोजिशन ऑफ श्री कनकदासा इन द राग सिंधु भैरवी सेट टू खंड चापू ताल।

0: इसी के साथ हम रविवासर अखिल भारतीय संगीत सभा में श्रीमती सात्विका मोहन का गायन समाप्त करते हैं। आज की सभा में उनके साथ वायलिन पर थे श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। रविवासर अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के प्रसारण कक्ष में इस संगीत कार्यक्रम का ध्वनियांकन किया गया है। ये कार्यक्रम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है।
1: With that, we conclude the vocal recital by Srimati Satvika Mohan in the broadcast of Ravivasriya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. She was accompanied on violin by Sri O. Rajshekar, on mridangam by Vidwan Peravalli Jayabhaskar and on ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasriya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha and brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे और उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की।
4: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
5: जय।
4: भारत माता की
5: जय।
4: भारत माता की
5: जय।
3: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों

0: पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये कार्यकाल इस महीने की 13 तारीख से शुरू होकर अगले वर्ष 13 अगस्त तक रहेगा। सेवा में ये विस्तार 31 जुलाई 2027 को उनकी तय सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी है। वे 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi said that each one of them has made the nation proud through their exceptional performances and their success will motivate many youngsters. India finished at the fourth spot on the medal table at the Games held in Glasgow, Scotland between 23rd of July to 2nd of August. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sporting disciplines. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity and promote India's cultural heritage.